मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56.46 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है।

0: शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो आराधना कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको बधाई दे दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आप सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अब आराधना कार्यक्रम शुरुआने से पहले हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। तो जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आराधना कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे जन्माष्टमी पर विशेष। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आराधना कार्यक्रम। निकालेंगे कष्टी भवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो, बड़े ही दयालु हैं वो बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमाकर तो देखो। लला के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी बधाई। और अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

गीता की अनमोल बातें जो जीवन में अपनाता है वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। और श्री कृष्ण ने गीता का संदेश पूरे संसार को दिया। तो आइए उस गोविंद के गुण गाते हैं, उस चतुर्भुज अनंत अविनाशी की आराधना करते हैं। तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: तो भाई श्रोताओं, आज अपने लैला की सजावट तो हर कोई कर रहा होगा, झांकी की तैयारी कर रहा होगा। तो इसी भजन के साथ अब आराधना कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:20 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राम नाम की महिमा के संदर्भ में बापू के विचार।
1: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी जी के लिए राम नाम सत्य स्वरूप है। वह कहते थे, आराधना हृदय से होनी चाहिए। राम नाम वह औषधि है जो बीमार तन मन को स्वस्थ करती है। बात तो बस हृदय की शुद्धता की है। जिसने राम नाम का जप किया उसकी नैया पार लगी। राम नाम जब गले से उतरकर हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो सभी रोगों एवं शोकों से मुक्ति मिल जाती है। प्रस्तुत है राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार।
1: प्रार्थना जो मनुष्य सच्चा हृदय से करता है और पीछे भगवान के साथ कोई कोई इकरार कर लेता है कि हाँ मैं प्रार्थना तो करता हूँ और उसका मुझको आज के आज उत्तर चाहिए, तो भगवान को जानता नहीं वो क्या शक्ति है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक दूसरे के साथ जड़ सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझको 500 रुपया दो, तो 500 रुपया नहीं देता है तो आप उसके साथ लड़ते हैं। तो क्या हम ईश्वर जो निरंजन है, निराकार है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, उसके साथ जगने उतनी हो सकता है? और या तो उस पर हम न्याय करने के लिए बेचा वो भी नहीं हो। प्रार्थना का महत्व बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है। हम खाने का छोड़ सकते हैं, पीने का छोड़ सकते हैं, कहीं जाना है तो जाने का छोड़ सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आदमी में एक भी सांस पड़ा है तब तो उसको प्रार्थना करना ही है। वो कैसे करे? तब बताया है हमको कि नाम देवो। तो इस व्यक्ति ने भी गाकर बताया ना कि नाम भजन से क्या होता है, और पीछे आखिर में तो कहा कि साहेब मेरठ वो सबूरी में, सबूरी में कहो तो फकीर में जो कुछ भी उसमें कहना चाहते हैं तो उसमें मिल जाता है। शायद तो ईश्वर को नाम उसमें दे दिया है, बहुत बहुत भरा नाम है उसमें। तो प्रार्थना वो तो नाम है, नाम तो नाम स्मरण करो, तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण करो, तो एक आखिरी का साथ निकलता है तब तक वो नहीं चाहिए। अगर हम प्रार्थना का रूप बन गए हैं तो हमारे हाल ऐसे होने चाहिए कि हम कभी मूर्छित स्थिति में न रहें। ऐसा नहीं कि वो हमने ठान लिया है जैसे नमाज पढ़ते हैं कि प्रातः काल का

पीछे असर का है, बीच में आता है, ऐसे करीब गायत्री है, संध्या है, वो अपनी अपनी समय पर करें, लेकिन राम नाम के लिए ऐसा समय नहीं है। सारा दिन है, एक भी श्वास चलता है उसके साथ साथ वो चलना चाहिए। ऐसा जब चले तब आप कहिए कि उस आदमी का खेल है और उस आदमी को 125 वर्ष जिंदा रहने का हक है। हुआ मैं ही, आप ही, कोई भी मनुष्य है, तुम उसको कहो कि तू 125 वर्ष के पहले मर जाएगा तो हम कैसे कहें कि प्रत्येक श्वास और निश्वास में, उच्छ्वास में तेरे में राम नाम नहीं था तो मैं आपको कहता हूँ आप

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आपने सुना राम की महिमा के संदर्भ में बापू के विचार।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे मृदा आपदन का कृषि पर दुष्प्रभाव, और इस विषय पर डॉक्टर दशरथ यादव से बातचीत किया है अनिल कुमार यादव ने।
1: देखा भैया, खेती किसानी में तमाम प्रकार के समस्या आवत है। उमन एक बटे कि मृदा अपरदन, ये मृदा अपरदन का कृषि पर का दुष्प्रभाव पड़त है। आज हम अपने बीचे में डॉक्टर दशरथ यादव के बुलाए ही भैया, ये बताई हैं कि मृदा अपरदन ये का बात है, एकर अपने खेती किसानी पे का प्रभाव पड़त है। भैया, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बात है। डॉक्टर साहब, ये बतावे कि ये मृदा अपरदन ये का बात है।
2: किसान भाइयों, मृदा जो हमारी है, जिनको हम भूमि कहते हैं,
1: जी
2: खेती योग्य, इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर जो ऊपरी परत होती है, इसी पे हमारी खेती होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और इसके बाद जो है, पौधों के विकास के लिए जितने भी तत्व होते हैं वो उसी सतह से पौधों को मिल जाता है। और पौधे हमारे जो है, जब पोषक तत्वों को लेते हैं तो विकास करते हैं। अब जो मृदा है, जो भूमि है, जो हमारी जमीन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक जाती है, या जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे स्थान पे चली जाती है, जैसे जल के द्वारा और वायु के द्वारा मिट्टी के कण जो है उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। क्योंकि जमीन हमारी दिखती तो नहीं है कि कैसे जा रही है, लेकिन पानी के बहाव से, हवा के बहाव से, हवा के झोंके से वो मिट्टी के कण धीरे धीरे जो है वहां से खिसक जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसको भूमि का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। और इससे ये होता है कि जो हमारी उपजाऊ भूमि है 15 से 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पे, वो हमारे उपजाऊ भूमि, उपजाऊ जो है कण, वो चले जाते हैं। तो इसके बाद हमारे जो है, जो खेती की उपज है वो कम हो जाती है। तो ये मृदा अपरदन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, यानी कि जौन ये पानी से और जौन है हवा के द्वारा जौन है, ये जौन माटी अपन जौन धूल कण जौन है बह जाता है, तो उसे काबे जौन अपन उपजाऊ शक्ति जौन माटी के बाटे वह बह जाता है। डॉक्टर साहब, ये बतावें कि ये जैसे मृदा अपरदन की कारण काबा जौन है, कौन कौन से कारण हैं, एक बारे में।
2: किसान भाइयों, ये जब हमारी जमीन घास फूस से या फसलों से ढकी होती है, तब मृदा अपरदन नहीं होता है, कम होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अगर मृदा के ऊपर वनस्पति नहीं है, फसल नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि इससे मृदा अपरदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जैसे पानी की या बरसात हुई, तो वहां पे जब बूंद पड़ेगी तो वहां से मिट्टी कट करके खिसकेगी, पानी में घुल करके जाएगी
1: जी।
2: अगर घास पात या फसल आपकी है, कोई कवर लगाए हैं फसलों की, तो इससे मिट्टी का बहाव नहीं होगा और भूमि आपकी सुरक्षित रहेगी। दूसरा कारण है जंगलों की कटाई। जैसे जंगल आजकल काट दिए जा रहे हैं और कट जा रहे हैं, पौधरोपण कम हो रहा है, तो इससे भी जब बरसात होगी और पानी का बहाव होगा या हवा का बहाव होगा, तो मिट्टी के कण जो है वहां से बह जाएंगे। तीसरा कारण किसान भाइयों, इसके बाद तीसरा कारण है खेत में पशुओं का जो है अत्यधिक, जैसे चराते हैं, चराई हो रही है, खेत में पशुओं का आवागमन है, तो इससे क्या होता है कि उनके जो पैरों से है, कटती है, उनके खुर से है, जमीन कट जाती है,

0: अब जब जमीन कट जाएगी तो पानी बरसेगा या हवा चलेगा तो वो जो मिट्टी के उपजाऊ कण हैं वो हमारे उड़ जाएंगे, बह जाएंगे, तो एक कारण ये भी है। इसके बाद किसान भाइयों, स्थानांतरित खेती, जैसे एक जगह हमने खेती कर लिया, खासतौर से उन जगहों पे जहाँ पे जंगल हैं या उपजाऊ जमीन है, किसान भाई खेती कर लिए, इसके बाद वहां से फिर छोड़ के दूसरी जगह चले गए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इससे वहां की भी मिट्टी जो है, क्योंकि फसल जब छोड़ देंगे करना तो खुली रहेगी, तो इसके बाद जमीन वहां से कटेगी।
1: जी।
0: अगला कारण किसान भाइयों, अनुचित कृषि पद्धति। अनुचित कृषि पद्धति में है हम जो है फसलों

0: क्योंकि फसल जब छोड़ देंगे करना तो खुली रहेगी, तो इसके बाद जमीन वहां से कटेगी।
1: जी,
0: अगला कारण किसान भाइयों, अनुचित कृषि पद्धति। अनुचित कृषि पद्धति में है, हम जो है फसलों को जैसे फसल चक्र कहते हैं इस रूप में नहीं बोते हैं, हमको झकड़ा जड़ वाली है या ऊपर वाली जड़ है, नीचे वाली जड़ टैप रूट वाली है, जैसे आपके गेहूं धान है तो इसमें क्या है ऊपर ही जड़ होती है, इसके बाद जो नीचे है अरहर है और उस तरीके की जड़ें हैं। तो अगर किसान भाई अदला बदली करके खेती करेंगे, नहीं कर रहे हैं या कम हो रही है, फसल चक्र नहीं ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे भी वहाँ पे मृदा का जो है क्षरण हो रहा है, अपरदन हो रहा है। मृदा का उचित प्रबंधन न होना, मृदा का उचित प्रबंधन से मतलब है कि मेड़बंदी नहीं कर रहे हैं, खेत की मेड़ नहीं बना रहे हैं।
1: जी,
0: अगर खेत कट जा रहा है, खेत कट जा रहा है तो वहाँ से जो पानी का रिसाव होगा या पानी बहेगा तो उससे भी आपके जो उपजाऊ कण हैं मिट्टी के वो बह जाएंगे। और इसके बाद हम उसमें जुताई, सही से जुताई करें, पाटा चलाएं और जैविक खाद मिलाएं, तब जाके जाके आपकी ज़मीन का जो है वो कण सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद किसान भाइयों, ये तमाम कारण हैं जिनके कारण जो है भूमि का क्षरण हो जाता है, अपरदन होता है। जैसे आपका जल बहाव है, जल का प्रबंधन न किया जाना, जल का प्रबंधन नहीं करेंगे
1: जी जी
0: तो वो एक ऐसा भयानक रूप ले लेगा कि बहुत सारे मिट्टी आपकी बह जाएंगी, उसको रोकना जो है मुश्किल हो जाए, खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा। खराब जल प्रबंधन, मृदा का अधिक उपयोग, जब मृदा का अधिक उपयोग करेंगे और इसके बाद जो है जैसे आपने मृदा का अधिक उपयोग किया, अब एक बार फसल जो है नहीं लगाए, उसमें फसल लगाने पे क्या होता है कि वो कवर क्रॉप होती है, वो एक मिट्टी को ढके हुए रहती है, एक तरीके से उसमें जैविक पदार्थ भी मिलते हैं और आपकी मिट्टी बहती नहीं। अगर इसके बाद फिर आपने उसको खुला छोड़ दिया, जुताई कर दिया और फिर हवा आया या मिट्टी का वो आया तो वो पानी के बहाव हवा के साथ में आपकी मेड़ बंदी नहीं हुई है तो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि किसान भाई हरण के फसल के अदला बदली कई के जरूर बोए के चाही, मृदा अपरदन उसे रुकत है। और दूसरा चीज ये बा का कि मृदा अपरदन का अपने खेती किसानी पे का प्रभाव पड़ा था एक
0: किसान भाइयों, जैसे मृदा अपरदन ज्यादा होने से, क्योंकि ये मृदा अपरदन दिखता नहीं है, मृदा अपरदन ज्यादा फसल की जो है उपज घट जाती है, फसल की उपज घट जाती है क्योंकि मृदा में खराब तत्व होने से फसल की वृद्धि और विकास रुक जाता है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए फसलों के लिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रह पाते हैं। मृदा की घटती उपयुक्तता, अगर ज्यादा कटाव हो गया, ज्यादा मृदा अपरदन हो गया तो आप उसमें सही ढंग से फसल नहीं बो पाएंगे, सही ढंग से उसमें खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें तमाम तरीके के जो है ऐसे तत्व मिल जाएंगे कि आपकी फसल को नुकसान करेगा। इसलिए किसान भाइयों कि वहां पे नाले टाइप बन जाएंगे या उबड़ खाबड़ जमीन हो जाएगी, इतना कटाव हो जाएगा, तो इस तरीके से आप उसमें खेती नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पर्यावरण की क्षति, पर्यावरण अपरदन से, मृदा अपरदन से जो है पर्यावरण की क्षति होती है, क्योंकि इससे मृदा में जो भी खराब तत्व हैं, कम तत्व हैं, वो जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर दे। इसका मतलब यह है जैसे जो हेवी मेटल्स होते हैं जिसको भारी तत्व कहते हैं, जैसे आपका सीसा हुआ, आर्सेनिक हुआ, कैडमियम हुआ, इस तरीके के पदार्थ आपके जैसे उद्योगीकरण हो रहा है उसके पानी से जा रहा है और इस तरीके से, तो वो भी जमीन को हमारे नुकसान करता है। जल प्रदूषण, मृदा अपरदन से जल प्रदूषण भी बहुत होता है, क्योंकि मृदा में खराब तत्व जल में मिल जाते हैं और वो खराब तत्व जो होता है वो हमारी फसल के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और जो गुणवत्ता होती है उसकी, हमारे फसल की या उपज की, वो खराब होती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जौन है बहुत बढ़िया आप बताएं। एक चीज और चलत चलत हम पूछे जाना चाहब कि जौन है मृदा अपरदन रोके के का उपाय बाटे, एक थोड़ा सा संक्षेप में बतावें।
0: आपको किसान भाइयों मृदा का परीक्षण करवाना चाहिए, मृदा का परीक्षण करवाने से पता चलेगा कि कैसे जो है आपके कौन से तत्व सही हैं, कौन खराब तत्व हैं, उस हिसाब से आप खाद देंगे। हरी खाद का जो है प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों, और जैविक खाद, जैविक खाद में आपके बर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट हुआ या सड़ी गोबर की खाद है, इसका प्रयोग करें किसान भाइयों। मृदा सुधार, आपको जमीन के अपने जो है मृदा को सुधार करना चाहिए, चाहे आप उसमें मृदा सुधारक डालिए या पुआल डालिए या और चीजें हैं फसल

0: कैसे उसमें डाल के उसको सड़ाइए। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना चाहिए किसान भाइयों, और मृदा अपरदन रोकने के लिए किसान भाइयों में जागरूकता फैलानी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आप आयन और मृदा अपरदन का कृषि पर दुष्प्रभाव ई का बाटे जौन है, का पड़त है अपने खेती किसानी पे एकर दुष्प्रभाव, बहुत बढ़िया जानकारी देहन। यह जानकारी देवे दे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी किसान भाई सुन रहे थे मृदा अपरदन का कृषि पर दुष्प्रभाव, और इस विषय पर डॉक्टर दशरथ यादव से बातचीत किया अनिल कुमार यादव ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता सुनवाएंगे। वार्ता का विषय है बच्चों में निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार।
1: निमोनिया हम लोग सामान्यतः खांसी और जुकाम और बुखार के साथ आने वाली समस्या को हम लोग निमोनिया कहते हैं। पूरे विश्व में बच्चों शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़े कारणों में से एक है ये निमोनिया, और WHO के हिसाब से लगभग 987,000 डेथ सिर्फ हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष बच्चों की निमोनिया की वजह से हो जाती है। निमोनिया दो तरह की सबसे कॉमन है, या तो बैक्टीरियल होते हैं या वायरल होते हैं। वायरल बैक्टीरिया और इनके जो फैलने का तरीका है इसको एयरबॉर्न रूट कहा जाता है। ये सांस के द्वारा या हवा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और ये एक व्यक्ति से संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से ही इन्फेक्ट से फैला जाता है। हालांकि ये वायरस और बैक्टीरिया बड़े नाजुक होते हैं, ये सामान्य वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, मगर किंतु ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क में लगातार आने के बने रहते हैं, इसलिए वातावरण में इनकी प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो इन्फेक्टेड आदमी हो, जिनको सर्दी जुकाम हो, अगर इनको इसीलिए थोड़ा अलग रखा जाना चाहिए, और इन लोगों से छोटे बच्चों को, शिशुओं को बचा के रखना चाहिए ताकि ये फैलने ना पाए। हमें देखना चाहिए कि अगर खांसी जुकाम या होना शुरू हुआ तो हमें करना क्या है। सामान्य बच्चे की नाक बहनी शुरू हुई, खांसी आनी शुरू हुई, तो हम एक कफ सिरप बाजार से खरीद के ले लेते हैं, लेकिन ये करना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं कि अभी कारण क्या है, तो हमेशा अगर बच्चे को खांसी आ रही है और उसके साथ उसको बुखार है, तो हमेशा ये लक्षण इस बात के होते हैं कि कहीं उसको निमोनिया तो नहीं डेवलप हो रहा है। और उसके लक्षण की सीवियरिटी या उसकी गंभीरता असेस करने के दो तीन तरीके आप हैं। अगर आप उसकी सांस लेने की गतियों को नापें, अगर छोटा बच्चा है, 2 महीने से छोटा बच्चा है, और अगर 60 बार से ज़्यादा उसकी सांस चल रही है, और अगर 2 साल से 2 महीने से 1 साल का बच्चा है और 50 बार से ज़्यादा उसकी सांस चल रही है, या 2 साल से बड़ा और 5 साल से छोटा है और उसकी 40 बार से ज़्यादा सांस चल रही है, तो इसको गंभीर लक्षण माना जाता है। और एक पसली चलना, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, जब बच्चा सांस लेता है तो उसका जो चेस्ट वॉल है उसके, अगर वो सांस लेते समय उसकी पेट और उसकी मांसपेशियाँ अंदर की तरफ धंसती हुई दिखाई पड़े, तो इसको चेस्ट इंड्रॉइंग या कहते हैं, जिसको पसली चलना हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, ये एक गंभीर इन्फेक्शन का लक्षण है। तीसरी चीज़ होती है स्ट्राइडर, कि गले से एक आवाज़ आती है जो गले के सूजन का, कि हमारे सांस की नलियों के अंदर सूजन की अगर तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो ये गले में आवाज़ आती है, इसको स्ट्राइडर कहते हैं। ये भी एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। चौथी चीज़ होती है वीजिंग। वीजिंग जैसे हम कहते हैं, जैसे एक पाइप के अंदर से हवा जाती है तो सीटी बजना, जैसे कभी कभी कहते हैं, जैसे हम लोग बड़े लोग महसूस कर पाते हैं कि हम रात में सोते हैं तो मेरे सीटी बजती है, इसी तरह बच्चों को भी सीटी बजती की आवाज़ आती है, जैसे एक छोटे से पाइप से हवा जोर से जा रही है, इसको वीजिंग कहते हैं। ये भी लक्षण एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। पांचवी चीज़ अलर्टनेस, कि बच्चा कितना चैतन्य है। अगर बच्चा खांसी जुकाम बुखार आते आते सुस्त पड़ता जा रहा है, रोज़मर्रा की एक्टिविटी उसने बंद कर दी है और सुस्त पड़ा है, ना बोल रहा है ना बात कर रहा है, तो ये एक गंभीर बीमारी की तरफ का लक्षण है। साथ में तेज बुखार होना और कुपोषण होना, ये एक छोटे से वायरल निमोनिया इन्फेक्शन को भी गंभीर बीमारी की तरफ ले जा सकता है। सबसे गंभीर चीज़ इसमें होती है, आखिरी चीज़ वो है साइनोसिस। साइनोसिस माने हाथों का, नाखून का, ओठों का नीला पड़ना। अगर ये नीले पड़ रहे हैं तो ये अति गंभीर अवस्था के लक्षण है। इसलिए हमेशा इन लक्षणों पे ध्यान रखें कि अगर ये हो रहा है, इनमें से कोई भी लक्षण हो, सांस तेज चल रही हो, पसली चल रही हो, चेस्ट में गड्ढे पड़ रहे हो, गले से आवाज़ आ रही हो, सीटी बजने की आवाज़ आ रही हो, बच्चा सुस्त पड़ रहा हो, तेज बुखार हो, या बच्चे को कुपोषण है, या उसके हाथ पाँव नीले पड़ रहे हैं, तो तुरंत अस्पताल आपको भागना चाहिए। घर की दवाओं से काम नहीं चलाना है। हम इसको बच कैसे सकते हैं? सबसे ज़्यादा बचने का तरीका है बच्चों को और परिवार के सभी सदस्यों को खुली जगहों पर रखना, जहां रोशनी और हवा का आदान प्रदान अच्छे से होता हो, खाने पीने में पोषण का अच्छे से ध्यान रखना।

0: रखें, क्योंकि जो अगर स्वस्थ शरीर में बीमारियों के लगने की संभावना बहुत कम होती जाती है। पॉल्यूशन से बचना बहुत ज़रूरी है, धुआं धूल धक्कड़ इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही आप सांस की बीमारियों से बचे रह सकते हैं सबसे। और उसके बाद ज़रूरी है टीकाकरण। अब कई सारे वैक्सीन ऐसी आती हैं जो कि गंभीर निमोनिया से आपकी बचत करती हैं, जैसे मिजल्स है, नीमोकॉकल है, हिब का टीका है या डीपीटी का टीका है। और सबसे अंत में जो मैंने गंभीर लक्षण बताए इनकी जानकारी, इन गंभीर लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो तो घर पे कदापि इलाज न कराएं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपने पास के अस्पताल में जाके बच्चे को दिखलाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आपने सुना डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता। वार्ता का विषय था बच्चों में निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात 11:10 पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का श्री द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से सजीव प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे। प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन हम आपको सुनवाएंगे और दोपहर 12:15 रामशंकर का ख्याल गायन, रात 10:30 रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम सुबह 8:45 पर सुनिएगा, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है। साथ ही सुबह 9:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुजाता सिंह के स्वर में गाए गीत का आनंद लेंगे। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10:05 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञ पांडे जी की बातचीत सुनेंगे। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है। सुबह 10:30 लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राम सुमेर यादव, प्रतिमा मिश्रा और रजवंत सिंह। इनके स्वर में गाए आज आप लोकगीत का आनंद लेंगे। और दिन में 11:00 हम आपको सुनवाएंगे हमारा विशेष कार्यक्रम जगत सखा श्री कृष्ण। प्रतिभागी हैं नेहा गुप्ता और कंचन पांडे। यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 11:30। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा दोपहर 12:30 प्रस्तुति मधु कुमार जी की है। दिन में 1:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में चर्चा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, निखार में घर पर बनाएं कूलिंग फेस मिंट्स, जायका जन्माष्टमी के व्यंजनों से महकेगा और गृहलक्ष्मी टिप्स में किचन गार्डन टिप्स दी जाएगी। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम सुनिएगा और शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर लोकगीत राम सुमेर यादव के स्वर में और रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी आप सुनेंगे। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर विजय कुमार पांडे की वार्ता कृष्ण वंदे जगत गुरुवम आप सुनेंगे। रात 10:00 हम आपको सुनवाएंगे विपुल कृष्ण नागर का लिखा नाटक मैं मर चुका हूँ, प्रस्तुति अभिनव श्रीवास्तव जी की है। ये थी जानकारी। आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन आप सबके लिए लेकर आए हैं शागिर्द फिल्म से, और इस भजन को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी जी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

जन्मोत्सव और हर घर में झांकी की तैयारी हो रही है सजाने की। लोग अपने घर द्वार को सजा रहे हैं और हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। इसे हमने लिया है बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म से और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है सौम्या ने। सौम्या जी की ही रचना है और संदीप ने संगीत दिया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

0: इस भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 7:20 होने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जैसे हम अपने लखनऊ केंद्र से
1: प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत त्यासाना। पहले मुख्य समाचार। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आस्था के साथ आर्थिकी पर भी है सरकार का ध्यान। प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। 500 ड्रोन के जरिए आसमान में जीवंत होंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने हांगकांग को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात करके बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री बांटी और आश्रयहीन हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ की आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही किसानों के खाते में DBT के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद और राहत पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
1: बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए शासन ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है, उनके रहने के लिए, भोजन के लिए और जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घर पे, उन पर राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहती है। इसके लिए ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। इसमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपार में सरयू, बलिया में घाघरा और बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा सहित सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
2: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने

0: मुख्यमंत्री ने कल देर शाम वृंदावन में नवनिर्मित कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग का भी लोकार्पण किया। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मार्ग का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात और भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये मार्ग शहर के लिए बड़ी जीवन रेखा साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कल मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 9वीं बोर्ड की बैठक में ब्रज क्षेत्र में जारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा परियोजना का काम अगले 3 वर्षों में 3 चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मथुरा में आज जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: समूचे ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं यहाँ के वृंदावन श्री धाम ठाकुर श्री राधा नील माधव जी महाराज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह है। महाराज श्री परम अवस्थी के सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में लीन है। यहाँ के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रोदय मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: कल मथुरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर कल गोरखपुर में प्रदेश के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने कल हांगकांग को 137 रन के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 124 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 56 रन पर सिमट गई। राजस्व वादों के निस्तारण में सरलता और पारदर्शिता को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से कल 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। राजस्व परिषद बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के लिए ये पहल की गई है। इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी और वाद की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना आसान होगा। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही और शिथिलता पर प्रदेश सरकार ने 4 तहसीलदार और 1 नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। और अंत में

0: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा आस्था के साथ आर्थिकी पर भी है सरकार का ध्यान। प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। 500 ड्रोन के जरिए आसमान में जीवंत होंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने हांगकांग को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन सुनाएंगे। राग है चारुकेशी और आपके साथ तबले पर संगत किया है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन। राग था चारुकेशी और तबले पर संगत किया था पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं देश गान।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने

0: आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरी मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together.

0: Together to strengthen partnerships, India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक समृद्धि उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है
1: अपडेट रहे आगे रहे एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें
4: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है

0: भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth orbit.

0: मिशन इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजवित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मावनत के लिए इमदादी सामान के साथ 2 और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और ख्वातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। 27 घंटे की उल्टी गिनती के बाद सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से रात देर गए 2:55 पर छोड़ा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को उसके छोड़ जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतालिका मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और ये जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाए जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट भी है। ये सैटेलाइट कम वक्त में ही वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा, जिससे कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने वाले डेटा का इस्तेमाल जरात, कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने में मुआवनत के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट कुदरती आफात की सूरत में बर वक्त जानकारी फराहम कर सकेगा और इस तरह मुतालिका हुकाम को एमरजेंसी सूरतेहाल से निमटने की खातिर फौरी तौर पर इकदामात करने में मदद भी मिलेगी। इधर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इस मिशन से कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी और मुतालिका खिदमात की फराहमी में बेहतरी आ सकेगी। इस मिशन से अंदरून मुल्क तैयार की गई खलाई रॉकेट की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की भी अक्कासी होती है। अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिना कदर कामयाबी और मुल्क के लिए एक फख्रिया लम्हा करार दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत भारत की खलाई सलाहियत नई बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिससे आलमी सतह पर एक खलाई ताकत के तौर पर हमारी पोजिशन मजबूत से मजबूत तर हो रही है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजमित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल इस मुश्तरका कमेटी की सरबराह होंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: कमेटी में लोकसभा से जो सरकर्दा नाम शामिल हैं उनमें भर्तृहरि महताब, तेजस्वी सूर्य, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंखला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी कमेटी में शामिल होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीम बिल 2026 को मजीद और खोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजे जाने की मंजूरी दे दी थी। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक कानून 2010 में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना भी है।

0: भानु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जा रहे हैं।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए मथुरा और वृंदावन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश मथुरा में हजारों मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इनमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मथुरा और वृंदावन जय श्री कृष्ण के नारों की जाप के साथ भक्ति के माहौल से सरशार हैं। पूरे शहर में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ब्रिज मंडल और रियासत के दीगर हिस्सों में भी जन्माष्टमी पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन बड़ी तकरीब मथुरा वृंदावन में हो रही है, जहाँ आधी रात के जश्न के लिए सभी मंदिरों को फूलों, पत्तियों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। इस मौके पर लाखों अकीदतमंद पहले ही भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को देखते हुए पूरे मथुरा शहर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: गुजरात में भी जन्माष्टमी का त्योहार पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण जी के बड़े मंदिरों में मजहबी तकरीबात और खुसूसी रसूम का सिलसिला जारी है। इनमें आलमी शोहरत याफ्ता द्वारिकाधीश, डाकोर और श्यामला जी मंदिर शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद पवित्र शहर द्वारका में जमा हो रहे हैं ताकि जन्माष्टमी की तकरीबात में शिरकत कर सकें। आज सुबह सवेरे पवित्र मंगल आरती के साथ मजहबी रस्मात का आगाज हुआ, जो दिन भर खुसूसी दर्शन और रिवायती कीर्तन के साथ जारी रहेगी। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर को रोशनियों और फूलों से सजाया गया है और जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। मुकामी इंतजामिया और मंदिर के अहलकारों की जानिब से अकीदतमंदों की भीड़ के बंदोबस्त और बिना रुकावट दर्शन को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफे को मानवीयत अता की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के रूहानी पैगामात से बेलोस खिदमत की तरगीब मिलती है, जिसने हमेशा इंसाफ इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। उन्होंने दुआ की कि भगवान श्री कृष्ण की अकीदत का ये मौका हर किसी की जिंदगी में मुस्बत तवानाई लेकर आए और सबको कुव्वत फराहम करे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर सीपी राधाकृष्णन आज चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया एसएआईएफ सीआईएल में जदीद इंस्ट्रूमेंटेशन मरकज का इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर पंजाब यूनिवर्सिटी तकनीकी इख्तराई फोरम का भी आगाज करेंगे, जो यूनिवर्सिटी की तहकीक, इख्तरा और स्टार्टअप इको निजाम को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। इस फोरम में ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट्स के सुदूर और आला जुडिशियल रहनुमा शिरकत करेंगे। मजकूरा फोरम के जरिए इंसाफ की फराहमी, बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के तस्वीर, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मामलात पर तबादले ख्याल का मौका फराहम होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पहले दिन जुडिशियल वफूद के सरबराह के साथ कई दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बेलारूस, कजाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान के जुडिशियल रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर के दफ्तर ने यह जानकारी दी है कि जो राय दहिंदगान 30 जून से 17 अगस्त तक की मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपने इनविटेशन फॉर्म जमा नहीं करा सके, वो दावों और एतराजात दाखिल करने की मुद्दत के दौरान अपना नाम शामिल कराने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं। यह सहूलत इस महीने की 30 तारीख तक दस्तियाब रहेगी। कमीशन ने कहा है कि राय दहिंदगान हतमी वोटर फहरिस्त में अपना नाम शामिल

कराने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं जो इस साल 4 नवंबर को शाये की जाएगी। भारत ने नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और राहत की कार्रवाइयों में मदद फराहम करने के लिए इमदादी सामान के साथ मजीद 2 तैयारी भेजे हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर दोनों C-130J तैयारे काठमांडू में उतरे हैं। इमदादी सामान नेपाल के साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तरा के वजीर महावीर पुन के सुपुर्द किया गया। वजारत खारजा नेपाल में

0: दिन भी तो खास है और आपको पता ही होगा कि हम सुविचारों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारी एक श्रोता आप सभी को अपना भजन सुनाना चाहती हैं। तो नीरा त्रिपाठी जी, आप अपना भजन हमें सुनाइए और हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए। तो भाई आप तैयार हैं? श्रोताओं आप सब भी आनंद लीजिए इनके इस भजन का।
1: लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई।

0: ಕಂಠಿಗಿ ದೇದೋ ಪವಾಯಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ದೇದೋ ಬಧಾಯಿ ಜುಗ ಜುಗ ಜೀವೆ ತೇರಾ ಬಾಕೆ ಬಿಹಾರಿ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಹೋವೆ ಮನ ಚಾಹಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ದೇದೋ ಬಧಾಯಿ ಲಲ್ಲಾ ಕಿ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಮೇ ಆಯಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ದೇದೋ ಬಧಾಯಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ದೇದೋ ಬಧಾಯಿ.
1: भाई क्या बात है, आपकी बधाई और सुनकर हम श्रोता भी झूम गए. और श्रोताओं, हम अपने कार्यक्रम का विषय भी आपको बता दें कि आज का हमने विषय लिया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व. तो भाई इस विषय पर हम आपको बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल. तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब. ठीक है श्रोताओं, हम अभी आते हैं.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
2: डायल कीजिए 8700014242.
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें. सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं. आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए. अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें.
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में. और देखिए कितना खूबसूरत सा भजन नीरा त्रिपाठी जी ने गाया. और अब हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है. तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, और इसका धार्मिक और आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है. भगवान कृष्ण का अवतार बुराई का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ. कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस पूरे संसार और मानवता को श्रीमद् भगवद् गीता का संदेश दिया, जो कर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है. इस दिन सभी व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करने और बाल गोपाल की पूजा करने से श्रोताओं भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. तो भाई जिसे अपने कष्ट दूर करने हैं, ये बाल गोपाल की पूजा कीजिए और तैयारी कीजिए. तो श्रोताओं, ये बात हुई धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

कि अब इस दिन की आप सभी को सामाजिक महत्व क्या है ये मैं बता दूं। ये पर्व समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ता है और प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का संदेश देता है। आपको बताऊं, दही हांडी का उत्सव जो होता है ना, लोगों को टीम वर्क और सहयोग का पाठ पढ़ाता है। वहीं रासलीलाएं कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से लोगों में आनंद और उल्लास का संचार भरती हैं। भाई अब हम आपको कृष्ण शब्द का अर्थ भी बता देते हैं। तो भाई कृष्ण शब्द का अर्थ ये है कि संस्कृत में कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षित, आकर्षित इति कृष्ण, अर्थात जो सबको अपनी ओर आकर्षित और आनंदित करे वही चैतन्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं। और बातें बहुत हो गई, चलते हैं एक गीत आपको सुनवाते हैं और आप आनंद लीजिए इस गीत का।

लगता है और संस्कृत नाट्य परंपरा और लोक संस्कृति के मेल से रासलीलाओं का मंचन होता है जो जीव और ब्रह्म का मिलन का सांस्कृतिक प्रतीक है। श्रोताओं, हर पर्व हमें कुछ न कुछ ज्ञान जरूर देता है। अब कृष्ण और सुदामा की मित्रता को ही ले लीजिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें समानता का पाठ पढ़ाती है, वहीं अर्जुन को संकट के समय सही मार्गदर्शन देना संकट प्रबंधन सिखाता है। तो भाई, कृष्ण का जन्म और जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज में अधर्म, अत्याचार और अहंकार का नाश करने के लिए डट कर खड़ा होना आवश्यक है। तो आप सभी कृष्ण के जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाइए और अपने जीवन में उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन कीजिए। भाई, जब शिक्षा की बात करते हैं तो कल यानी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाएंगे और उस दिन आप अपने गुरुओं को प्रणाम करें और उनका सम्मान करें, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान संभव नहीं है। और अब चलते हैं संगीत यात्रा पर।

लाला का ये प्रश्न अपनी मैया से हमेशा रहता था कि वो काले क्यों हैं और राधा जी इतनी गोरी और खूबसूरत क्यों हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस दिन देश के प्रमुख मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है।

0: भाई नंदलाला इतने नटखटी हैं और उड़ गए हो जैसे पुरवैया, तो वक्त भी हाथ से फिसलता जा रहा है और अब हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हैं। तो आप हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी और अब नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं दुश्मन फिल्म से, और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है उदित नारायण, लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी जी की रचना है, उत्तम सिंह ने संगीत दिया है। तो भाई, आप सभी को मैं आवाज दे रही हूँ।

पर ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव के साथ। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, हम तो आपको कब से आवाज़ दे रहे हैं और खूबसूरत नगमों के साथ आवाज़ दे रहे हैं। भाई, ज़िंदगी में प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत है कि नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बधाई हो बधाई फिल्म से, और इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है के और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर जी की रचना है और अनु मलिक का संगीत है। तो जावेद अख्तर की रचना हो और मोहब्बत की बात हो तो फिर क्या ही बात है।

मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। और जावेद अख्तर जी ने ये बता दिया इस गीत के माध्यम से। और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा, जिसे हम लेकर आए हैं बागी फिल्म से। और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर ने। संजीव ने इस गीत की रचना की है, अमाल मलिक का संगीत है। तो भाई देखिए ये गीत क्या कह रहा है।

श्रोताओं, गीतों का ये सफ़र आप तय कर रहे थे अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव के साथ, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत समूचे ब्रज क्षेत्र में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और प्रशासन की तैयारियों पर मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
2: कान्हा की नगरी मथुरा समेत समूचा ब्रज क्षेत्र

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति और आस्था के रंग में डूब गया है। मंदिरों की सजावट, भजन कीर्तन, शंख और घंटियों की गूंज और राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां सजाई जा रही हैं और देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्मोत्सव की दिव्य छटा के साक्षी बनने के लिए पहुँच गए हैं। जन्माष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सव का पर्व नहीं है, ये भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है और भक्ति भाव में सब भूलकर झूमते लोग इसी बात का प्रमाण हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। उन्होंने न केवल यहां विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे मंदिरों, दर्शन और ज्ञान परंपरा में शामिल है।
1: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती, विरासत हमारे मंदिरों में है, हमारी भाषा में है, हमारे साहित्य में है, हमारे संगीत में है, हमारी कला में है, हमारी दर्शन में है, गणित में है, विज्ञान में है, चिकित्सा में है, खगोल ज्ञान में है, हमारी लोक परंपरा में है और हमारी ज्ञान परंपरा में है। और इसीलिए डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
0: मथुरा की जन्माष्टमी का आकर्षण पूरी दुनिया में है। हर बार यहाँ भक्ति के ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो न केवल अनूठे होते हैं बल्कि भक्तों को आनंद, आध्यात्म के नए स्तर पर ले जाते हैं। इस महोत्सव को भव्य बनाने के लिए इस बार अनेक प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भक्तिमय माहौल को और दिव्य बनाएंगे। इसके साथ ही पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के भव्य आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल श्री कृष्ण पहली बार पंचरत्नी विशेष पोशाक धारण करेंगे। साथ ही उत्सव के दौरान कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गौ द्वारा ठाकुर का अभिषेक किया जाएगा।
2: इस वर्ष भगवान पंचरत्नी पोशाक धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे और श्री ठाकुर जी कलहंस पुष्प अंगरे में विराजमान होकर बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में भक्तों को दर्शने होंगे। इस वर्ष जो संकल्प है वह गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा, तो एक बहुत ही प्रमुख हमारा जो भाव है गौ रक्षा और गौ सेवा, यह इस वर्ष श्री की जन्माष्टमी का मुख्य संकल्प होगा।
0: समूचे ब्रज क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विशेष सजावट, लाइटिंग के साथ ही भगवान के श्रृंगार और भोग की व्यवस्था की जा रही है। यहां के साधु संतों में अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के जन्म को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। वृंदावन के ही रहने वाले भगवताचार्य रामविलास चतुर्वेदी कहते हैं कि यहां संत समाज इस महोत्सव की साल भर प्रतीक्षा करता है, इसका आनंद और अनुभूति अद्वितीय है।
3: हमारे ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में भव्य और दिव्य सजावट की जा रही है तथा जितने भी हमारे मंदिर के मार्ग हैं उनको भी सजाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से इस धरा धाम पर अवतार लेकर के समस्त जनमानस के कल्याण के लिए, समरसता के लिए, एकता के लिए तथा समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, उसमें सभी संकल्पित होकर के अपने जीवन को भी उससे जोड़े। जय श्री कृष्ण।
0: जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने पर प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मथुरा में 129 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और 24 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 16 वॉच टावर बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मी इन टावरों से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों की निगरानी की जा रही है। एडीजी आगरा जोन एसके भगत ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर मथुरा वृंदावन को 7 जोन और 35 सेक्टरों में विभाजित किया गया है।
4: कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई, 7 जोन में और 35 सेक्टर लगभग इनको इस पूरे क्षेत्र को विभाजित किया गया है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस, पीएसी, आरएएफ सभी कंपनी डिप्लॉय की गई और प्लस जो है फायर

0: SDRF सभी लोग जो है फोर्स प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो गई, कहीं कोई इशू ना रहे। बस ये हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो है श्रद्धालुगण जो आएंगे, और भीड़ लगभग 10:30 बजे के आसपास रात्रि से बढ़ना शुरू होता है रात के 1 बजे तक। इस बार थोड़ा चेंज किया गया है कि होल्डिंग एरियाज बढ़ाए गए ताकि जो है श्रद्धालुगण को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो और सुगमता से दर्शन।
1: सुरक्षा के साथ ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 25 प्रमुख चौराहों, 3 घाटों और उनसे जुड़े मार्गों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। 17 प्रमुख स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जन्मोत्सव का उत्साह और शहर का आध्यात्मिक माहौल उन्हें आनंदित कर रहा है। यहाँ दर्शन करने आई किरण बताती हैं कि सबका मन होता है कि एक बार यहाँ आए और जन्मोत्सव में शामिल हो। इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं।
2: पहले की अपेक्षा यहाँ पर बहुत धूमधाम है। श्रद्धालु अभी से आ रहे हैं यहाँ पर। सबका मन होता है एक बार जन्मभूमि के दर्शन जरूर करें। हम भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ भगवान के एक बार दर्शन जरूर करें। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और बहुत ही भीड़ है यहाँ पर।
1: श्रद्धालु इस दिव्य महोत्सव को लेकर जहां भक्ति भाव में डूबे हैं, वहीं प्रशासन भी उनकी सुविधा और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के पूरे प्रयास कर रहा है। मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि आयोजन के दौरान मथुरा वृंदावन प्लास्टिक मुक्त रहेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि सजावटी सामग्री और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग न करें।
3: पूरे मथुरा, पूरे ब्रज मंडल में, पूरे वृंदावन मथुरा में पूरी पवित्रता पवित्रता के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन सर्वाधिक रहेगा वहाँ पे पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहे और पर्याप्त डेकोरेशन रहे, सेल्फी पॉइंट्स रहे, चौराहे के साथ सज्जा रहे, उसी हेतु निरीक्षण किया गया है और हमारी पूरी टीम विगत 25 दिन से अच्छे से कार्य कर रही है।
1: श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जलकल विभाग ने भी व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मथुरा नगर निगम के महाप्रबंधक जल अनवर मोहम्मद ख्वाजा ने बताया कि मंदिर परिसर के आसपास और परिक्रमा स्थलों पर 53 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 186 पानी के टैंकर लगाए जाएंगे। साथ ही भीड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
4: जन्माष्टमी के पर्व पर जैसा कि विदित है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से मथुरा वृंदावन में आते हैं और श्रद्धालुओं की के लिए पेयजल व्यवस्था और उनके सीवरेज एवं अन्य सुविधाओं के लिए जल विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित प्रतिवर्ष की जाती है। और इस वर्ष भी जलापूर्ति के लिए 186 पानी के टैंकर जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई है और के साथ साथ हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं जिनमें लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है। इस बार 55 नग मोबाइल टॉयलेट्स विभिन्न स्थानों पर लगे रहेंगे जिनमें इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उन पर भी मोबाइल टॉयलेट्स और टैंकर्स की व्यवस्था रहेगी।
1: जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर प्रशासन ने जहां खास तैयारियां की है, वहीं इस महोत्सव से स्थानीय दुकानदार, होटल कारोबारियों और व्यवसायियों को भी लाभ मिल रहा है। कान्हा के लिए पोशाक बनाने वाली सीमा बताती हैं कि बड़े स्तर पर उन्हें ऑर्डर मिले हैं। अलग अलग और आकर्षक पोशाक बनाने के लिए भक्ति, समर्पण भाव और पूरी मेहनत के साथ उनकी टीम काम कर रही है।
5: जन्माष्टमी की ही समय बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सारे मंदिरों की पोशाक एंड ठाकुर जी की पोशाक, सब तरह की पोशाकें चल रही है। इस समय व्यापार तो बहुत अच्छा है, इस समय देखने को मिल रहा है। कड़ी मेहनत के साथ सभी में लगे हुए हैं पूरा टाइम दे करके। इससे ही पता चलता है कि हमारा मार्केट बहुत अच्छा इस समय चल रहा है।
1: मथुरा में जन्माष्टमी के दौरान दिखाई देने वाली श्रद्धालुओं की विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता की झलक प्रस्तुत करती है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और जीवन मूल्यों का उत्सव भी है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी यही है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और प्रेम और सद्भाव के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए।
6: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और प्रशासन की तैयारियों पर मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
7: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम।
8: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करें।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, उसी का सब है जलवा जो जहाँ में आशकारा है। सामईन हजरात, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर, आदाब कबूल फरमाएं। सामईन, भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मुख्तलिफ मजाहिब, ज़बानों, रस्म व रवायत का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ की मिट्टी ने हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया है। यही वजह है कि यहाँ के पर्व और त्यौहार फ़िरका वाराना, हम आहंगी और यकजहती की मिसाल हैं। उर्दू प्रोग्राम में अब बात उस त्यौहार की जो अपने अंदर हिंदुस्तानी तहजीब और रवायत को पेवस्त किए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। सामईन, भगवान कृष्ण की पैदाइश भारतीय कैलेंडर के मुताबिक भादो माह के

कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी आठवीं को माना जाता है। इसी मुनासिबत से इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। मजहबी अकायद के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अदल व इंसाफ का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण की जिंदगी मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, इंसानियत भी है और मुश्किल हालात में मुनासिब रास्ता तलाश करने का पैगाम भी। यही वजह है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक किसी मखसूस मजहब का त्यौहार नहीं बल्कि भारतीय सकाफत की साझी विरासत का एक अहम हिस्सा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मंदिरों को सजाया जाता है, झांकियां सजाई जाती हैं और घरों में रोशनी करके अंधेरे को दूर कर नई उम्मीदें और नया जोश पैदा किया जाता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और इस त्यौहार में शरीक होते हैं। यही तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। सामईन, हमारी तहजीब हमें यह सिखाती है कि हमारे इबादत के तरीक़े अलग हो सकते हैं मगर इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे की ज़ुबान एक ही होती है। श्री कृष्ण की तालीमात में कर्म को खुसूसी अहमियत दी गई है। गीता का पैगाम इंसान को फ़र्ज़, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अदा करने की तरगीब देता है। अगर हम इन पैगामात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारें तो समाज में मोहब्बत और अपनापन पैदा होगा। इसलिए जन्माष्टमी हमें खुशी मनाने के साथ साथ मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारे को मजबूत करने का मौका भी देता है और उर्दू ज़बान इन पैगामात को आगे बढ़ाने में दौर कदीम से मुसलसल कोशा है। भगवान कृष्ण की तालीमात और इंसानियत व मोहब्बत के उनके पैगाम को उर्दू अदब में हमेशा से ख़ास जगह दी गई है। उर्दू अदब में कृष्ण को कन्हैया, कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर और नंदलाल जैसे नामों से लिखा गया है। इसके अलावा जन्माष्टमी के बायस शायर और अदीब कृष्ण की पैदाइश, मथुरा, गोकुल, यशोदा, नंद बाबा और उनकी बांसुरी का जिक्र कसरत से करते रहे हैं। उर्दू के मशहूर शायर हसरत मोहानी तो कृष्ण प्रेम के लिए मशहूर हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते थे। हसरत मोहानी ने कृष्ण पर कसरत से कलम चलाई है। कहा जाता है कि वो कृष्ण को हजरत कृष्ण अलैहि रहमा कहते थे। हसरत मोहानी कृष्ण की शान में लिखते हैं, मथुरा की नगर आशिकी का, मथुरा की नगर आशिकी का, दम भरती हैं आरजू इसी का, हर जर्रे सरजमीन गोकुल, हर जर्रे सरजमीन गोकुल, दारा है जमाल दिलबरी का, बरसानाओ नंदगांव में भी, बरसानाओ नंदगांव में भी, देख आए हैं हम जलवा किसी का, पैगाम हयाते जावे दा था, पैगाम हयाते जावे दा था, हर नगमे कृष्ण बांसुरी का, वो नूर सिया या की हसरत, वो नूर सिया या की हसरत, सर चश्मे फरोगे आगाही का। उर्दू के मशहूर शायर नज़ीर अकबर आबादी भी भगवान कृष्ण की अजमत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने जन्माष्टमी पर बाकायदा नज्म भी लिखी है। वो कृष्ण जन्म पर लिखते हैं, है रीत जन्म की यूं होती जिस घर में बाला होता है रीत जन्म की यूं होती जिस घर में बाला होता है, उस मंडल में हर घर भीतर सुख चैन दुबाला होता है, उस मंडल में हर घर भीतर सुख चैन दुबाला होता है। कृष्ण जन्म पर नज़ीर कहते हैं, पर उनके और ही लक्षण हैं जब लेते हैं अवतार जन्म, पर उनके और ही लक्षण हैं जब लेते हैं अवतार जन्म, वो लीला रचनी होती है वो रूप ये जो दिखाते हैं। हसरत मोहानी और नज़ीर अकबर आबादी भी हफीज़ जालंधरी की तरह अपनी शायरी में भगवान कृष्ण की अजमत और उनकी लीलाओं को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। हफीज़ जालंधरी लिखते हैं, ये पय करे तनवीर ये कृष्ण की तस्वीर, ये पय करे तनवीर ये कृष्ण की तस्वीर, मानी है कि सूरत सनत है कि फिरत, मानी है कि सूरत सनत है कि फिरत, जाहिर है कि मस्तूर नज़दीक है या दूर, जाहिर है कि मस्तूर नज़दीक है या दूर, ये नर है या नूर, ये नर है या नूर दुनिया से निराला, ये नर है या नूर दुनिया से निराला, ये बांसुरी वाला गोकुल का गवाला, ये बांसुरी वाला गोकुल का गवाला। इस तरह उर्दू शायरी और उर्दू अदब में कृष्ण, कृष्ण जन्म और कृष्ण लीलाओं का जिक्र कसरत से मिलता है। तमाम शोरा और अदीब कृष्ण की तालीमात और उनके पैगामात से मुतासिर हुए और उनकी खूब तशहीर करते हैं। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण किसी मखसूस तबके के ना होकर भारत की साझी विरासत का अहम मरकज़ हैं। आइए कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर खुशी मनाने के साथ साथ मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारे का अहद करें।

0: कि भारत की पहचान ही हमारी साझी तहजीब, गंगा जमुनी रवायात और आपसी मोहब्बत है। सामईन, इस अहम गुफ्तगू के बाद अब माहौल को तब्दील करते हैं, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायर जनाब उमर हनीफ।
1: चार मिसरे समाप्त करें। नंद के गांव से बरसाना से उल्फत कीजिए, कीजिए हर गाय हर ग्वाला से उल्फत कीजिए, कृष्ण भक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है सुनो, कृष्ण के दिल का सुकून राधा से उल्फत कीजिए। कंस जब जुल्मो तसद्दुद में दुबाला हो गया, उसकी सरकोबी को पैदा नंद लाला हो गया, जबर की खातिर उसे भी जान से जाना पड़ा, कंस की हर एक ताकत का दीवाला हो गया। सिर्फ राधा ही नहीं अब तो दीवाने हैं बहुत, यानी गोकुल प्यार का एक पाठशाला हो गया। सिर्फ राधा ही नहीं अब तो दीवाने हैं बहुत, यानी गोकुल प्यार का एक पाठशाला हो गया। कृष्ण के काले बदन से इस कदर उल्फत हुई, कृष्ण के काले बदन से इस कदर उल्फत हुई, सारा पानी बहरे कालिंदी का काला हो गया, सारा पानी बहरे कालिंदी का काला हो गया। चार मिसरे और समाप्त करें। हाजिर कर रहा हूँ कि तमकनस से वो मुझे बेआबरू करता रहा, तमकनस से वो मुझे बेआबरू करता रहा, मैं शराफत की ज़ुबां में गुफ्तगू करता रहा, मैं शराफत की ज़ुबां में गुफ्तगू करता रहा, मैं कि अपना चाक दामन सी न पाया आज तक, मैं कि अपना चाक दामन सी न पाया आज तक, सिर्फ औरों का गिरेबा ही रफू करता रहा, सिर्फ औरों का गिरेबा ही रफू करता रहा। चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ। दो दिलों के करार का मंज़र, दो दिलों के करार का मंज़र, कोई देखे तो प्यार का मंज़र, दो दिलों के करार का मंज़र, दो दिलों के करार का मंज़र, कोई देखे तो प्यार का मंज़र, और तेरे जलवों की ये हैरानाई, तेरे जलवों की ये हैरानाई, हर तरफ है बहार का मंज़र, हर तरफ है बहार का मंज़र। चार मिसरे और समात फरमाएं कि झूठी झूठी हंसी जो लब पे सजा ली है आपने, झूठी हंसी जो लब पे सजा ली है आपने, शायद गमों से आँख मिला ली है आपने, शायद गमों से आँख मिला ली है आपने, फांके पे फांका करके भी जाहिर नहीं किया, फांके पे फांका करके भी जाहिर नहीं किया, गुर्बत की लाज खूब बचा ली है आपने, गुर्बत की लाज खूब बचा ली है आपने। गज़ल का मतलब ऐसा खिदमत है। वतन की आन पर मिटने का जज्बा कम नहीं रखा, वतन की आन पर मिटने का जज्बा कम नहीं रखा, झुकाकर हिंद का हमने कभी परचम नहीं रखा, झुकाकर हिंद का हमने कभी परचम नहीं रखा। सभी ने आज तक बस तंज के नस्तर लगाए हैं, किसी ने ज़ख्म दिल पर प्यार का मरहम नहीं रखा, किसी ने ज़ख्म दिल पर प्यार का मरहम नहीं रखा, किसी ने ज़ख्म दिल पर प्यार का मरहम नहीं रखा। मेरे सीने में लाखों गम छुपे हैं आज भी लेकिन, मेरे सीने में लाखों गम छुपे हैं आज भी लेकिन, मेरे सीने में लाखों गम छुपे हैं आज भी लेकिन, किसी के सामने आँखों को मैंने नम नहीं रखा, किसी के सामने आँखों को मैंने नम नहीं रखा, और कोई जो खैरियत पूछे तो हंसकर टाल देता हूँ, कोई जो खैरियत पूछे तो हंसकर टाल देता हूँ, किसी के सामने अपना कभी भी गम नहीं रखा, किसी के सामने अपना कभी भी गम नहीं रखा, और अंधेरी रात का राही कहीं ठोकर ना खा जाए, अंधेरी रात का राही कहीं ठोकर ना खा जाए, चरागों की लवों को इसलिए मध्यम नहीं रखा, चरागों की लवों को इसलिए मध्यम नहीं रखा, अंधेरी रात का राही कहीं ठोकर ना खा जाए, चरागों की लवों को इसलिए मध्यम नहीं रखा। जो अक्सर देखता है पस्त नज़रों से उमर मुझको, जो अक्सर देखता है पस्त नज़रों से उमर मुझको, ये मेरा ज़र्फ़ है उससे भी मिलना कम नहीं रहा।

श्रोताओं, सुजाता सिंह के स्वर में अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे और अब हम आपको सुनवाते हैं सुजाता सिंह के ही स्वर में गाया ये गीत।

फिर आज मुझे तुमको इतना बताना है। श्रोताओं, ये गीत अपने स्वर से सजाया था सुजाता सिंह ने, और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।

0: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 10:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए आपका अपना कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नेत्रदान भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी और इस विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे से बातचीत की है अभिनव प्रज्ञ पांडे जी ने और इस कार्यक्रम का आज हम आपको सुनवा रहे हैं दूसरा भाग। प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी जी की। तो लीजिए सुनिए आपका अपना कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
3: बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चराग जलते हैं। आंखें, मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत की सबसे अमूल्य देन है इस शरीर में। एक प्रश्न इसमें और भी आता है कि नेत्र प्रत्यारोपण और नेत्रदान, ये दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बातें हैं?
4: नहीं, एक ही बात नहीं है। मैं आपको एक बहुत साधारण शब्दों में बताता हूँ
3: जी।
4: पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन ब्लाइंड्स हैं, जिसमें से आधे ऐसे हैं जो ब्लाइंडनेस प्रिवेंट की जा सकती थी। हमारे अपने देश में 5 मिलियन ब्लाइंड्स हैं
3: जी,
4: जिसमें से 93% प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है,
3: जिनको रोका जा सकता,
4: जिसको बचाया जा सकता था।

0: और उसमें भी 8.2% ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट के बाद, सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट की वजह से है। उसके बाद 8.2% ब्लाइंडनेस जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। जैसा कि हमने बताया कि आई डोनेशन तो होता है, उतना नहीं होता है जो हम लोग चाहते हैं। जैसे कि हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, 2023 में हम लोगों को 62,000 आँखें मिली, 2024 में 64,000, 2025 में 69,000, और इस वर्ष हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 85,000 आँखों का कलेक्शन करें। और आपको ये मैं बता दूं कि आज की तारीख तक या कल की तारीख तक हम लोग लगभग 60,000 आँखें इकट्ठी कर चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: लेकिन ये सारी आँखें ट्रांसप्लांटेबल नहीं होती हैं। इसमें लगभग 25 से 30% आँखें जो ऐसी होती हैं जिसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो उसकी वजह से गैप बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों को मोटे तौर पे लगभग 1,00,000 आँखें चाहिए जिससे कि हम लोग इन कॉर्नियल ब्लाइंड्स को ट्रीट कर सकें। मिलती हम लोग को लगभग 60-65,000 है, और उसमें भी कुछ आँखें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल नहीं हो पाती है। एक बात और बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: कि जो कॉर्नियल ब्लाइंड्स हैं उसमें 60% ऐसे हैं जो 12 साल से कम के बच्चे हैं। ये बच्चे हमारे देश की संपदा है, और इनको ठीक करना हम लोगों का कर्तव्य है।
1: बिल्कुल
0: तो इस जनरेशन के लिए खास आग्रह है हमारा लोगों से कि इस जनरेशन को बेहतर करने के लिए आंखों का दान और चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और गीत हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस बीच में सुनवाएं, फिर आगे बात करते हैं।
0: एक पिक्चर है हासिल,
1: जी
0: आंखें भी होती हैं दिल की जुबां।
1: क्या बात है। ये एक कल्ट मूवी थी रॉक साहब, और इसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा कोई प्रयागराजवासी हो जिसने ना देखा हो। और ख़ासकर इसमें इरफान खान साहब ने एक्ट किया था, अब नहीं है वो इस दुनिया में, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस व्यक्ति की आंखें बोलती हैं,
0: यस
1: पूरा
0: एकदम।
1: अभिनय उस व्यक्ति की आंखें करती हैं। खैर, वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे सब पूरे परिवार की तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं डॉक्टर साहब अपनी बातचीत के। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत में है, और हमने कई बार ऐसा देखा है कि युवाओं ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया है कि जिससे पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई है, परिदृश्य बदल गया है समाज का, देश का। युवाओं से आप कैसे अपील करना चाहेंगे कि वो नेत्रदान खुद तो करें ही करें, बाकी लोगों को भी जागरूक करें? और इसमें मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से कितने लोगों के जीवन में रोशनी आ सकती है, ये आप हमारे युवाओं को बताएं, सीधा संवाद करें।
1: तो युवा शक्ति, जैसे मैंने कहा कि किसी भी देश की संपदा होती है, मैं अब युवाओं को बता रहा हूँ कि यदि आप में कोई सपना है और जुनून है तो आप आँख के डॉक्टर जरूर बने। हमारे पास एक्सपर्टीज है वर्ल्ड लेवल की। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिया है वर्ल्ड लेवल का, लेकिन हमारे पास डोनर टिश्यू की कमी है। हमें दान में वो आंखें नहीं मिल रही हैं। हमारे युवा साथियों से मेरी अपील है कि आपको नेत्रदान नहीं करना है, आपको अपने परिवार में, अपने कॉलेजेस में, अपने ग्रुप्स में, जहाँ कहीं भी आप इकट्ठे हों वहाँ पे नेत्रदान के बारे में बात करना है, परिवार में लोगों को समझाना है, ख़ास तौर पे वो बुजुर्गवार जो हमारे बहुत ही क्लोज हैं उनसे बात करनी है। और यदि आप कभी किसी फ्यूनरल में शामिल हों, मौका मिले, तो आप उनके परिवार के लोगों से यदि वहाँ बात करें फ्यूनरल के पहले कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकी नेत्रदान करवा सकते हैं, हो सकता है फैमिली आपको मना कर दे, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ जिस समय वो बॉडी दफना रहे होंगे या जला रहे होंगे, और तब यदि आप उनसे कहेंगे कि हम लोग इनकी आंखें दान कर सकते थे, तो वो भी अपनी आंखों में आंसू भर के आपसे यही कहेंगे, हाँ तुमने सही कहा था, हमसे गलती हो गई, हमें ये करना चाहिए था। युवाओं से हमारी अपेक्षा है कि आप जिस ओर ड्रीम करते हैं, जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन साथ में इन बातों को भी याद रखें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कह तो आप बहुत आसानी से रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसे समय में ये कहना थोड़ा कठिन है। हालांकि लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा इस वक्त जो हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, इवन मैं खुद के लिए भी ये आपकी बात को मैं उतारूंगा अपने जहन में कि ऐसा प्रयास किए जाने चाहिए जिससे मानवता लाभान्वित हो। मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ नेत्रदान, या मेरे परिवार के किसी सदस्य को करना है, या जैसा कि आपने कहा कि फ्यूनरल के समय परिवार वाले मान गए।

0: तो क्या तत्काल ये प्रक्रिया हो सकती है क्या?
1: एकदम एकदम हो सकती है। मैंने आपसे बताया कि 2 घंटे के अंदर आई बैंक की टीम कहीं भी पहुंच जाती है, किसी भी कॉर्नर पे, पूरे देश में कहीं पे भी होगा, 2 घंटे के अंदर। हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है, वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी, फ्यूनरल डिले नहीं होगा, केवल आपको आँख बंद कर देना है,
0: किसको बताना
1: और
0: होगा?
1: किसी भी आँख के डॉक्टर को और आई बैंक को बताना है। और आपने पूछा था कि आँख निकालने से कितने लोगों
0: हाँ
1: को
0: जी
1: फ़ायदा
0: जी
1: होगा, तो जब हम लोग 2 आँखें निकालते हैं तो वो दोनों आँखें एक ही व्यक्ति के नहीं लगाते हैं,
0: ओ
1: यदि वो दोनों आँख से वो व्यक्ति दिक्कत में हो,
0: जी
1: एक ही आँख एक व्यक्ति को दी जाती है। और अब चिकित्सा और टेक्नोलॉजी में जो नई बातें आई हैं उससे हम लोग एक कॉर्निया से 2 या 3 व्यक्तियों की आँख ठीक कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: पहले ऐसा था कि पूरी की पूरी कॉर्निया एक ही व्यक्ति को लगती थी, अब जो कॉर्निया की डिफरेंट लेयर्स हैं उनको हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, और जिस व्यक्ति की जो लेयर ख़राब है उसको केवल ट्रांसप्लांट करते हैं और दूसरी वाली लेयर्स दूसरे व्यक्ति को लगाते हैं। तो यदि हम लोगों ने 2 आँखें निकाली तो उससे हम लोग 4 या 6 आँखों को ठीक कर सकते हैं।
0: अगर हम ग्रामीण परिवेश की अपनी बात करें तो वहाँ पर ये अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा कठिन है उनको समझाना, उनको ये कहना कि भाई आप अपना कोई अंगदान करें, ऑर्गेन डोनेशन करें या नेत्रदान करें। उनके लिए कुछ विशेष तरीका आप बताएंगे, कैसे उनको समझाया जाए, सरलतम भाषा क्या हो सकती
1: हाँ,
0: है?
1: मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों के देश से लगा हुआ एक छोटा सा देश है श्रीलंका। श्रीलंका के सभी लोग अपनी आँखों का दान करते हैं और श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है आँखें पूरे देश में।
0: अच्छा
1: हम लोग यदि अपने देश में, वैसे कोई ये बात बायस्ड नहीं है, लेकिन दक्षिण के लोग ज़्यादा आँखों का दान करते हैं। हम यदि कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं कि ये हमारा शरीर है, नश्वर है, हमने पैसा कमाया, हमने घर बनवाया, कार खरीदी, ये सारी चीज़ें जब हमारी मृत्यु होती है तो यहीं की यहीं छूट जाती हैं, कुछ हम साथ लेके नहीं जाते हैं। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी आँखें यहाँ रह जाएं और उस सुंदरता को हमारे थ्रू एक दूसरा व्यक्ति देखता रहेगा।
0: क्या बात
1: ये बात अब गांव के लोग हों या शहर के लोग हों समझने लग गए हैं। गांव में भी अब सोशल मीडिया उतना ही एक्टिव है, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं, हम सभी लोगों को इसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
0: जी। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश और रहेगी एक गीत की हमारे श्रोताओं के लिए।
1: एक गज़ल है
0: जी
1: मुझे बहुत पसंद है, फ़र्ज़ करो
0: हम अहले वफा हैं,
1: हम अहले वफा
0: क्या
1: हैं।
0: बात है, इब्ने शाह साहब की गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है और रूहानी गज़ल इसे हम कह सकते हैं। फ़र्ज़ करो हम अहले वफा हों, फ़र्ज़ करो ये दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। तो आइए सुनते हैं हमारी लाइब्रेरी से, हमारे आर्काइव से ये खूबसूरत सी गज़ल जो कि लिखी थी इब्ने इंशा साहब ने।

0: तो इस रूहानी गज़ल के बाद डॉक्टर साहब, अब हम अपनी बातचीत के अंतिम चरण में आते हैं। युवाओं को प्रेरित करने के लिए, खासकर आपको ऐसा लगता है क्या कि जो स्कूलिंग होती है वहीं से कुछ शुरू करना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा ऑर्गेन डोनेशन या नेत्रदान जैसी चीज़ें शिक्षकों के माध्यम से उनकी स्कूलिंग से ही आनी चाहिए, जिससे वो बड़े होते होते वो पुख्ता हो जाएंगी?
1: हाँ, हमें जरूर एक रूढ़िवाद को छोड़कर स्कूल के करिकुलम में ये बातें केवल आँखों के लिए नहीं, पूरे शरीर और जो अब डिफरेंट ऑर्गन्स हम लोग कैडबरी बॉडी से लेते हैं,
0: जी
1: चाहे वो लीवर हो या किडनी हो, इसके बारे में शुरू से ही बात करनी चाहिए। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन 3.5 साल के हैं, अबीर, मोही, और उनके स्कूल में किसी टीचर ने उनसे बात की, बातों ही बातों में कहा कि अब आंखें तो एक दूसरे की लग जाती हैं। तो उनको इस बात का एहसास है, और स्कूलों में इस बात को यदि क्यूरिकुलम में ले आया जाए तो
0: जी
1: और भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल। क्या मृत्यु के बाद आपको ऐसा लगता है, ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न हो जाएगा, जैसा कि परिवारीजनों को, जैसा कि इसके बारे में हमने अभी भी बात की, मृत्यु के बाद एक तो पूरा परिवार गमजदा रहता है, दुखी रहता है, शोक संतप्त रहता है, शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं, उतने लोग परिवारों में नहीं रह गए हैं। अगर ये कहा जाए कि एकाकीपन हर व्यक्ति के जीवन में आ गया है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में मृत्यु के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि, मैं कंपलसरी तो नहीं कहूँगा लेकिन किसी तरह से इसको नियम में नहीं लाया जा सकता क्या कि नहीं आपको नेत्रदान करना ही करना है?
1: नहीं,

0: स्वेच्छा का विषय।
1: ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट है,
0: जी
1: ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में एक कानून है जिसमें जितनी भी हॉस्पिटल डेथ्स होती हैं
0: जी
1: उसमें हॉस्पिटल डेथ के बाद फैमिली से रिक्वेस्ट करता है कि यदि आप चाहें तो आई डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी से जोर जबरदस्ती करना ये
0: जी
1: कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के एकदम अगेंस्ट है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए।
0: अंतिम प्रश्न डॉक्टर मुकेश खरे, मृत्यु के बाद भी किसी की आंखों से दुनिया को देखना, इस विचार को आप किस तरह से देखते हैं?
1: इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमने जो अपने इर्द गिर्द जिंदगी गढ़ी है 60 साल, 65 साल, 80 साल, और वो जिंदगी फिर से हमारी आंखें उसको देखती रहें,
0: जी
1: हम नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारे संग चलने वाले दीवाने तो हैं।
0: क्या बात है। अंत में इतनी अच्छी बातचीत के बाद इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी श्रोता हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं वो बिल्कुल लाभान्वित होंगे, जागरूक होंगे, सोचेंगे इस बारे में कि ये शरीर आखिरकार नश्वर है, क्यों ना हम उनको भी रोशनी देते चलें अपने जाने के बाद, जो कभी इस दुनिया को देख ही नहीं पाए। अंत में कुछ अपील आप हमारे माध्यम से, खासकर युवाओं से करना चाहें या कोई संदेश देना चाहें डॉक्टर मुकेश खरे?
1: मैं एक वाकिया शेयर करता हूँ आपसे।
0: जी
1: आज से लगभग 35 साल पहले की बात है। मैं सुबह क्लिनिक में पेशेंट देख रहा था, 9 बजे का समय रहा होगा, तो कुछ लोग मेरे पास आए कि साहब एक बच्ची की डेथ हो गई है, आप आँख निकाल लें। उन लोगों को पता था कि मैं इस काम को करता हूँ।
0: जी
1: मैं उस समय भी बहुत रैलीज निकाला करता था आई डोनेशन और ग्लाकोमा अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके। तो मैं तुरंत उनके साथ गया, देखा कि हाँ एक बच्ची की डेथ हो गई है, उसकी आंखें ठीक थी। मैंने कहा हाँ ये दोनों आंखें ठीक हैं, इसको निकाला जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची अनाथ है, इसका एक छोटा भाई है, इसकी आंखें खराब है, आप निकाल के इसके लगा दीजिए। दुर्भाग्यवश उस बच्ची के और उसके भाई के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। तो मैंने उस बच्चे की आंख देखी और मैंने उनको बताया कि भाई ये आंख जो है इस बच्चे के नहीं लग सकती, इसकी आंख इस काबिल ही नहीं है कि इसमें आंख का प्रत्यारोपण हो सके। वो सारे लोग जो उस समय वहाँ पे इकट्ठा थे वो उस मोहल्ले के थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब फिर आप रहन दीजिए, मैं चला आया। फिर उन्होंने दिन भर आँख के डॉक्टर और अस्पतालों को खंगाला। शाम को 8 बजे फिर से मेरे पास आए कि साहब अच्छा आप वो आँख निकाल लीजिए। तो मैंने कहा आप तो लेट हो गया, 6 से 8 घंटे के अंदर आँखें निकल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं निकल पाई, अब वो आँख किसी काम की नहीं रही। एक बंगाली में फिल्म बनी है चोक, 1983 में, उसमें ओमपुरी साहब ने रोल किया था, एक यूनियन के लीडर हैं, उनको मिल मालिक फंसा देता है एक क्रिमिनल केस में, उनको फांसी होने वाली है। तो जब उनको पता चलता है कि अब मुझे फांसी होने वाली है तो वो कहते हैं कि मेरी आँख जो है मैं ध्यान देना चाहता हूँ और ये कोवर्कर है मेरा उसको लगा दी जाए। फिर ये बात पहुँचती है उस मिल मालिक तक, वो मिल मालिक का भी एक लड़का है जिसको वो देख नहीं पाता है, उसको भी आँखों की ज़रूरत थी, तो वो चाहता है कि किसी तरह हमको मिल जाए आप। फिर ये डॉक्टर के पास पहुंचते हैं लेकिन डॉक्टर लोकेट कर लेता है कि नहीं ये इसने पेपर फोर्ज किए हैं वगैरह वगैरह। तो वो फिल्म भी इस बात के लिए थी कि नेत्रदान में कॉमर्शियल पॉइंट एकदम नहीं है और ये व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही होता है। बहुत अच्छी फिल्म है, कुछ
0: जी
1: और फिल्में भी बनी हैं जो ये संदेश देती हैं। एक पिक्चर थी धनवान राजेश खन्ना जी की,
0: जी
1: एक अनुराग है मौसमी चटर्जी की, मौसमी चटर्जी पूरे जीवन उसमें नहीं देख पाती हैं, एक बच्ची से उनको बड़ा लगाव था, वो लड़की कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपनी आँख देती है। तो संदेश आज आपके थ्रू हम सभी इलाहाबाद वासियों से और जो भी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग
0: जी
1: इस नेत्रदान महादान के

0: पर्व में हिस्सा लें, ये जरूरी नहीं है कि आप नेत्रदान करें, लेकिन इसको बढ़ावा दें।
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें बताई डॉक्टर मुकेश खरे आपने, और जिस तरह से आपने लोगों को समझाया, जागरूक किया, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है ये सुनने के बाद कि एक जो नैतिक कर्तव्य है हमारा, हमारे शरीर के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, और ख़ासकर उन जैसे बच्चों के प्रति जो बचपन से ही या बीच में किसी कारणवश इस दुनिया को नहीं देख पाए या नहीं देख पा रहे हैं। खैर, आज श्रोताओं हमने बात की नेत्रदान के ऊपर, और इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया जानकारी दी नेत्रदान के बारे में डॉक्टर मुकेश खरे ने। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और चलते चलते एक शेर के साथ आपको छोड़ जाना चाहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तेरे नयन मुस्कुराते हैं, जीस्त के रंग भूल जाते हैं। जीस्त यानी कि उम्र, आयु, जीस्त के रंज भूल जाते हैं, यानी पूरी उम्र की दुश्मनी, पूरी उम्र के सारे गम भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने बाद अपने नैनों को, अपनी आँखों को उसी तरह से मुस्कुराने का फिर से एक मौका दें। क्या पता हम मरने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी की आँखों के माध्यम से जिंदा हों। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ आज थे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश खरे, जो जानकारी दे रहे थे नेत्रदान के ऊपर। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम, और आज आपने सुना नेत्रदान भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी, और इस विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे से बातचीत किया अभिनव प्रज्ञ पांडे जी ने। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राम सुमेर यादव, और साथ ही आप सुनेंगे प्रतिमा मिश्रा के स्वर में गाये लोकगीत, और उसके साथ ही आप सुनेंगे रजवंत सिंह पटेल के स्वर में गाएगी। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं राम सुमेर यादव और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राम सुमेर यादव और साथियों के स्वर में गाया दादरा गीत। आइए अब सुनते हैं प्रतिमा मिश्रा की आवाज स्वर में देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रतिमा मिश्रा के स्वर में दादरा गीत। अब लीजिए सुनिए रजवंत सिंह पटेल और साथी के स्वर में देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने राम सुमेर यादव, प्रतिमा मिश्रा और रजवंत सिंह पटेल और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लिया। इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए हमारा विशेष रूपक।
1: प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित रूपक जगत सखा श्री कृष्ण। आलेख है कंचन पांडे का और प्रस्तुति है नेहा गुप्ता की।

0: भाद्रपद अष्टमी की वो काली रात, ये कालिमा मात्र अमावस की नहीं थी, ये थी उस त्रासदी की, उस अराजकता की, दर्द और पीड़ा की, जो काल कोठरी में बंद माता देवकी और वसुदेव की आंखों से अनवरत बह रहे थे। अश्रु पूरित नयनों की पुकार विधाता ने स्वीकार कर लिया। सितारों से विहीन रात में चमत्कार होने को था। चांद आकाश में नहीं, अंधेरी कोठरी में माता देवकी के आंचल में उदित होने को था।
1: कुछ ही पलों में दिव्यता का वह अद्भुत प्रकाश चहुं ओर फैल गया। एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। इस दिव्य प्रकाश ने युगों के अंधकार को हर लिया और काट दिए।

माता पिता का आशंकित हृदय पुत्र की सुरक्षा को लेकर व्याकुल था। कंस के अन्याय की सीमा से दूर गोकुल के प्रधान नंदराज का घर हर लिहाज से सुरक्षित जान वसुदेव गरजते बरसते रात्रि में चल दिए। नन्हे से बालक के चरणों के स्पर्श को व्याकुल यमुना ने मार्ग प्रशस्त किया, शेषनाग ने छत्र प्रदान किया और गर्ग मुनि ने नाम दिया कृष्ण।

0: जिसकी आभा ने सबको आलोकित कर दिया, आकृष्ट कर लिया। क्या जनमानस, क्या पशु पक्षी और क्या ही पेड़ पौधे, सब कृष्ण के आकर्षण में आकंठ डूबे हुए थे। कृष्ण के आने मात्र से कहीं जीवन में रंग भरने लगे थे, तो कहीं कुछ ऐसे नकारात्मक जीव भी थे जिनके रंग फीके पड़ने लगे थे।
1: एक नहीं, अनेक राक्षसी शक्तियों ने उन्हें आहत करने का प्रयास किया। कंस द्वारा भेजी गई इन आसुरी शक्तियों में शक्तासुर, तृणावर्त, धेनकासुर आदि कई राक्षसों सहित ममत्व का ढोंग रच रही पूतना राक्षसी का बाल काल में ही वध कर दिया।
0: पूरे गोकुल के प्राणों की रक्षा हेतु यमुना के विषैले जल को निर्मल बनाया। जिन चरणों की कठोर थाप से कालिया नाग जैसे विषैले सर्प का मान मर्दन किया, उन्हीं चरणों से कोमल ताल पर थिरकते गोपियों का मन मोह लिया।
1: माँ यशोदा के आंचल में खेलता लाड लड़ाता नन्हा बालक कब पूरे नंदगांव का कन्हैया बन गया पता ही नहीं चला। संपूर्ण गांव मातृत्व के अनूठे अनुभव से ओतप्रोत था, जिसमें माँ की डांट भी थी, उलाहना भी थी, बाल हठ भी था, और था तो ढेर सारा स्नेह सिक्त अपनापन। कृष्ण सबके थे, सबकी माखन की गगरी कृष्ण के स्पर्श को व्याकुल थी। सखाओं सहित माखन चोरी का आनंद जितना कान्हा ने लिया, उससे अधिक आनंदित होती ग्राम बालाएं और माताएं कि कब कान्हा चुपके से आकर हमारे घर का माखन खाएंगे और वो भी चुरा कर। उलाहना की आड़ में उस सलूने से मुखड़े को निहारने की ललक उन्हें माँ यशोदा मैया के आंगन में खींच लाती थी।
0: बाल कृष्ण स्वरूप पर अपने भाव व्यक्त करती सुमन बालाजी।
2: भगवान कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी वर्णन एक ओर तो कवियों की अमर वाणी को अलंकृत करता है।

0: दूसरी ओर भारतीय संस्कृति में, भारतीय जनमानस में ही नहीं, वरन समस्त वैश्विक संस्कृति के कण कण में बाल कृष्ण की अद्भुत छवि को आत्मसात करता है। भगवान कृष्ण का जन्म साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ था। वे असाधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाले एक कुशल नीतिज्ञ और अप्रतिम योद्धा थे। युवावस्था में उनका योगेश्वर रूप प्रकट होता है और बाल्यावस्था में उनका बाल रूप भी कम मनोहारी नहीं है। सूरदास जी ने अपने आत्मिक नेत्रों से भगवान कृष्ण की अद्भुत छवि, उनकी बाल लीला का अनुभूतियों के स्तर पर जाकर जिस प्रकार से उसे प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है। उनके श्यामल मुखमंडल पर घुंघराले बाल कपोलों का स्पर्श करते हैं और मस्तक पर श्वेत चंदन ललाट की आभा को बढ़ाते हैं। कपोलों तक झूलते काले घुंघराले केश मानो असंख्य भ्रमर मधुर रसों का आस्वादन कर रहे। कृष्ण की अनूठी बाल लीलाओं का स्मरण कर मन अनायासी प्रफुल्लित हो उठता है। बाल रूप में वे वंशी बजाते हैं और माखन चुरा कर खाते हैं तथा पकड़े जाने पर अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया, मेरे मित्रों ने ही मेरे मुख पर इसे लगा दिया। उनका बाल सुलभ उत्तर सुनकर माँ यशोदा आनंदित होती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। हमारी संस्कृति में जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनकी बाल लीला से संबंधित जीवन के विभिन्न घटनाओं को झांकी के रूप में दर्शाया जाता है। लोग अपने आराध्य भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करते हैं और उनके जन्म को हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाते हैं।
1: नटखट कृष्ण की चपलता, उनके चंचल चितवन ने पूरे गोकुल को सम्मोहित सा किया हुआ था। बालपन का शौर्य सबको अचंभित किए हुए था। तभी नन्हे कृष्ण की तार्किक समझ ने भी सबको नई राह दिखाई। जब इंद्रदेव की पारंपरिक पूजा के स्थान पर कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत के महत्व को स्थापित किया, लीक से हटकर कई परंपराओं को स्थापित करने वाले कन्हैया अपनी बाल लीलाओं से सहज ही सबके हृदय में स्थापित हो गए थे। अगम अगोचर ईश्वर के स्वरूप को योगी जन वर्षों की तपस्या से प्राप्त न कर पाए, उस स्वरूप को सहज भाव से कृष्ण को बालक, लाला, सखा, प्रिय मानने वालों ने यूं ही पा लिया।
2: इसमें सबसे अग्रणी थी गोपियां, जो सहज भाव से ईश्वरत्व के तत्व को आत्मसात किए हुए हैं, जिन्हें कृष्ण का सानिध्य मिला ईश्वर रूप में नहीं, अपितु अपने कान्हा, अपने सखा, अपने प्रियतम के रूप में। आयु से परे, प्रतिष्ठा से परे, सामाजिक बंधनों से परे, पारिवारिक वर्जनाओं से परे, बस कृष्ण के हो लिए। उद्धव का दिया ब्रह्म ज्ञान गोपियों के सानिध्य में कब कृष्ण प्रेम ज्ञान में परिवर्तित हो गया, ये स्वयं उद्धव भी नहीं समझ पाए। इसमें सर्वोपरि है राधा रानी का प्रेम, वृंदावन किशोरी, जो कृष्ण समस्त संसार के प्राण वायु बने हुए हैं, उनकी प्राणाधार, उनकी प्रिया राधिका जी हैं। पूर्णतया समर्पित कृष्णमय भाव से ओतप्रोत राधा कृष्ण की भी ईष्ट सरीखी थी। प्रेम की जितनी गहरी सीख उन्होंने कृष्ण को सिखलाई वो अभूतपूर्व है। यद्यपि राधा कृष्ण एक दूसरे में समाहित दो नाम मात्र हैं, ये विलग नहीं है, फिर भी राधा कृष्ण ने एक दूसरे के सानिध्य का अमृत पान किया, वहीं विछोह की पीड़ा का विष भी पिया। दूर रहकर भी समस्त सांसारिक संबंधों के निर्वहन के बावजूद एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव सदा

0: सर्वदा बनी रही, जो इस संसार के लिए अप्रतिम उदाहरण के तौर पर आज भी वंदनीय है। राधा कृष्ण का नाम हृदय को आज भी स्पंदित कर प्रेम रस से भर देता है।
1: श्री कृष्ण प्रेयसी राधिका जी पर अपने भाव व्यक्त करती सुमन बाला जी।
2: आदि से अनादि तक की एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है प्रेम। इसी प्रेम और भक्ति का एक अनूठा उदाहरण है राधा और कृष्ण का प्रेम। ब्रह्म वैवर्त पुराण की प्रकृति खंड में हमें पहली बार कृष्ण और राधा के प्रेम का संदर्भ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को दो ही चीजों से अगाध स्नेह था, एक उनकी बांसुरी और दूसरा उनकी प्रेयसी राधा। इस प्रेम की परिधि में कृष्ण के असंख्य रानियों के बीच एक राधा ही है, जिनका नाम आज भी लोगों के मन में रचा बसा है, समादृत है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। राधा अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है। समस्त संसार कृष्ण के प्रेम से सम्मोहित है और राधा का स्नेह स्वयं कृष्ण को सम्मोहित करता है। इसी प्रेम, भक्ति, त्याग, समर्पण और स्नेह की समवेत अभिव्यक्ति है राधा और कृष्ण का प्रेम।

0: समय का चक्र गति पकड़ने लगा। श्री कृष्ण के स्वरूप का विस्तार होने का समय आने लगा। जिस महाबली महा आताताई कंस के अंत की भविष्यवाणी कान्हा के जन्म के पहले ही हो चुकी थी, उसका वध कर श्री कृष्ण ने मथुरा का राज सिंहासन दुष्ट कंस के बंधक पिता उग्रसेन को सौंपा। एक लंबे अंतराल के बाद अपने बंधक माता पिता वसुदेव देवकी को कारावास से मुक्त कराकर जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ किया। मथुरा के सिंहासन के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान 17 बार जरासंध को परास्त किया, किंतु बार बार हो रहे जनधन की हानि को रोकने के लिए खुद को रणछोड़ कहलवाने से भी नहीं हिचकिचाए और सदा के लिए मथुरा नगरी छोड़ समुद्र के बीचों बीच एक नया नगर बसाया, द्वारिका, जहाँ के राजा थे श्री कृष्ण। राजनैतिक दायित्वों पारिवारिक दायित्वों के बीच कौरव पांडव संबंध को स्थापित करने के प्रयास में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण जी के इस स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कैलाश कुमार मिश्र जी।
1: श्री कृष्ण वास्तव में जननायक हैं। उनका संपूर्ण जीवन आद्यंत संघर्षों की एक अमिट गाथा है। हम भारतीयों की वीर परंपरा में शत्रु की ललकार सुन युद्ध से विरत होना कतई स्वीकार्य नहीं, किंतु जो बने बनाए नियमों पर चले, जो बंधी बंधाई परिपाटी को ही पाले, वो कैसा कृष्ण। कृष्ण इस बात को समझते हैं कि युद्ध में जीत किसी की भी हो, हारती अंततः मनुष्यता ही है। इसी मनुष्यता की रक्षा के लिए, उसे युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए वो इस बात की परवाह नहीं करते कि दुनिया उन्हें क्या कहेगी। जरासंध जब अपने दामाद कंस के वध का बदला लेने के लिए दोबारा मथुरा पर एक विशाल सैन्य बल के साथ आक्रमण करता है, तो कृष्ण बजाय उसका सामना करने के मथुरा छोड़ने का निर्णय लेते हैं, नेकनामी पर लगने वाले बट्टे की फिक्र किए बिना। प्रतिशोध की ज्वाला में पूरी मथुरा को जलाकर भस्म कर देने की कुचेष्टा के साथ जरासंध जब मथुरा पहुंचता है, तो उसे मथुरा में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। कृष्ण तब तक पूरे जनजीवन के साथ मथुरा से सैकड़ों मील दूर द्वारका पहुंच चुके होते हैं। जरासंध के साथ हुए पहले युद्ध में हुई जनहानि को कृष्ण ने बहुत करीब से देखा था, जन की पीड़ा को महसूस किया था। अपने माथे पर रण को छोड़ने का कलंक उन्हें स्वीकार था, युद्ध में मनुष्यता की जीतकार नहीं, लेकिन जनता का अपने नायक पर अटूट अगाध भरोसा है।

0: वह उसको इस कार्य के लिए हे दृष्टि से नहीं वरन वरेंद्र दृष्टि से देखती है और उनके तमाम नामों में एक नाम और जुड़ जाता है, भगवान रणछोड़ दास। आज बारूद के ढेर पर बैठे विश्व के लिए श्री कृष्ण प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं।
1: तत्पश्चात सदा के लिए वे मथुरा नगरी छोड़ समुद्र के बीचों बीच एक नया नगर बसाते हैं, द्वारिका, जहाँ के राजा थे श्री कृष्ण। राजनैतिक दायित्वों, पारिवारिक दायित्वों के बीच कौरव पांडव संबंध को स्थापित करने के प्रयास में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: कौरव पांडव के मतभेद के साथ साथ मनभेद के अनेकों विवरण हैं। कौरवों द्वारा रचे गए अनेकों षड्यंत्रों को मात देते, पांडवों का मान रखते कन्हैया वंदनीय है। सबसे बड़ा मानहानि का दृश्य था द्रौपदी का चीर हरण, वो भी भरी सभा में। अपनों से हताश द्रौपदी ने जब सब कुछ सखा कृष्ण पर छोड़ कातर स्वर में आवाज लगाई,
1: तो पल भर भी न लगा उनकी सहायता करने में। स्त्री के समर्पण भाव का यह एक अद्भुत दृश्य था, जिसकी महिमा आज भी उतनी ही मन को विह्वल करती है जितनी पुरातन समय में। सख्य भाव का निर्वाह करने में कृष्ण की भूमिका अद्भुत है, चाहे अर्जुन संग हो या द्रौपदी संग, हर पग पर उन्होंने साथ निभाया।
2: अपने वनवास काल के दौरान ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना से व्याकुल द्रौपदी ने एक बार पुनः सखा कृष्ण को पूर्ण मनोयोग से याद किया। एक अन्न भी न होने की स्थिति में आखिर वो कैसे ऋषि दुर्वासा और उनके अनेक शिष्यों का स्वागत करती।
1: तब भी कन्हैया ने बर्तन के तले में लगे एक दाना अन्न खाकर समस्त चराचर को तृप्त कर दिया। क्रोध के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा ने भूख से तृप्ति की बात कर आतिथ्य ग्रहण नहीं किया और द्रौपदी का संकट टला।
2: सबसे अद्भुत मित्र भाव तो उनका सुदामा जी के साथ था। बचपन के मित्र सुदामा के दुर्दशा काल में कैसे राजा कृष्ण ने उन्हें महल में बुलाकर अश्रुओं से उनके चरण पखारे। छुपाकर रखे गए चावल के दो कौर से ही समस्त धन धान्य से सुदामा जी को आपूरित कर दिया।
1: श्री कृष्ण की अनेक भूमिकाओं में युगों युगों तक याद रखा जाने वाला महाभारत का युद्ध कृष्ण की भूमिका के लिए भी जाना गया। निःशस्त्र होकर मात्र सारथी की भूमिका में रहकर भी सभी योद्धाओं में उन्हीं का स्वरूप था। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश कालजयी ज्ञान है। हार जीत, यश अपयश, सुख दुख के द्वंद में कैसे अर्जुन का मार्गदर्शन करता गीता का ज्ञान उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी उतना ही तर्कपूर्ण और प्रासंगिक है। इस भाव को समझाते हुए कैलाश कुमार मिश्र।
0: श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र विरुद्धों के सामंजस्य का अनुपम उदाहरण है। वे गोपालक हैं तो प्रजापालक भी, वे मुरलीधर भी हैं गिरिधर भी, वे महान योगी भी हैं और बेजोड़ प्रेमी भी। शांत के क्षणों में बांसुरी की मोहक लय पर जीव जगत को थिरकने पर बेबस कर देने वाले कन्हैया कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को अपने वैराट्य का आभास दिलाने के लिए उपदेशित करते हैं तो गीता बन जाती है और हजारों हजार साल बाद भी उसकी अभिनव व्याख्याएं होती चलती हैं। ध्यान रहे, रणक्षेत्र में युद्ध से विमुख हो रहे योद्धा को उत्तिष्ठ पार्थ युद्धाय कृत निश्चय की ललकार वाले ये वही कृष्ण हैं जो कभी पहले रण छोड़ रह चुके हैं। यहाँ भी उन्होंने कम कोशिशें नहीं की आसन्न युद्ध को टालने की। यदुवंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का अधिष्ठाता होने के बावजूद वे दौत्य कर्म में अपनी हेठी नहीं समझते और एक अंतिम प्रयास के रूप में दुर्योधन के पास निर्वासित सम्राट युधिष्ठिर के दूत बनकर जाते हैं कि किसी भी तरह इस अवश्यम्भावी युद्ध को टाला जा सके। किंतु सत्ता मद में आपाद मस्तक

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक विराट धर्म को खंड खंड कर उसके हस्तगत टुकड़ों की स्वार्थ जनित व्याख्या में लीन लोगों को गीताकार श्री कृष्ण से धर्म के मर्म को समझने की आज सख्त जरूरत है। कृष्ण हमारे

0: भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दर्शाकर अपने स्वरूप के मर्म का वर्णन किया। वो अव्यक्त होकर भी सर्वत्र हैं, अगम्य होकर सहज हैं, सबके भीतर हैं। आज भी मन और बुद्धि के द्वंद को सहजता से हरने वाला गीता का ज्ञान ही है। जब भी बांसुरी की धुन हृदय को सुकून देने लगे तो मतलब कृष्ण पास है। गीता का ज्ञान जीवन के कठिन पलों में राह दिखाने लगे तो मतलब कृष्ण पास है। जब हृदय की गहराई से कान्हा का भाव उठे और नेत्रों से बह निकले तो मतलब कृष्ण पास है।
1: कभी यशोदा के लाला बनकर तो कभी नंद के कन्हैया, गोपियों के नटखट कान्हा तो कभी सखा कृष्ण, कभी जीवन का मार्गदर्शन करते, गीता का ज्ञान देते योगेश्वर कृष्ण, हर रूप में जीवन को दिशा देते हैं। उनका हर स्वरूप अनुकरणीय है, लालित्य से भरपूर है। स्नेह की निर्झरणी में डूबती नाचती तृण की भांति सहज ही हृदय आलोकित हो उठता है जब कृष्ण का साथ हो।
0: अन्यथा कौन होगा जिसने महाभारत में निशस्त्र रहने का प्रण मात्र इसलिए तोड़ दिया कि वो भक्त भीष्म के प्रण का मान रख सके? कौन होगा जो प्रेम भाव में आकर राजसी भोजन को ठुकराकर विदुर पत्नी के हाथों केले का छिलका खाने को तैयार हो गए?
1: कारागार में जन्म लेकर भी जो युग पुरुष बने, समस्त विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहकर आत्मविश्वास से भरपूर बिना विचलित हुए जीवन को उत्सव बनाने की कला श्री कृष्ण ही सिखा सकते हैं। जिसकी भक्ति का आधार ही प्रीति है, जो कृष्ण प्रेम में डूबा वो सांसारिक प्रेम से स्वतः ही ऊपर उठ गया, जैसे जल में विद्यमान कमल का पुष्प। मन का अंधकार भी उतना ही काला और घना है जितना उस कारावास का अंधकार था जिसमें वो जन्मे थे।
0: जैसे उस अंधकार को कृष्ण जन्म ने आलोकित कर दिया, वैसे ही हृदय का अंधकार भी उनके नाम स्मरण मात्र से ही दूर हो जाता है। यूं भी श्री कृष्ण कहते हैं, आश्वस्त करते हैं, मुझे सब कुछ समर्पित कर दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा।

अभी आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित रूपक जगत सखा श्री कृष्ण। वाचन स्वर था नेहा गुप्ता और कंचन पांडे का। प्रस्तुति सहायक विनय श्रीवास्तव, आलेख कंचन पांडे और प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट शो यूथ एक्सप्रेस। मैं हूँ अंजलि श्रीवास्तव। दोस्तों, सुबह का टाइम है, कुछ लोग अपने दिन की प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी अपने फ़ोन में बिजी हो गए होंगे और कुछ लोग शायद अभी भी ये डिसाइड कर रहे होंगे कि आज प्रोडक्टिव बनना है या कल से पक्का स्टार्ट करना है। और ऑनेस्टली, ये कल से पक्का वाला सेंटेंस ना हमारी लाइफ में कितनी बार रिपीट होता है, इसका कोई प्रॉपर काउंट शायद ही हमारे पास हो। कभी हम किसी काम को देख कर कहते हैं, अरे ये तो बहुत ईजी है, और कभी काम आधा छोड़ कर हम कहते हैं, बाद में कम्प्लीट कर लूँगा। और कभी डेडलाइन इतनी दूर होती है कि हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ हमारी लेजीनेस, केयरलेसनेस या बैड टाइम मैनेजमेंट की स्टोरी नहीं है। हमारे ब्रेन के अपने पैटर्न्स होते हैं, हम अपनी एबिलिटी को कैसे जज करते हैं, अनफिनिश्ड काम को लेकर हमारा माइंड जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, और अवेलेबल टाइम को देखकर हम अपने काम को कितना स्ट्रेच कर देते हैं। साइकोलॉजी इन एवरीडे बिहेवियर्स को समझने के लिए कुछ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स देती है, और इन कॉन्सेप्ट्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें समझने के लिए आपको कोई साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। काम डाउन, आप अपने क्लासरूम में, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस में, और सबसे ज़्यादा अपने डेली रूटीन में इनके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। सो आज हम किसी कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल थ्योरी को डिकोड नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड, हम अपने ही एवरीडे बिहेवियर को थोड़ा सा साइंटिफिकली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी सवाल ये नहीं होता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, सवाल ये होता है कि मेरा ब्रेन मेरे बिहेवियर के साथ एक्चुअली कर क्या रहा है। और इसी क्वेश्चन के थ्रू आज यूथ एक्सप्रेस में हम बात करेंगे तीन इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, ज़िगार्निक इफेक्ट एंड पार्किंसंस लॉ। पहला हमें बताएगा कि कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस हमारी एक्चुअल कम्पीटेंस से कैसे आगे निकल सकता है। दूसरा समझाएगा कि अधूरा काम कंप्लीट होने के बाद भी दिमाग से क्यों नहीं निकलता आखिर। और तीसरा एक बहुत ही फैमिलियर प्रॉब्लम पर बात करेगा कि जब डेडलाइन दूर हो तो काम भी दूर क्यों चला जाता है। बात करेंगे इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पर एक एक करके, मगर आगे बढ़ने से पहले आज जन्माष्टमी है और आप सभी को जन्माष्टमी की

ढेर हो शुभकामनाएं हमारे तरफ से। श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमारे साथ और आपके अपनों के साथ बना रहे, और गीता के उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में धैर्य, कर्म और सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहें।

तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो हर टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली ओपिनियन दे सकता है। क्रिकेट की बात हो, ओपिनियन रेडी। पॉलिटिक्स की बात हो, ओपिनियन रेडी। स्टॉक मार्केट की बात हो तो भी ओपिनियन रेडी। फिटनेस, डाइट, रिलेशनशिप्स, टेक्नोलॉजी, हर टॉपिक पर एक कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनेशन। और जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई तुमको इतना सब कुछ कैसे पता है, तो आंसर आता है, अरे ये तो बात बेसिक है। अब ज़रा सोचिए, क्या किसी चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना और उस चीज़ के बारे में एक्चुअली बहुत नॉलेज होना सेम बात है क्या? नहीं ना। और इसी डिफरेंस को समझने के लिए साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कभी कभी किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें जितना कम पता होता है, हमें उतना ही कम आइडिया होता है कि हमें कितना कम पता है। टंग ट्विस्टर लग रहा है क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू। प्रॉब्लम सिर्फ नॉलेज की कमी की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमें अपनी नॉलेज की कमी का पता ही ना चले। साइकोलॉजिस्ट जस्टिन क्रूगर और डेविड डनिंग ने 1999 में इस फिनोमेना पे फेमस रिसर्च पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट। उन्होंने ह्यूमर, ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग जैसे एरियाज में लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस और उनकी अपनी परफॉर्मेंस के एस्टिमेशन को कंपेयर किया। लोएस्ट परफॉर्मिंग ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट किया, और ओरिजिनल स्टडी के मुताबिक एक एनालिसिस में इस ग्रुप की एक्चुअल परफॉर्मेंस रफली 12th परसेंटाइल थी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस को अप्रॉक्सीमेटली 62nd परसेंटाइल माना। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो इंसान कॉन्फिडेंट हो वो स्टूपिड है। नहीं नहीं, ये नहीं है। कॉन्फिडेंस बुरी चीज़ नहीं है, हर कॉन्फिडेंट इंसान, लेकिन इस इफेक्ट का एग्जाम्पल भी नहीं है। ये इफेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने किसी सब्जेक्ट को अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, आपने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, आपको लगता है ओ ये तो बहुत ईजी है, इसमें कहाँ ही कुछ था, मुझे तो सब समझ में आ गया। लेकिन जैसे जैसे आप और पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि अरे इसके अंदर तो और भी बहुत कुछ है। फिर आप शायद ये कहने लगे कि मुझे इसका बेसिक पार्ट समझ में आ गया है, लेकिन मुझे अभी और भी पढ़ना है इस पर। और ये एक्चुअली लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, मेटाकॉग्निशन। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपनी ही थिंकिंग और अपनी परफॉर्मेंस को खुद मॉनिटर कर पाना, मतलब सिर्फ ये जानना कि मुझे क्या आता है नहीं, बल्कि ये भी जानना कि मुझे क्या नहीं आता है। इसीलिए कभी कभी जेन्युइनली जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ना, उनका जवाब होता है आई डोंट नो, लाइक सोक्रेटिस सेड, आई नो दैट आई नो नथिंग। और ये वीकनेस नहीं है, अपनी लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज करने का भी एक नॉलेज का पार्ट है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक अबाउट सर्टेन टॉपिक इंस्टेंटली दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, जस्ट पॉज अ लिटिल और खुद से पूछिए कि क्या मुझे रियली सब पता है, या मुझे बस इतना पता है कि जितना मैंने देख रखा है। यू विल इंस्टेंटली नो द आंसर।

तो दोस्तों, अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करिए। रात को आप बेड पर आराम से लेटे हुए हैं, फ़ोन साइड में रख दिया है, अब फाइनली रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और सडनली दिमाग बोलता है, ओह कल वो ईमेल भेजनी है। आप फिर रिलैक्स करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिमाग में आता है, असाइनमेंट का लास्ट पैराग्राफ भी तो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, फिर मम्मी को वो कॉल भी तो करनी थी, और फिर रूम भी तो क्लीन करना था यार। अब आप फिजिकली बेड पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग पेंडिंग कामों की लिस्ट चलाए जा रहा है। इसी तरीके के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ज़िगार्निक इफेक्ट। मतलब जो काम हमने स्टार्ट किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया, वो कभी कभी दिमाग में बना रह सकता है। यानी काम फिजिकली रुक गया लेकिन माइंड के लिए वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ, इसीलिए वो बार बार याद आ सकता है। जैसे दिमाग कह रहा हो कि ये भी करना है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़िगार्निक ने 1927 में कंप्लीटेड एंड अनफिनिश्ड टास्क के मेमोरी डिफरेंसेस पर रिसर्च की थी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर अनफिनिश्ड टास्क ऑटोमेटिकली बेटर याद रहे। 2025 की एक मेटा एनालिसिस में अनफिनिश्ड टास्क के लिए कोई यूनिवर्सल मेमोरी एडवांटेज नहीं मिला। हाँ, अनफिनिश्ड टास्क को दोबारा कंटिन्यू करने की टेंडेंसी ज़्यादा कंसिस्टेंटली देखी गई है। यानी अनफिनिश्ड काम हमेशा बेटर याद रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे कंप्लीट करने का पुल हो सकता है।

डेली लाइफ में हम जब इसका एग्जांपल अपने अराउंड देखते हैं तो हम पाते हैं कि असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन लिखा हमने और सोचा बाकी कल कर लेंगे, फिर कल से वीकेंड आ जाता है,

लगता है कि अभी तो संडे भी है, संडे दोपहर में लगता है कि शाम को कर लूंगा, और संडे रात को लगता है ओके अब सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर वही सवाल, मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? ये सिचुएशन एक फेमस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पार्किंसंस लॉ। यानी कभी कभी किसी काम को जितना ज़्यादा टाइम दिया जाता है, काम उतना ही टाइम ले लेता है, इवन वेन इट कुड हैव बीन फिनिश्ड अर्लियर। सी नॉर्थकोट पार्किंसन ने 1955 में एक सटायरिकल एसे में लिखा था, वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कम्प्लीशन। उनका ओरिजिनल डिस्कशन ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में था, इसीलिए इसे स्ट्रिक्ट साइंटिफिक लॉ नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन समझना बेटर है। डेली लाइफ में हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, इमेजिन करिए, और अगर कहा जाए कि 1 घंटे में रेडी करना है इसको, तो आप फोकस्ड होकर बना सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अगला 1 हफ्ता है, तो वही प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, फॉन्ट्स, डिज़ाइन और अननेसेसरी एडिटिंग में पूरा हफ्ता लग सकता है। और डेडलाइन पास आते ही सडनली प्रोडक्टिविटी भी आ जाती है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम हमेशा वेस्ट होता है, रिसर्च, राइटिंग और प्रिपरेशन जैसे कामों में जेन्युइनली टाइम चाहिए होता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अवेलेबल टाइम और रिक्वायर्ड टाइम हमेशा सेम नहीं होते, और प्रोक्रेस्टिनेशन भी सिर्फ लेजीनेस नहीं होती। कभी टास्क बोरिंग होता है, कभी डिफिकल्ट होता है, और कभी डेडलाइन इतनी दूर होती है कि अर्जेंसी फील ही नहीं होती। तो अगर डेडलाइन मंडे की है, तो फ्राइडे को ही खुद को कह सकते हैं आप कि मंडे मेरी एक्चुअल डेडलाइन है, लेकिन मैं संडे इवनिंग तक इसे ख़त्म कर लूँगा। यानी ऑफिशियल डेडलाइन का वेट करने के बजाय अपने लिए एक अर्लियर डेडलाइन सेट कीजिए, बिकॉज समटाइम्स प्रॉब्लम्स ये नहीं होती हैं कि टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा है।

दोस्तों अब तीसरी सिचुएशन इमेजिन करिए। आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, डेडलाइन नेक्स्ट मंडे है और आज फ्राइडे है एज इट इज़ टुडे, और आप सोचते हैं फ्राइडे तो निकल गया, सैटरडे और संडे पूरे दिन पड़े हैं, आराम से हो जाएगा। सैटरडे आता है तो

तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने कॉन्फिडेंस को कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए, पेंडिंग कामों को सिर्फ दिमाग में कैरी मत करिए और हर काम की डेडलाइन को लास्ट मिनट तक मत छोड़िए, बिकॉज समटाइम्स अपने माइंड को समझना ही अपने दिन को बेटर मैनेज करने का फर्स्ट स्टेप होता है। आज के प्रोग्राम का रिव्यू आप हमें भेज सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि श्रीवास्तव यूथ एक्सप्रेस पर। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक और नई इंटरेस्टिंग बात के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज और FM 100.3 मेगाहर्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक Form 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। Form 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगी नन्हे दुनिया। 5:15 बजे युवजन का कार्यक्रम होगा युव वाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगी राम सुमेर यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत के अलावा रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी। सात बजकर 45 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे भूपेंद्र कुमार, इनसे आज हम आपको भजन सुनवाएंगे। 8:30 बजे अक्षयवट कार्यक्रम होगा। 9:30 पर कहकशा कार्यक्रम है जो कि गजलों पर आधारित होगा। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे विपुल कृष्ण नागर का लिखा नाटक मैं मर चुका हूँ, प्रस्तुतियों की अभिनय श्रीवास्तव की। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे राम शंकर का ख्याल गायन, राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की है श्री श्रवण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम शंकर का ख्याल गायन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की थी श्री श्रवण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गांव भुकिया मोड़ रीवा जिला प्रतापगढ़
0: जी से। जी रोशनी जी, समझ गई मैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम कृष्ण कन्हैया फिल्म का गाना।
0: बहुत अच्छी बात है, जन्माष्टमी के दिन आपने कृष्ण कन्हैया फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है।
1: जी
0: तो गीत के बोल याद है।
1: सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आपको भी खूब शुभकामनाएं और हम आपको सुनवाते हैं कृष्ण कन्हैया फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी हमारा नाम विनय कुमार बेनबंसी मंडीदीप रायसेन भोपाल से बोल रहे हैं मैडम।
0: अरे वाह भाई, भोपाल से भी आज हमें कॉल आ गई है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत विनय जी आपका। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी मैडम? दामनी मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना है मैडम।
0: दामनी मूवी का टाइटल सॉन्ग विनय जी सुनना चाहते हैं। तो विनय जी हमारी आपकी शायद पहली बार बातचीत हो रही है।
1: जी मैडम सेकंड, एक बार और लगी थी बहुत मुश्किल से मैडम, आज
0: अच्छा
1: दोबारा
0: अच्छा
1: हो गई लगभग।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं?
1: बाकी रेपिड चलाते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र के?
1: जी मैडम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम। मैं तो पारिक पारा भोपाल भी सुन लेता हूँ, बनारस भी, अपना प्रयागराज भी, हमारा प्रतापगढ़ ढकवा बाजार घर भी है
0: अच्छा
1: वहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए, बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बात करके विनय जी। और आपने जिस गीत की फरमाइश की है दामनी फिल्म के, उसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी,
1: हम राकेश मेजा प्रयागराज
0: जी। राकेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जानवर फिल्म का
0: गाने को बोल
1: ऐसे गाने।
0: करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है
1: जी। मैडम जी
0: जी,
1: तो प्रयागराज से क्या नाम का ना?
0: आपको कुछ नाम लेने हैं?
1: हाँ, इनका हंडिया प्रयागराज से।
0: अच्छा, हंडिया से कौन है?
1: उनका नाम नहीं याद आ रहा।
0: अच्छा, हंडिया से तो हमारे बहुत सारे श्रोता फोन करते हैं, जैसे एक प्रेमचंद जी हैं, एक महेंद्र जी। अच्छा, आप प्रेमचंद जी का नाम लेना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। और
1: शारदा प्रसाद
0: जी, चलिए तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और मनाई जाएगी रात को, और मैं आपको आकाशवाणी प्रयागराज प्रिया परिवार को समस्त श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
1: जी, आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये बताएं कि आप इस अवसर पर कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है मीरा का मोहन,
1: जी
0: बहुत ही सुंदर अर्थपूर्ण और भावपूर्ण गीत है। ओ कृष्णा, यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, गीत के माध्यम से ही जो कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसकी तो बात ही कुछ, इतनी इतनी मधुर और इतनी शांति मिलती है उनकी बांसुरी को सुन के, ये तो जग प्रसिद्ध बात है।
0: जी, बिल्कुल। और उन्होंने जो गीता में ज्ञान दिया है वो भी
1: जी
0: कितना अच्छा है।
1: जी जो आज के संदर्भ में बिल्कुल सही साबित होता है।
0: जी,
1: तो चलिए आपको मीरा का मोहन फिल्म का सुनवाते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी मधु कुमार की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी।

देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवृद्धि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज आधा प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The office of the Chief Electoral Officer of Delhi has informed that the electors who were unable to submit their filled-in enumeration forms within the specified time, that is from the 30th of June till the 17th of August 2026, may file Form 6 along with the prescribed declaration form for inclusion during the claims and objections period, that is the 31st of August till the 30th of September this year. The Commission said the electors may file Form 6 to include their names in the final electoral roll to be published on the 4th of November this year. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and the northeastern part of the country for the day. The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, is being observed across the country with religious fervour today. On the occasion, devotees observe fast, perform ceremonies and visit temples. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen in men's doubles quarterfinals of China Masters in Shenzhen, China this evening. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। हिंदुस्तान ने एक और बड़ी खलाई कामयाबी हासिल की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज अलसुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट पर सवार जमीन के मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि यह मिशन हिंदुस्तान की जमीन के मुशाहिदे की सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के कामयाब लॉन्च पर इसरो को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने कहा कि यह कामयाबी हिंदुस्तान के खलाई शोबे की उमदगी, इख्तरा और बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि इसरो और हिंदुस्तानी सनत के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी मुल्क के खलाई प्रोग्राम को नई ताकत और तौसी दे रही है। वजीर आजम ने इसे इसरो के लिए काबिले जिक्र कामयाबी और मुल्क के लिए काबिले फख्र लम्हा करार दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में तकरीबन 1,051 करोड़ रुपए के 229 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। तकरीब में वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में इमदाद और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत मथुरा समेत तमाम मजहबी मकामात की तरक्की के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ईमान के साथ मुआशी तरक्की पर भी तवज्जो दे रही है। वजीर आला ने कल देर शाम वृंदावन में नए तामीरशुदा कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग का भी इफ्तिताह किया। रियासती स्मार्ट सिटी प्लान के तहत तकरीबन 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए रास्ते का मुआयना करते हुए वजीर आला ने कहा कि ये रास्ता ट्रैफिक और हुजूम के इंतजाम के तनाजुर में शहर के लिए एक अहम लाइफलाइन साबित होगा। वजीर आला ने कल मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की नवी बोर्ड मीटिंग में ब्रज खुतबे में जारी कई अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आला ने मथुरा और वृंदावन के मुख्तलिफ मकामात पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए होल्डिंग एरियाज बनाने की हिदायत दी। मीटिंग में बताया गया कि ब्रिज 84 कोसी परिक्रमा प्रोजेक्ट अगले 3 सालों में 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में यौम असातज़ा के मौके पर रियासत भर के 81 असातज़ा को रियासती टीचर अवार्ड और चीफ मिनिस्टर टीचर अवार्ड से नवाजेंगे। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से 61 और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से 20 असातज़ा को रियासती सतह के इन अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव आज पूरी रियासत में अकीदत और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जय पैदाइश मथुरा में जन्मोत्सव की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहां पहुंची है। मथुरा में आज जन्माष्टमी के मौके पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण की जय पैदाइश और उनके मुख्तलिफ लीलों को 500 ड्रोन्स के जरिए आसमान पर जिंदा किया जाएगा। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: समूचे ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं यहाँ के वृंदावन श्री धाम ठाकुर श्री राधा नील माधव जी महाराज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी

0: भी महोत्सव पर श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह है। महाराज श्री परम अवस्थी के सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रदेव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: कल मथुरा दौरे पर पहुंचे वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में भगवान कृष्ण के दर्शन और पूजा की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की आवाम को जन्माष्टमी की मुबारकबाद देते हुए कहा,
2: 5200 वर्ष पूर्व धर्म, सत्य और न्याय के लिए श्री कृष्ण कन्हैया ने इसी स्थल पर प्रकट होकर के आर्यावर्त में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करने का कार्य किया था। कभी भी ब्रज भूमि के सभी पवित्र तीर्थों की उस मर्यादा को बनाए रख करके श्री कृष्ण की स्मृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाई, न केवल ब्रज भूमि में बल्कि पूरे भारत में श्री कृष्ण और राधा रानी की स्मृति न केवल वर्तमान में हम सब के लिए प्रेरणा है बल्कि भावी पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने का एक उत्साहपूर्ण माहौल भी है।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवमुंतखब सीईओ अयोध्या पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना ओहदा नहीं संभाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी महंत गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जुमे को नवमुंतखब सीईओ के साथ मीटिंग है, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि वो अपना ओहदा कब संभालेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी महंत गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि राम मंदिर में आरती पूजन समेत दीगर इंतजाम में तब्दीलियां की जा रही हैं। नवमुंतखब सीईओ के वर्क एरिया के सवाल पर जनरल सेक्रेटरी गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि वो सीईओ हैं और ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए वो तमाम इंतजामात को देखेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को देखना भी उनके काम के शोबे में शामिल है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी। गृहलक्ष्मी।

0: हरे कृष्णा राधे राधे। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली प्यारी सखियों को हेम का
1: और अनीता का प्यार भरा नमस्कार।
0: सखियों, आज का दिन अपने आप में बहुत खास है। वातावरण में भक्ति है, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि है, घरों में उत्सव का माहौल है और हर ओर सुनाई दे रहा है नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
1: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस पर्व की जिसका इंतजार भक्तों को पूरे वर्ष रहता है।
0: बिल्कुल,
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी।
0: भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर हुआ था। उस समय अत्याचारी कंस के अत्याचार से धरती त्रस्त थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अधर्म के विश्वास के लिए अवतार लिया और फिर कृष्ण जन्म की कथा जितनी अद्भुत है ना नीता, उतनी ही प्रेरणादायक भी है।
1: बिल्कुल, एक ओर मथुरा का कारागार, दूसरी ओर आधी रात का समय और उसी पावन बेला के में भगवान श्री कृष्ण का जन्म।
0: और वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर यमुना पार करते हैं और उन्हें गोकुल में माता यशोदा के पास पहुंचा देते हैं और फिर शुरू होती है नटखट कान्हा की बाल लीलाएं। भाई, कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को छेड़ना, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलना और कभी अपनी मधुर बांसुरी की धुन से सभी को मोहित कर लेना।
1: इसीलिए तो भगवान कृष्ण को कान्हा कहते हैं, कोई नंद गोपाल कहता है, कोई मुरलीधर, कोई लड्डू गोपाल।
0: बिल्कुल, और जानते हो सखियों, और श्री कृष्ण का व्यक्तित्व

0: केवल उनकी बाल लीलाओं तक, जैसे मैंने कहा, वे एक जो है आदर्श मित्र थे। कैसे? सुदामा के मित्र थे, है ना। वे कुशल मार्गदर्शक थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे भाई, उन्होंने अर्जुन का जो सहारा दिया, अर्जुन को सहारा दिया, उनके सारथी बने, और वे नीति और कूटनीति के ज्ञाता हैं, और सबसे बढ़कर वे हमें कर्म का संदेश देते हैं। महाभारत की युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का महान संदेश देते हैं। कहते हैं, कर्म करते रहो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। और जानती हो, यही संदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल। परिवार हो, कार्यक्षेत्र हो या समाज, यदि हम ईमानदारी, प्रेम और मिठास के साथ, निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाएं, तो जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना आसानी से हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। भाई, जन्माष्टमी का उत्सव यही हमें संदेश देता है।

0: है और सभी के लिए उत्साह भी लेकर आता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। भाई पर्व के आगमन के साथ घर की साफ सफाई, पूजा की तैयारी, बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र, मुकुट और झूले की सजावट, तरह तरह के पकवान और साथ में प्रसाद भी बना के आई हो ना घर में। मैं तो बना के आई हूँ भाई, है। और हर काम में एक अलग ही आनंद आता है आजकल।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। कई घरों में नन्हे कृष्ण, बाल कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है, कहीं सुंदर झांकी सजाई जाती है, तो कहीं बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण कर उत्सव में सच में
0: चार चांद लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जानती हो अनीता, जब रात के 12 बजते हैं ना, तो क्या होता है, तो शंख और घनियों जो घंटियों की ध्वनि के बीच होता है लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव। उस समय पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है।
1: दीदी, हर वर्ष मतलब हर वर्ष का जो भी कोई पर्व है केवल पूजा और उत्सव का अवसर नहीं होता, बल्कि वो हमें जीवन का कोई ना कोई संदेश भी देता है।
0: सही कहा।
1: श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में भी आशा बनाए रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: वे हमें बताते हैं कि मित्रता में स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए।
0: सही कहा।
1: वो ये भी संदेश देते हैं कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझना चाहिए।
0: तो सखियों, शायद यही जन्माष्टमी का संदेश, सुंदर संदेश है कि जीवन में मुस्कुराते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, दूसरों की सहायता करिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, सत्य और धर्म का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, हमेशा साथ में रहिए। और भाई, जब ये इतनी अच्छी बातचीत हो रही है, तो क्यों ना इस पावन अवसर पर हम भी अपने मन के आंगन में कान्हा को आमंत्रित करें, है? और कल्पना कीजिए कि यमुना का शांत किनारा है, कदम के पेड़ के नीचे कान्हा खड़े हैं, हाथों में मुरली है, चेहरे पर मनमोहक मुस्कान है, और वातावरण में गूंज रही है मधुर बांसुरी की तान। वाह, क्या कहने, कल्पना मात्र से ही मन भाव विभोर हो जाता है। तो आइए इसी कृष्णमय वातावरण को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।

0: कृष्ण कन्हैया। क्या बात है भाई, मैं तो गुम हो गई उसी में। बहुत प्यारा गीत तुमने सुनवाया। वैसे भी कृष्ण जो भक्ति है, कृष्ण की बांसुरी में जो आनंद है, जो उनकी बांसुरी जब बजती है तो मन एकदम मोह लिया जाता है। वाकई।
1: बिल्कुल सचमुच हेम दीदी,
0: हाँ
1: कृष्ण की भक्ति में ऐसी मिठास है
0: हाँ हाँ
1: कि मन कुछ पलों के लिए
0: हाँ
1: संसार की चिंताओं से
0: बिल्कुल
1: दूर होकर
0: हाँ
1: कान्हा की दुनिया में पहुंच जाता है।
0: सही कह रही हो, और ऐसा
1: कृष्ण,
0: ही हुआ।
1: हाँ बिल्कुल, और कृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, आनंद और अपनापन जाग उठता है।
0: तो सखियों, इसी कृष्णमय वातावरण को बनाए रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। गीत हो गया, अब कहाँ जाना है? पेट
1: अब
0: के
1: भाई,
0: रास्ते
1: हाँ
0: पर। है ना कि भाई अब आगे बढ़े हम अपने कार्यक्रम जायका की ओर। बिना जायका के तो छटकारा आना नहीं है।
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम सब क्या करते हैं कि जब कोई भी पर्व आता है ना, मन में एक उत्साह होता है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, प्रसाद बनाया जाता है। तो
1: तो
0: आज क्या है?
1: हाँ, मैं वही कहने जा रही थी कि आज हमारी दीदी क्या बताने वाली है।
0: भाई देखो, जैसे सबके घर में बनता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सबके घर में बनता है मखाना, पंचामृत प्रसाद तो जरूर बनता है ना। तो बहुत से लोग अलग तरीके तरह तरह से बनाते हैं, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ, मैं बता रही हूँ, ये भी एक बार आजमाएंगी सखियाँ तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। भाई मखाना ले लीजिए आप अपने हिसाब से, जितने घर में मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप ले लीजिए, है ना। चाहे आप 100 ग्राम मखाना, 250 ग्राम मखाना, जैसा आपको
1: आपको
0: उसी के
1: जिस
0: अकॉर्डिंग
1: क्वांटिटी
0: हाँ
1: में बनाना
0: लेना
1: है।
0: है।
1: हाँ
0: और मखाने को हल्का सा भून लेना है ना। भूनने के बाद उसमें बहुत ऐसा ना करें कि खूब देशी घी में भून दें, ऐसा ना करें, खूब ऐसा करें कि वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाए और हेल्दी भी रहे। प्रसाद ऐसा होना चाहिए कि तृप्त हो जाए आत्मा और हेल्दी भी हो स्वास्थ्य के
1: अच्छा
0: हिसाब से, है ना। फिर आप मखाना को जब भून लेते हैं, मखाने को उठा कर रख दें थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाए, है। अब फिर उसके बाद छोटे छोटे उसके टुकड़े काट लें। फिर एक गहरा बर्तन ले लें, उसमें दूध, दही, दूध उबाल कर डालना है, दही और थोड़ी सी मिश्री, है, कटे हुए केले और कुछ मेवे जैसे किशमिश है, नारियल है, बादाम है, जो भी आपको पसंद है, ये सारी चीज़ ले लें और उस गहरे बर्तन में डाल दें और डाल के मिला लें। चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दें अपने स्वाद के अनुसार, और उसको फिर मिला दें, ठीक है। मिलाने के बाद आप उसको 10-15 मिनट रेस्ट पे रख दें। उसके बाद देखिए स्वादिष्ट और पौष्टिक मखाना पंचामृत तैयार हो गया। फटाफट है और कुछ करना नहीं है उसमें, बस खाली मिलाना है।

0: सिर्फ मिलाना है,
1: मिला के और लड्डू गोपाल को भोग लगाइए और सबको प्रसाद बांटिए, उसका आनंद लीजिए। और अनीता
0: मैं तो ये कहना चाह रही कि आप तो भगवान जी को बाद में कह रहे हो, आप आपका जीव तो पहले से राग रहा कि बस एक कटोरी भर के मिल जाए।
1: भाई देखो, जब जायका की बात आती है तो सभी का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है, हैं? तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो ये प्रसाद बता दिया, अब आज अपने घर में क्या बना कर आई हो कि जाओगी बनाओगी वो भी बता दो।
0: नहीं, मैं बना के आई हूँ मखाना साबुदाना की खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: तो बस करना क्या है, साबुदाना लीजिए, उबले हुए आलू, मूंगफली, हरी मिर्च, थोड़ा सा घी या तेल जो आप चाहते हैं, सेंधा नमक और नींबू का रस। सबसे पहले साबुदाने को आप अच्छी तरह से धोकर कुछ समय के लिए भिगा दें, जब तक कि वो नरम ना हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल गर्म करें, इसमें मूंगफली डालकर हल्का भून लें, फिर हरी मिर्च और कटे हुए आलू जो उबले हुए थे उसमें डाल दें, इसके बाद भीगा हुआ साबुदाना उसमें डाल दें, अब सेंधा नमक डालकर हल्के हाथ से मिलाएं।
1: अच्छा।
0: कुछ देर पकने के बाद गैस बंद कर दें, आखिरी में नींबू का रस और हरा धनिया डालें। अब बनकर तैयार है आपका स्वादिष्ट फलाहारी साबुदाने वाली खिचड़ी।
1: तो भाई चलेंगे तुम्हारे साथ ही, तुमने तो कहा ना कि मैं बना के आई हूँ।
0: हाँ, मैं बना के आई हूँ। हाँ,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: और उसके साथ फिर चाहे तुम लस्सी पिला देना, चाहे चाय पिला देना, जो तुम्हारी इच्छा होगी।
0: खिचड़ी तो जो मैं बनाई वो तो खिलाऊंगी। हाँ। और आगे आपकी पसंद, जो आप बोलोगे मैं तुरंत बना दूंगी।
1: ठीक है ठीक है। तो सखियों, आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए, घर के लोगों को भी टेस्ट कराइए और तारीफ लूट लीजिए। तो लीजिए भाई, इतने स्वादिष्ट व्यंजन के साथ फिर चलते हैं किसकी ओर,
0: गीत की तरफ।
1: गीत की तरफ तो चलिए।

0: भाई अनीता, बहुत चुन चुन कर गाने सुनवा रही हो, एकदम मन कर रहा है ना बस सुनते रहे और रुके ना ना।
1: बिल्कुल, और दीदी आज दिन भी तो है खास।
0: हाँ बिल्कुल सही,
1: तो मन को तो अपने तृप्त करना है ना।
0: सही कह रही हो भाई, यही तो होता है रिश्तों में मिठास।
1: तो भाई गीत के बाद अब रुख करते हैं हम पहल की तरफ।
0: अच्छा,
1: तो आज हमारे पहल कार्यक्रम में है आज एक विशेष
0: बातचीत है,
1: रिश्तों में विश्वास कायम रखें।
0: अच्छा,
1: इस विषय पर बात कर रही हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। तो आइए सुनते हैं पहल।

0: वंदना जी,
1: जी नेहा जी,
0: आपको पता है पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसको देख करके, जिनको देख करके मुझे लगता है कि वर्तमान में जो परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर, वो बिल्कुल जुदा थी।
1: अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ और कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो दाम्पत्य जीवन को लेकर आज के समय में गढ़ी गई, वो भी बताइएगा ज़रा, तो बात ज़्यादा क्लियर होगी।
0: जी, अब वंदना जी देखिए, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ये बात कहता है कि भाई आजकल की पीढ़ी में या आजकल के लोगों में जो गहराई है रिश्ते को लेकर, दाम्पत्य रिश्ते को लेकर, वो नहीं रह गई है, वो इतने संजीदा नहीं है साथ निभाने को लेकर के। ये बात सुनी जाती रही है, आपने भी शायद सुनी होगी और जो इस कार्यक्रम को श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने भी सुनी होगी। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो शायद रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये रिश्ता जो साथ फेरे अग्नि को साक्षी मानकर हम बंधते हैं, मतलब ये बंधा बंधाया नहीं आता इस धरती पर ही, लोगों के समक्ष बंधते हैं और उसके लिए कुछ सौगंध, और वो सौगंध वो व्यक्ति ना भी हो तो भी निभाना। तो मैंने देखा कि उनकी पत्नी थोड़ी बीमार थी और हम लोग ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में गए थे, मीटिंग चल रही थी तो कुछ ऐसी बात हुई कि भाई मीटिंग्स होती हैं तो अक्सर लोग चाय पसंद करते हैं पीना, तो चाय आई और सब लोग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी माफ़ कीजिएगा अभी मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो सबको लगा कि हो सकता है मन नहीं होगा या बहुत लोग चाय नहीं भी पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और मैंने वादा किया है कि मैं उन्हीं के साथ पीऊँगा। फिर सब लोग देख रहे थे, चाहते तो वो झूठ भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि उनकी पत्नी घर में उस समय थी लेकिन असल में वो उनके साथ ही थी।
1: नेहा जी, जब आप ये बात कर रही हैं तो पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है
0: जी
1: उसका सही अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम जब अर्थ भूल जाते हैं तब हम बेमानी करते हैं, वहीं से बहुत सारी बातें शुरू होती हैं जो नकारात्मक होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पुरुष और स्त्री होकर मिलते हैं
0: जी।
1: बात ये होती है कि जब पुरुषत्व तो हावी होता है तो बहुत तरह से दमन वाली बातें आती हैं कि पूरी स्वतंत्रता या स्पेस देने की जो बात होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हम पुरुष हैं, है ना, घर चलाना तुम्हारा काम है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी मनमुटाव वाली जो स्थितियाँ पनपती हैं जहाँ पर रिश्तों में थोड़ी सी कमजोरी आने लगती है। पहले क्या होता था कि एक बात ये होती थी कि हमको एक तरह का संस्कार दिया जाता था या घुट्टी में पिलाया जाता था कि जहाँ तुम्हारा ससुराल है, जहाँ इस समय जहाँ तुम्हारी डोली जा रही है वहीं से तुम्हारी अर्थ ही आएगी, एक ये भावना लेकर स्त्रियाँ या लड़कियाँ अपने मायके से ससुराल आती थी, उसी भावना का पालन या उसी बात का मान रखती थी, वो ताउम्र वो रिश्तों को निभा लेती थी। लेकिन उस रिश्ते को निभाने के चक्कर में वो कितना कुछ गंवा बैठती थी, वो सिर्फ अपना नहीं गंवाती थी, व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखिए किसी एकल का नुकसान नहीं होता है नेहा जी, वो नारी जाति का नुकसान होता है, क्योंकि एक आवाज जहां पर आपको इनकार की उठानी थी उस समय आपने तय नहीं किया, आपने सीमा रेखा जो एक पुरुष की होती है या पति की होती वो आपने नहीं रेखांकित की, वो आपने नहीं बताई,

0: वहाँ से क्या होता है कि थोड़ी सी जो टूटन वाली जो बात जो खबरें हमको नज़र आती हैं, और हम बड़े नकारात्मक रूप में इस चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि हर एक रिश्ता सांस की दरकार चाहता है, उसे स्पेस चाहिए होता है। दोनों के साथ ये स्थितियाँ आती हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष भी कहीं ना कहीं, वो भी बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। अब आज का युग थोड़ा सा बदल रहा है, महिलाएं बाहर आ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन वाला एक माहौल है पूरी तरह से, देश दुनिया में क्या हो रहा है सब जागरूक है। तो अब क्या है कि वहाँ पर मेच्योरिटी बड़े ही उन्मुख रूप से या प्रमुख रूप से ऊपर निकल कर आती है। वहाँ पर स्थितियाँ अब समझदारी की होती है, आपसी समझ की होती है, हम साथी को साथी समझते हैं, दोस्त समझते हैं। और जिनकी आपने भी बात कही है, इसका मतलब है कि वो पत्नी और पति का अर्थ समझते हैं, उस रिश्ते का मान क्या होता है वो समझते हैं, उनको पता है कि हमारी पत्नी हमारा इंतज़ार कर रही होगी, वो बीमार है और हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर रहे हैं या कुछ भी दोस्तों के साथ में हैं, और हमने वादा किसी और से किया है कि किसी के साथ बैठकर चाय पियेंगे। तो चाय पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो पी सकते थे, लेकिन एक वादा खिलाफी का भाव,
1: वो लेकर जाना
0: ये
1: नहीं
0: वो जाना नहीं
1: चाहते
0: चाहते। तो ये बहुत बड़ी ईमानदार कोशिश होती है जो हर युग में पहले भी होती आई है,
1: और आज भी है।
0: आज भी होती आई है।
1: पता है दोस्तों, वंदना जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। कुछ बातें मुझे बहुत बहुत सुंदर लगी। मुझे लगता है कि इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने कहा कि हर रिश्ते को सांस लेने के लिए जगह देनी पड़ती है ना? जैसे एक पेड़ है, हम उसको ढंग से रखते हैं, हवा पानी लगे, वैसे रिश्ता है। जैसे हर बार हम शरीर को ज़िंदा रखने के लिए सांस लेते हैं ना, कोई 50 बार, कोई 60 बार, जिसकी जैसी धड़कन होती है, तभी हम स्वस्थ रहते हैं, अच्छे दिखते हैं। वैसे रिश्ता भी होता है, वो शायद करने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं ये किस्मत से मिलता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ये सींचना पड़ता है। जिस दिन शायद ये बात समझ में आ जाए, तो रिश्तों की जो उम्र है वो बहुत लंबी और गहराई लिए हुए होगी। शायद कोई भी आंधी हिला नहीं सकती ना।
0: बिल्कुल सच करिए नेहा जी। और ये जो दाम्पत्य की डोर होती है वो इतनी मजबूत कड़ी होती है जीवन की, कि हम जल्दी उससे डगमगाने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति इस तरह से आती है जो हमें विचलित कर देती है, हमें झकझोर देती है, तभी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर व्यक्ति होता है। अमूमन लोग उसे निभाने की कोशिश ही किया करते हैं जहाँ तक हम देखते हैं, लेकिन हाँ, इस बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण आसपास दिखाई पड़ते हैं जो बड़े ही कभी कुछ हिंसात्मक भी होते हैं और कुछ नागवार भी गुजरते हैं, कि विवाह जैसी संस्था पर हमारा विश्वास था वो कहीं दरक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा बैठिए, समय दीजिए, ठहरिए, एक दूसरे को समझिए पहले, कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति स्नेह रख रहा है, प्यार रख रहा है, समर्पण है, तो क्या हम भी वैसे ही उसी रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं।
1: अच्छे उदाहरण ही देखिए। अगर देखना है आपको, किसी चीज़ को गहराई से समझना है, अच्छे उदाहरण देखिए, ताकि मन मस्तिष्क में अच्छी बातें बैठें। बहुत ज़रूरी है ना?
0: बिल्कुल।
2: तो अभी आप सब सुन रहे थे पहल कार्यक्रम, और विषय था रिश्तों में विश्वास कायम रखें। बातचीत कर रही थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। वाकई बहुत ही सार्थक बातचीत थी। और भाई, जो रिश्ता होता है वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें विश्वास ज़रूरी है। जब तक आपके पास, आपने एक दूसरे के रिश्ते में विश्वास नहीं रखा, तो वो रिश्ता पक्का हो ही नहीं सकता, सच्चा हो ही नहीं सकता। और जब हम सोचते हैं कि रिश्तों में मिठास कैसे बनी रहे, तो वो बनी ही नहीं रह सकती। इसलिए सामने वाला क्या जो प्रतिक्रिया दे रहा है या आप क्या कह रहे हैं, रिश्तों को बनाए रखने के लिए ये समझदारी आपको होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की बात को समझें, है ना, एक दूसरे को इज्जत दें। और हमेशा ये रखें कि जब भी हम किसी से मिले, या सुबह ही उठते ही, जैसे कि अभी आपने जो बातचीत में सुना होगा कि पति का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, घर में सास ससुर का रिश्ता, या अदर कोई भी रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों में ये होता है कि आप उठ के एक सकारात्मक तरीके से, एक चेहरे पर जब मुस्कान लेकर आप आते हैं और मन से जो बात करते हैं, वही विश्वास कायम कर सकता है। तो
1: बिल्कुल
2: भाई, हमेशा अपने रिश्तों में अच्छी चीज़ें बनाए रखिए। रिश्तों को अच्छा आगे बढ़ने के लिए उसमें हमेशा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, तभी आपका रिश्ता मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि
2: और
1: रिश्तों
2: हाँ,

0: तो भाई हमेशा अपने रिश्तों में अच्छी चीज़ें बनाए रखिए, रिश्तों को अच्छा आगे बढ़ने के लिए उसमें हमेशा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, तभी आपका रिश्ता मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: और
1: रिश्तों में
0: हाँ,
1: ना दीदी समर्पण भाव बहुत
0: बहुत
1: जरूरी
0: ज़रूरी
1: है,
0: है, बिल्कुल
1: भरोसा आप तभी कायम कर
0: कर
1: सकते
0: पाएंगे,
1: हैं।
0: बिल्कुल। और भाई देखो, हम सब जब बातचीत, इतनी अच्छी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तो अब अपने कार्यक्रम में और भी तो कुछ है?
1: हाँ दीदी, अब
0: हाँ
1: आगे है ना हमारा निखार,
0: हाँ
1: सुंदर भी तो
0: निखार,
1: बनना है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, सुंदर बनने के लिए है ना क्या करना पड़ेगा अनीता?
1: अरे बहुत आसान है, हमारे
0: हाँ
1: घर में सब कुछ मिल जाता है, हमारे किचन में ही सब कुछ है,
0: अच्छा अच्छा
1: बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: हाँ, तो क्या
1: बस
0: बता रही हो?
1: करना क्या है, अपने जो सौंदर्य है ना इसको
0: हाँ
1: खूब निखारने के लिए जो घर में मौजूद है कुछ सामान्य चीजों से,
0: हाँ
1: बस बनाना क्या है
0: हाँ
1: बताऊं?
0: क्या बताओ?
1: सोचती थोड़ा रुक जाऊं क्या?
0: नहीं नहीं रुको मत, बता दो भाई, बहुत जल्दी जानने की हो रही
1: अच्छा,
0: है।
1: तो बस बनाए आप फेस मिस्ट।
0: फेस मिस्ट? अच्छा, चलो भाई तो बताओ।
1: तो श्रोताओं,
0: हाँ
1: गर्मी और उमस के मौसम में चेहरे
0: हाँ
1: पर
0: जैसा कि अब
1: ताजी
0: मौसम चल रहा है ना, कभी बारिश है तो कभी उमस हो जा रही है, गर्मी भी हो रही है, लग ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है, इतनी जबकि बारिश हो रही है। तो इसमें अनीता बता रही है कि फेस मिस्ट बनाने के लिए, तो शुरू हो जाओ।
1: अच्छा शुरू हो
0: हाँ
1: जाओ,
0: शुरू हो
1: मैं
0: जाओ।
1: रुकती हूँ तो फिर आप बोलते हो शुरू हो जाओ, जब मैं शुरू होती हूँ तो आप मुझे रोक देते हो,
0: देखो
1: मैं
0: मन में जो,
1: करूँ क्या,
0: नहीं नहीं कुछ
1: मैं
0: मत करो,
1: करूँ
0: बस रुक
1: क्या?
0: के मेरी बात सुनो, उसके बाद जब मैं कहूँ शुरू हो जाओ तो शुरू हो जाया करो।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो फिर
0: चलो।
1: ठीक है, जैसे मैं फिर से शुरू हो जाती
0: हाँ
1: हूँ
0: बिल्कुल।
1: कि भाई गर्मी और उमस के जो मौसम है, जो जैसे
0: हाँ
1: आपने बताया कि कभी बारिश होती है तो कभी नहीं होती है, तो भाई हमारे चेहरे भी थोड़े उदास हो जाते हैं, चेहरे
0: हाँ
1: थोड़ा सा
0: डल टाइप का
1: मुरझुरा आ
0: रहता
1: जाता
0: है।
1: है।
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो उस चेहरे पर ताजगी लाने के लिए,
0: हाँ
1: बनाए रखने की उसको चेहरे की ताजगी को, तो भाई करना क्या है, बस बाहर करना क्या है।
0: हाँ।
1: अरे मुझे आप भगा देते तो मैं भागने लगती हूँ,
0: भूल
1: लेकिन
0: जाती
1: हाँ भूल जाती हूँ, तो सुनिए मैं सीधा बताती हूँ
0: हाँ
1: आपको कि
0: हाँ
1: कुछ नहीं करना, आप भागिए दौड़िए
0: हाँ
1: जो भी
0: जो
1: कुछ
0: भी कुछ
1: करिए,
0: करिए। हाँ
1: हाँ बस आप, मैं फेस मिस्ट बता रही हूँ, अब
0: हाँ
1: बस आप उसका उपयोग करिए, यूज
0: ठीक है
1: करिए आप
0: ठीक
1: सुंदर
0: है, मैं
1: के लिए।
0: शांति से सुनती हूँ, बताओ।
1: हाँ अब
0: हाँ
1: मुझे भगाइएगा नहीं और
0: हाँ बिल्कुल नहीं,
1: रुकाइएगा
0: बिल्कुल
1: भी नहीं।
0: नहीं।
1: तो बनाना क्या है, खीरा और गुलाब जल से
0: अच्छा
1: ठंडा पानी फेस मिस्ट
0: अच्छा
1: सब,
0: खीरा, गुलाब जल, ठंडा पानी, फेस मिस्ट,
1: हाँ बस
0: ठीक।
1: ये तीनों चीज़ मिलाइए और आपका फेस मिस्ट तैयार हो जाएगा।
0: हाँ
1: पहले बनाने तो दीजिए हैं
0: हाँ
1: दीदी,
0: बनाओ ना, मैंने
1: बनाऊं?
0: कहाँ पकड़ा है तुम्हें, बनाओ।
1: अच्छा अब बनाती हूँ।
0: हाँ
1: तो जैसे मैंने कहा कि खीरा खीरा लेना है, गुलाब
0: हाँ
1: जल लेना है और ठंडा पानी,
0: ठीक।
1: इन तीनों से बनाना है। तो सबसे पहले खीरे को अच्छी तरह से धोकर उसका रस निकाल लें।
0: अच्छा
1: अब एक साफ स्प्रे बोतल में खीरे का थोड़ा सा
0: हाँ
1: रस डालें, गुलाब जल और साफ पानी मिलाएं,
0: ठीक है।
1: बोतल को बंद करके हल्का सा हिला लें।
0: हाँ
1: बस तैयार है आपका आसान कूलिंग फेस मिस्ट,
0: अरे
1: इसे
0: वाह।
1: चेहरे पर हल्के स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करिए और ये त्वचा को ठंडक और ताजगी का एहसास देने में बहुत ही मदद करेगा।
0: भाई अनीता इतने प्यार से बता रही हो, जो मुस्कुरा मुस्कुरा बता रही हो, वो बहुत क्यूटनेस है, बहुत क्यूट लग रहा है। तो भाई मैं क्यों रुकूं, मैं भी
1: नहीं
0: बता दूं
1: नहीं बिल्कुल नहीं, आप भी,
0: है?
1: मैंने आपको रोका था, आप भी बस दौड़ जाइए।
0: तो भाई देखिए, दूसरी जो चीज़ है वो मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं, घर, सबके घर में एलोवेरा लगा होता है ना,
1: गमले में तो है
0: गमले
1: ही।
0: में लगा होता है, या जिसके पास थोड़ी ज़मीन होती वो भी अपना लगा रखते हैं। और गुलाब जल घर में होता है, अगर गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब के फूल तो होंगे घर में ना, तो गुलाब की पत्तियों को आप पीस लीजिए और पीस के उसका रस निकाल लीजिए, है ना, वो भी क्वांटिटी में 1 से 1.5 चम्मच होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। गुलाब जल भी 1 चम्मच होना चाहिए, और उसके गुलाब जल का 4-5 बूंद उसमें डालिए, और उसके बाद आप गुलाब की पत्तियों का 1.5 चम्मच रस ले लीजिए, और
1: अच्छा
0: एलोवेरा जेल भी 1 चम्मच ले लीजिए, ठीक है। आप इस और इसमें ठंडा पानी जैसा कि अनीता ने बताया वैसा ही करना है ना, उबाल कर, हमेशा ये ध्यान रखें कि पानी को उबाल कर छान कर मिलाइए ये फेस मिस्ट में, और ये तीनों को मिलाकर एक बॉटल में डालकर उसको झल लीजिए, यानी मिला लीजिए, और मिलाने के बाद आंख बंद करके स्प्रे कीजिए फेस पर, क्योंकि आंखों में नहीं जाना चाहिए, है ना। एलोवेरा जेल मिला होता है, बहुत से लोगों को
1: हाँ
0: रिएक्शन कर जाता है, और जैसी स्किन है
1: आप ये
0: उसके
1: भी कर
0: अकॉर्डिंग
1: सकते
0: कर
1: हैं कि
0: सकते हो।
1: आंखों को बचा के करिए,
0: हाँ
1: हाँ आंख तो बंद रखिए, आंखों
0: हाँ
1: के नीचे मतलब
0: हाँ
1: आसपास मत करिए।
0: हाँ ना करिए। और जिसकी ऑयली स्किन होती है या रूखी स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है ना, तो ड्राई स्किन वाला भी इसको यूज़ कर सकता है, ऑयली स्किन वाला भी यूज़ कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। और 5-10 मिनट फेस पर रहने दीजिए, उसके बाद से पोंछ लीजिए, वाइप कर
1: हाँ
0: लीजिए, बस इतना ही करना है। और आप इसको डेली भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कभी आप रात में भी कर सकते हैं इसको, सुबह भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे कि हाँ
1: जैसे
0: हमको, हाँ
1: आपको टाइम
0: मिले
1: मिले,
0: उसी
1: जब
0: के,
1: आप फ्री
0: हाँ
1: महसूस करें कि आप
0: उसके
1: कर
0: अनुसार
1: सकें।
0: आप कर ले, ठीक है ना। तो भाई हम लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं तो साथ साथ में कुछ

0: मुंह के धागे भाई, रिश्तों को एकदम पुख्ता कर दिया है ना भाई। बहुत अच्छी, ये जो भी गाना तुम सुनवा रही हो ना, एकदम चुन चुन के सुनवा रही हो, एकदम लग रहा है यहाँ पर एकदम है?
1: अच्छा हाँ, अब मुझे मिले भी तो बहुत दिनों के बाद है।
0: हाँ लेकिन मिले तो बहुत दिनों के बाद है, और लेकिन फोन पे तो बात होती ही रहती है हम लोगों की।
1: नहीं
0: है?
1: मुझे लगा कि फोन पे तो बात होती है, मिले तो आप बहुत दिनों के बाद है, तो
0: बिल्कुल।
1: आज जब जाइए घर तो आप मुझे बहुत दिन तक याद रखिए, फिर मुझे
0: याद रखने वाली चीज थोड़ी ना हो, तुम तो हमेशा मन में रहती हो, याद उसे किया जाता है
1: जो नहीं।
0: हाँ
1: अच्छा मैं भी हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, और क्या। और भाई देखो, अब बात है, हमने जो जायका की बात कर ली, निखार की बात कर ली, अब ये दोनों चीज कब कैसे आएगी, जब आप
1: बोलिए बोलिए,
0: जब आप स्वस्थ रहेंगे है ना, और स्वस्थ कैसे रहेंगे, जब आप वर्कआउट करेंगे है ना, वर्कआउट के साथ साथ एक अच्छी सोच आप रखेंगे। आप समझ लो मैं क्या कहने जा रही हूँ। सभी गृहिणियाँ हैं, गृह लक्ष्मियाँ हैं, और सभी को शौक होता है जो है प्राकृतिक चीज देखने का, समझने का, हरियाली तो सबको पसंद आती है ना।
1: एक तो घुमाते हो सीधा, हाँ। बता दो, श्रोताएं भी हमारी कह रही होंगी कि ये हेम दीदी क्या बता
0: रही। अरे तो वो देखो, हाँ। जो इसमें हाँ। एक ट्विस्ट है ना,
1: अच्छा।
0: और इसमें एक जो क्रेज होता है जानने का,
1: मैं भी सोचती हूँ कि हाँ। क्या बताने वाली है। सच में मेरे अंदर हलचल मची है, जल्दी से बता।
0: अरे दिमाग पे जोर डालो कि क्या बताने जा रही हूँ। मैंने कह दिया ना कि हम सब गृह लक्ष्मियां हैं, है ना, गृहिणियां हैं अच्छी एकदम और निपुण वाली, तो छोटी छोटी चीज़ों को हम संजोकर हर काम करते हैं। और ऐसे ही अगर आप बहुत सी घर में, जैसे मैं हूँ, मैंने ये मेरा शौक है कि अपने किचन के पास मैंने बहुत सारे गमले लगा रखे हैं।
1: ओहो, समझ मैं
0: गई?
1: समझ
0: हरियाली भी समझ गई
1: मैं, समझ
0: है ना।
1: हाँ,
0: तो मैंने वहाँ पॉट उसमें है, और उसमें मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, जिसमें मैं फूल पत्तियाँ और कुछ सब्जियाँ बो रखी है ना। और जो किचन का जो बेसिन है ना, उसका पाइप कहाँ रखा है मैंने,
1: जाहिर सी बात है वो गमलों के पास
0: उधर
1: जहाँ पे पेड़ पौधे हैं,
0: हाँ, तो वहाँ लगा रखा है। और जानते हो जब सुबह एक सुंदर सा फूल दिखता है ना, मन इतना अच्छा हो जाता है देखकर कि वाह क्या मेरी मेहनत रंग लाई है ना। तो ऐसे सभी को सोचना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए हर जगह, चाहे आप, आपके पास बड़ी जमीन है तो आप वहाँ करिए। इससे क्या होगा, इससे आप नेचर से भी संबंधित रिलेट कर पाएंगे और नेचर से जुड़े रहेंगे, और सब जगह आप सब हरी सब्जियां आपको भी मिल जाएंगी, फूल पत्तियां भी फूल पत्ते भी आपको मिल जाएंगे। रोज आप पूजा करने जाते हो ना, तो जो आप जाते हो पूजा के लिए माला फूल खरीदने, वो आपके घर में ही मिल जाएगा, है ना।
1: बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि भाई सबसे जरूरी बात किचन गार्डन केवल सब्जियां फूलों को उगाने का भी माध्यम नहीं है हेम दीदी, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और बच्चों को पौधों की देखभाल सीखने का सुंदर तरीका भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई इतनी बात हम लोगों की हो गई, और हमारी घड़ी भी अब कह रही है घर चलने के लिए, लेकिन इस गीत के साथ चल चलते हम आपको जो छोड़ेंगे, नहीं
1: नहीं
0: घड़ी कह रही है,
1: घड़ी कह रही है कि बस अब नमस्ते ही कहना है।
0: अच्छा तो भाई ठीक है,
1: आप अब हम बहनों को अगले कार्यक्रम में सुनवाएंगे,
0: फिर जानकारी के साथ साथ गीत भी सुनवाएंगे, है ना, ये हमारा वादा रहा बहनों। और अब घड़ी हमारी कह रही है कि सब लोग घर चले और लड्डू गोपाल की पूजा करें, उनकी सेवा में लग जाए। तो अगले कार्यक्रम के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

अभी बहनें अपना कार्यक्रम सुन रही थी गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 MHz पर।

0: South Africa, Iran, and Uzbekistan. The meetings will act as a direct interaction and discussions on matters of mutual judicial interest, while further strengthening engagement and cooperation among the participating judiciaries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, is being observed across the country with religious fervor today. On the occasion, devotees observe fast, perform ceremonies and visit temples. Sweets and other food associated with Krishna are prepared and offered to Lord Krishna. Devotional songs and chanting is performed through the day and often late into the night. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. Our correspondent reports that Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh are fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna.
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की द स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन स्टीप्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा आर रिवर्बरेटिंग विद द चैंटिंग्स ऑफ जय श्री कृष्णा टुडे इज लॉर्ड कृष्णास बर्थडे एंड प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन आर अंडरवे थ्रू आउट द सिटी लॉर्ड कृष्णास बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन एंड एंथुजियाज्म थ्रू आउट ब्रिज मंडल एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑल्सो बट द ग्रैंड सेलिब्रेशन इज इन मथुरा वृंदावन वेयर ऑल टेम्पल्स आर डेक्ड अप फॉर मिडनाइट सेलिब्रेशन Flower petals and colorful lights are decorated everywhere. On this occasion, millions of devotees are already doing darshans of Lord Krishna. In view of the huge crowd of devotees coming from India and abroad, extensive security arrangements have been made in the entire Mathura city and police are also gearing themselves for traffic management. For the first time in Mathura, on Janmashtami today, 500 drones will bring Lord Krishna's birth and his various pastimes to life in the sky. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, लखनऊ
0: The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange warning for heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and the northeastern part of the country for the day. Heavy rain has once again created flood-like conditions in several parts of Madhya Pradesh. The Met Department has issued a warning for heavy to very heavy rainfall in many districts over the next 48 hours.
2: In Chhatarpur, the Mandakini River has reached close to the danger mark and around 100 people have been moved to safer places. In Mandla, the water level of the Narmada River has risen and the river is in spate. Continuous rain has affected normal life in several districts including Chhatarpur, Satna, Mandla and Mehar. Five gates of the Bargi Dam in Jabalpur have been opened to release water, while water is also being released from the Kutni Dam in Chhatarpur. The Weather Department has issued an orange alert for very heavy rainfall in several districts including Shivpuri, Guna, Chhatarpur, Sagar, Damoh and Narmadapuram. Heavy rain is likely to continue in many parts of the state over the next 2 days. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
0: 10 major rivers including the Ganga, Punpun, Gandak and Kosi are in spate in Bihar. Flood conditions prevail in 16 districts of the state.
3: In Bihar, 8 rivers including the Ganga are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood-affected areas today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Center to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
5: I am very happy to announce that GSLV.
6: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
4: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
9: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
4: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्र

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
2: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जाँच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: फिर देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं, प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
3: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
3: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
3: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
3: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
3: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
3: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया
3: जी। बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फा

0: मानसा की याद आ रही
1: जी,
0: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
1: जी,
0: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
1: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
0: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
1: जी,
0: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
1: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
0: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
1: जी।
0: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
1: तो वे भारत क्यों आए?
0: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
1: जी,
0: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
1: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
0: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
1: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
0: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
1: जी।
0: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
1: जी।
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
1: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली। हाँ, बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक

0: नहीं हुई?
1: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहां तो गाना बजाना चल रहा है।
2: नैनन में नंदलाल।
3: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
4: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
3: विधवा मीरा का यूं गिरधर

0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता, धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
2: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
3: दासी
4: जी राणा जी महाराज।
2: जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
4: जी महाराज।
2: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
4: जो आज्ञा महाराज।
2: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
4: राणी सा की जय हो।
1: आओ सखी, भीतर आओ।
4: जी वो
1: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
4: वो कुछ नहीं।
1: कहो ना सखी, क्या बात है?
4: वो राणी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
1: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
4: पर हमें तनिक शंका होती है।
1: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
4: रुकिए राणी सा जरा ठहरिए। राणी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
5: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त

0: वो भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
2: आह
3: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
4: गाती भी बहुत अच्छा है।
0: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
5: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
6: प्रणाम रानी सा।
7: प्रणाम रानी सा।
0: प्रणाम।
8: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
9: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
8: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
6: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
8: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
0: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
5: राजकुमार भोजराज की विधवा और
8: जाके सर मोर मुकुट मेरु पति सोई। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: कितनी मधुर आवाज़।
2: हाँ।
3: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
3: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
0: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
2: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गई और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गई।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
8: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
9: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी।
5: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
7: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
9: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
2: पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
10: 300 किलोग्राम?
7: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
9: और चींटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
3: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम सोचो डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय हिंद।
0: दीदी,
1: हाँ
0: आज तो कुछ खास है तो बच्चों को उसकी भी बधाई दे देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो नन्हे मुन्नों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी
0: जन्माष्टमी
1: की
0: की
1: हार्दिक बधाई
0: बधाई।
1: और शुभकामनाएं। और अनीता दीदी, भाई हमारे नन्हे मुन्ने जो श्रोता हैं इंतजार कर रहे हैं अपने कार्यक्रम का, है ना, वो क्या सोच रहे हैं आप बताएंगी कुछ कि भाई हमारी दीदियां हमारे प्रोग्राम में तो आ गई है ना, और जो हमारी दीदियां हैं हमारे लिए क्या क्या लेकर आई हैं इसके बारे में भी वो जानना चाहेंगे। तो
0: तो
1: हम देर ना करते हुए फटाफट बता देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम हमेशा से आप सबके लिए कुछ न कुछ ऐसी ज्ञान की बातें लेकर आते हैं जिससे आप सब अपने जीवन में उसे अमल करके आगे बढ़ सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और एक अच्छा और सच्चा बच्चा बन जाएंगे।
1: बिल्कुल दीदी, अगर हम बात करें बच्चों के स्कूल की, है ना, क्योंकि भाई सुबह जब होती तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है
0: स्कूल जाना,
1: फ्रेश होके उसके बाद
0: स्कूल
1: अपना टिफिन
0: जाना।
1: बैग लेके स्कूल जाना।
0: हाँ
1: ठीक, स्कूल जब वो पहुंचते हैं तो वहां वो पढ़ाई करते हैं, उनके अच्छे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त भी हैं, है ना, और उनके साथ वो शेयरिंग भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, उनके साथ मजाक मस्ती भी चलती रहती है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इंजॉय भी करते हैं अपने स्कूल में, अगर ऐसा एटमॉस्फेयर रहे तो बच्चे खूब अच्छी तरीके से अपनी स्टडी करते हैं और इंजॉय करते हैं। तो भाई देखिए, अगर मजाक खुशी वाला हो तब तो वो मजाक है ना, लेकिन अगर किसी को हर्ट करने वाला है तो वो मजाक नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, और डर से वो कोई बात किसी से नहीं करते हैं, सहमे सहमे से डरे डरे से बैठे रहते हैं। तो भाई हम सब बच्चों क्या करना चाहिए, बच्चों हम सबको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें समझना
0: हाँ,
1: चाहिए कि वो
0: क्योंकि
1: अकेले
0: वो
1: ना
0: क्यों
1: रहें।
0: डरे हुए
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो दीदी, मैं तो एक बात कहूँगी बच्चों से कि आप सभी ने बच्चों एक शब्द सुना होगा, बुलिंग।
1: हाँ,
0: आखिर बुलिंग है क्या?
1: बिल्कुल
0: तो बुलिंग ये है कि किसी को चोट पहुंचाना,
1: हाँ, या किसी से
0: ये
1: अलग कर
0: अलग कर
1: देना।
0: देना। हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो बच्चों बुलिंग का मतलब है किसी बच्चे को बार बार जानबूझकर परेशान करना, चिढ़ाना, डराना या उसका मजाक उड़ाना। जैसे किसी बच्चे के रंग, कपड़े, बोलने के तरीके, पढ़ाई या शरीर को लेकर उसे बार बार चिढ़ाना, किसी को खेल में जानबूझकर शामिल ना करना, उसके बारे में गलत बातें फैलाना या मोबाइल और इंटरनेट पर उसे परेशान करना भी बुलिंग का हिस्सा हो सकता है।
1: बिल्कुल अनीता दीदी, जो है देखिए, मैं तो टीचर हूँ और बच्चों से हमेशा रोज मेरी मुलाकात होती है और हर तरीके की बच्चों से होती है। उसमें कुछ बच्चे बहुत ही जो है इस टाइप के होते हैं कि उनको बात करना बहुत अच्छा आता है ना, वो बातों को ऐसा मोल कर देंगे ना कि उनकी बात गोल मोल जो बातें हैं वो आपको बहुत ही मतलब कि इम्प्रेसिव भी लगेगी और आप उनसे खुश भी हो जाएंगे। दूसरे बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, है ना, कि जरा जरा बात में वो क्रोध करने लगते हैं, मेरा क्यों पेंसिल लिया, मेरा क्यों पेन लिया आपने, मेरा
0: गुस्सा जल्दी हो
1: इरेजर
0: जाते
1: क्यों
0: हैं।
1: लिया, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं एक साइड में वो बैक बेंचर पीछे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, उन वो इसलिए सबसे अलग होते हैं क्योंकि वो जो उस एटमॉस्फेयर को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें घुल मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब बच्चे ही हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, ये सब बच्चे जो है छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखें, और जो पीछे बैठा वाला बच्चा है जो सहमा है जो डरा है और जो अग्रेसिव हो रहा है, वो सबको अच्छा वाला बच्चा जो हम कहते हैं ना कि बात करने का उसके अंदर बड़ा अच्छा तरीका होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो बातचीत कर पाता है और बहुत जल्दी फ्रेंडशिप भी कर लेता है ऐसा बच्चा, तो उन सब बच्चों को ऐसा समझना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि मजाक अपनी जगह है लेकिन बुलिंग करना गलत बात है। और
0: बिल्कुल
1: सबको मिला के, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब एक दूसरे को अगर चोट पहुंचाएंगे, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको नहीं पता होता है कि हम जो है ऐसे जानवर भी जाते रहते हैं उनको हर्ट कर देते हैं, मार
0: हाँ,
1: देते हैं,
0: मार
1: पीट देते
0: देते हैं
1: हैं,
0: या
1: है ना।
0: फिर
1: हाँ,
0: ईंट मार
1: तो
0: दिए।
1: वो जो है अंदर उनके कुछ ना

0: कुछ छुपा होता है,
1: हाँ
0: वही चीज वो दूसरे के ऊपर फॉलो करते हैं। तो ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है कि किसी को अपने से नीचा मत दिखाना। और रंग रूप तो ईश्वर का दिया हुआ होता है ना, कपड़े लते पहनाओ ओढ़ाओ सब अपने अपने घर के हिसाब से होते, तो हम बुलिंग क्यों करें, किसी को क्यों परेशान
1: तो
0: करें।
1: दीदी हम तो बच्चों से यही कहेंगे कि दीदियां आपको यही सिखा रही हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं,
0: हाँ
1: किसी बच्चे को परेशान करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आप थोड़ा रुकिए
0: रुक
1: और सोचिए,
0: जाइए।
1: और सोचिए कि
0: हाँ
1: बिल्कुल हमको परेशान नहीं करना, वो भी आपके क्लासमेट है, वो भी आपका दोस्त है,
0: बिल्कुल
1: उसको भी
0: बिल्कुल।
1: आगे बढ़ाना है, ना कि
0: हाँ
1: उसको परेशान करना है।
0: और अभी से ही अगर ये बात को समझ जाएंगे तो एक अच्छे प्यारे बच्चे बनेंगे और सबकी तारीफ आपको भर भर के मिलेगी, सब आपको बहुत प्यार करेंगे। और स्कूल में खासकर जो टीचर होती है ना, वो वॉच करती रहती कि कौन सा बच्चा ऐसा है ना, तो उस बच्चे से उनको अधिक लगाव हो जाता है। वो बच्चों को
1: हाँ
0: बुलाते हैं, वो लगता है कि हमेशा उसका एग्जाम्पल ही देते हैं कि
1: हाँ
0: देखिए ये है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। मेरे तो क्लास में जैसे ही मैं पहुंचती हूँ तो वो लोग कहते हैं ना कि वैरायटी होती जिस तरीके की, वैसे ही बच्चे भी हैं, है ना। कुछ तो आपको बहुत पसंद करेंगे लेकिन आप कुछ डांट से इतने घबरा जाएंगे कि आपसे
1: हाँ
0: बात ही नहीं करेंगे।
1: अच्छा
0: तो आप ऐसा माहौल जो है पैदा कीजिए कि आपको डांट ना पड़े, आपको किसी की जो कोई आपके लिए कंप्लेन ना करे और आपको उसकी वजह से पनिशमेंट ना झेलनी पड़े। तो मजाक अपनी जगह, और जो अंतर हम लोग बता रहे हैं ना
1: हाँ
0: इसको ध्यान में रखिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है।
1: बिल्कुल, और
0: हाँ
1: एंजॉय करिए इस गीत को भी।
0: गीत को भी।

0: तो बच्चों ने अपना मनपसंद गीत सुना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गोल, थिरक भी रहे होंगे घर में, नहीं?
1: बिल्कुल। और दीदी क्यों ना हम लोग आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण भगवान जी के बारे में थोड़ा सा बात बता दें बच्चों को। तो बच्चों श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं। वे बहुत ही प्यारे, बुद्धिमान, साहसी और दयालु थे। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वहाँ वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और गायों को चराने के लिए जंगल में जाते थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था तो इसलिए उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है।
0: भाई श्री कृष्ण के तो नाम बहुत सारे हैं ना, मुरलीधर है ना, गोपाला,
1: लड्डू गोपाल
0: बहुत सारे ऐसे ना, गोवर्धन पर्वत जब उन्होंने उठाया ना, गोवर्धन दारी, तो बहुत सारे ऐसे नाम है बच्चों। और इनकी लीलाएं तो क्या कहने, जब छोटे थे तो जब ऐसे रेंग रेंग कर कहने, यानी जो कहा जाता है ना कि लोग घुटनों के बल जब चलते थे तो हमेशा वो माखन मटकी के पास पहुंच जाते थे, है ना,
1: और लगा के खा लेते थे
0: और ले लेते थे। और मैया हमेशा देखकर ये बहुत खुश होती थी कि मेरा कान्हा इतना छोटा सा, इसको माखन इतना पसंद है, तो आप भी तो नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल की तरह हैं, आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें ऐसी पसंद होंगी।
1: कहना चाहती कि बच्चे भी माखन
0: बिल्कुल
1: खाते हैं चुरा के,
0: नहीं चुरा के, वो तो एक बचपना था उनका, और बचपन में तो अभी सारे बच्चे जो पसंद आता है वो चोरी करके खा लेते हैं।
1: इस समय ये बच्चे आइसक्रीम खाने वाले।
0: सही कह रही हो।
1: और दीदी जैसे आपने बताया कि वो बहुत मतलब एक छोटी सी उंगली पे
0: गोवर्धन पर्वत
1: उठा लिए थे। और दीदी पता है बड़े जब हो गए वो श्री कृष्ण तो महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के सारथी बने और उन्हें जीवन का बहुत बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल,
1: वे हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए और कठिन समय में घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
0: तो भाई श्री कृष्ण भगवान ने जीवन से जो हमें, उनके जीवन से जो सीख मिलती है हमें कि अच्छे काम करते रहो, सच्चाई का साथ दो, अपने कर्तव्य पर जुड़े रहो निष्ठा के साथ, है ना, और मुस्कुराते रहो और हमेशा क्या करो, अच्छे बच्चे बनने के साथ साथ धैर्य रखो, कठिन परिस्थिति में कभी भी घबराओ नहीं, हमेशा काम अपना करते रहो तो फल आपको हमेशा मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि जो कार्य करो और फल की चिंता ना करो। तो भाई ये सारी जानकारी भी हो गई, अब हम सबको भी घड़ी कह रही है ना कि अपना कर्तव्य घर चलने का। तो बच्चों को अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों
1: जय हिंद।

अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: अब योजन सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या द्विवेदी, और स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में. आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ शो. दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोग हमें जाने, हमारा नाम पहचाने, हमारी बात सुने, जैसे कि आप हमारी सुनते हैं. लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या सच में प्रसिद्ध होना ही प्रभावशाली होना है? क्या बहुत सारे फॉलोवर्स होना ही इन्फ्लुएंस है? या इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपकी बात किसी की ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव ला सके? सोचने वाली बात है ना. आज की दुनिया में इन्फ्लुएंस सिर्फ एक शब्द नहीं बन गया है, ये एक पूरी ज़िंदगी बन गया, एक पूरी दुनिया बन गया है. सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है. रील्स हो गई, वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ब्लॉग्स हो गए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया, और एक ऐसी दुनिया इन सब चीज़ों को मिला के बन चुकी है जहां कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट, नॉलेज या पर्सनालिटी के दम पर लोगों तक पहुँच सकता है. लेकिन इसी के साथ एक सवाल और खड़ा होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंसर बनना क्या आज के युवाओं के लिए एक जेन्युइन करियर अपॉर्चुनिटी है, या ये सोशल मीडिया का आकर्षण का हिस्सा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना. आज इन्फ्लुएंसर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक ऐसा व्यक्तित्व आ जाता है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, और जिसके पास एक पोस्ट या एक रील से हजारों लोग प्रभावित होने वाला एक बहुत अच्छा कलेक्शन है फॉलोअर्स का. लेकिन इन्फ्लुएंस की असली परिभाषा फॉलोअर्स की संख्या से कई बड़ी है. इन्फ्लुएंस शब्द जो है वो केवल सोशल मीडिया का एक स्लैंग नहीं है, ये एक अलग ही शब्द है. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपकी बात का असर, और असर तभी मीनिंगफुल होता है जब उसमें ऑथेंटिसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यू हो. आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं चाहता, वो अपने लिए एक आइडेंटिटी भी बनाना चाहता है. कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई ट्रेवल क्रिएटर बनना चाहता है, कोई एजुकेटर बनना चाहता है, कोई गेमिंग क्रिएटर बनना चाहता है, और सबको अपनी अपनी कला और क्रिएटिविटी के ज़रिए पहचान बनाना है. और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरीके से सही बात है. दुनिया बदल रही है, करियर के रास्ते भी बदल रहे हैं, तो क्यों ना ये डिजिटल दुनिया में भी हम एक अपना करियर तलाशें, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन सवाल ये है कि हम इस रास्ते में अपना जो पैशन के कारण चल रहे हैं, ये सिर्फ एक चमक के कारण है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, या उससे कई अलग चीज़ है? क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें सक्सेस का फाइनल

रिजल्ट दिखाई देता है, महंगी गाड़ी दिखाई देती है, शानदार ट्रेवल दिखाई देता है, बड़े बड़े कोलैबोरेशंस दिखाई देते हैं, लाखों व्यूज दिखाई देते हैं और हजारों कमेंट्स। लेकिन कैमरा के पीछे की मेहनत, कंसिस्टेंसी, रिजेक्शन, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और लगातार कंटेंट बनाने का प्रेशर अक्सर दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी क्रिएटर की जिंदगी देखकर ये मान लेना कि इन्फ्लुएंसर बनना बहुत आसान है, ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल वैसा ही है ये जैसे किसी फिल्म को देखकर ये मान लेना कि पूरी फिल्म सिर्फ 2 घंटे में ही बन गई होगी, क्योंकि इसका कंटेंट तो स्ट्रांग लगता ही नहीं है। लेकिन वो जिस फिल्म को हम ऐसे ही बिलो एवरेज कह रहे हैं, उसके पीछे भी लोगों को सोचने का, समझने का, उसको तैयार करने के पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी हुई है। अगर हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसकी बेकदरी तो ना करें। एक बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों, चमक देखकर रास्ता मत चुनिए, रास्ते को समझकर मंजिल चुनिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, मेरे पास लोगों को देने के लिए क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरी क्रिएटिविटी क्या है, मेरी आवाज़ में ऐसी कौन सी बात है जो दूसरों के काम आ सकती है। क्योंकि सिर्फ कैमरा आपके सामने आ जाना इन्फ्लुएंस नहीं होता, कुछ मीनिंगफुल कहना और लगातार वैल्यू क्रिएट करना इन्फ्लुएंस होता है। और यहाँ से एक और फर्क समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पॉपुलर होना और इन्फ्लुएंशियल होना एक चीज़ नहीं है। पॉपुलैरिटी आपको थोड़े समय के लिए अटेंशन दे सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस ट्रस्ट बनाता है। कोई व्यक्ति वायरल होकर रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन लोगों का विश्वास हासिल करने में समय लगता है। आज सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी हमारे अटेंशन को प्रभावित करता है, हमारा दिमाग नेचुरली ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है जो नई, सरप्राइजिंग या इमोशनली इंगेजिंग हो। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ और नोटिफिकेशन हमें छोटे छोटे फीडबैक सिग्नल्स देते रहते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर बार बार चेक करने की आदत बन जाती है। और जो ये एल्गोरिदम जैसी चीज़ होती है ना दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया पर हमें अपने पसंद के कंटेंट दिखाई देते हैं, ये भी एक तरीके से ट्रैक्ड ही होते हैं। क्योंकि हम जिस कंटेंट को बार बार लाइक करना शुरू करते हैं, जिस कंटेंट को ज़्यादा हम वॉच करना शुरू करते हैं, हमारा एल्गोरिदम भी हमें वही तरीके के कंटेंट दिखाने लगता है। तो ये भी एक तरीके की बहुत बड़ी कह लेंगे कि हमारे समझ को दर्शाने वाली चीज़ है कि हम जो पसंद करते हैं, हम जो देखना पसंद करते हैं, वही हमारा सोशल मीडिया कंटेंट हमें दिखा रहा है। तो रिसर्च में भी सोशल मीडिया यूज़ और रिवॉर्ड रिलेटेड ब्रेन प्रोसेस के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है। यानी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन नहीं कि नोटिफिकेशन और लाइक्स हमारा ध्यान खींचते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का डिज़ाइन ही इंगेजमेंट बनाया जाता है और यहाँ पे लोगों को इंगेज रखने के लिए ही ये डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल क्या है, क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है? कहीं मत जाइएगा, इस सॉन्ग ब्रेक के बाद अभी हमारी बातचीत जारी रहेगी।

तो दोस्तों, उस ब्यूटीफुल से सॉन्ग ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपने प्रोग्राम में। और जाते जाते मैंने एक सवाल दिया था आपको कि क्या सोशल मीडिया को इस्तेमाल हम कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा यूज़ कर रहा है। तो इस सवाल का, चलिए आइए आगे की बातचीत में इसका जवाब जानते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं, अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं आप और अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सोशल मीडिया आपके लिए एक पावरफुल टूल है। लेकिन अगर हर सुबह उठते ही आपका पहला सवाल ये होता है कि मेरी फ़ोटो पे कितने लाइक्स आए हैं, मेरी रील्स पे कितने लाइक्स आए हैं, मेरे फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, उसके इतने व्यूज़ कैसे आ गए, तो शायद प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ तय करने लगेगा। और दोस्तों, आपकी कीमत किसी नंबर से तय तो नहीं होती। फॉलोअर्स आपकी ऑडियंस हो सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं। युवाओं के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटर इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी भी है। इसलिए पैशन के साथ स्किल और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। अगर आप अपना सपना कंटेंट क्रिएशन में बनाना चाहते हैं या फिर उस तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग सीखिए, एडिटिंग सीखिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, रिसर्च करना सीखिए और ऑडियंस को समझिए कि आज की ऑडियंस कैसा कंटेंट देखना चाहती है। और सबसे ज़रूरी, एक ऐसा विषय चुनिए जिसमें आप लंबे समय तक जेन्युइन काम कर सकें। और हाँ, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि इन्फ्लुएंसर होना क्या होता है, मतलब आपकी बात जो है वो समाज पे सकारात्मक प्रभाव डाले, इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना होगा। तो आप अपना कंटेंट कुछ ऐसा रखिए जिससे लोग एंटरटेन भी हों और उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट, एक गुड इम्पैक्ट पड़े। कहते हैं बूंद बूंद

उनसे सागर भरता है। सोशल मीडिया पर यही कहावत लागू होती है, हर वायरल वीडियो आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देगा। कई बार पहला वीडियो 10 लोगों तक ही पहुंचेगा, दूसरा 50 तक, और शायद 100वां वीडियो हजारों तक पहुंचेगा। लेकिन वही कंसिस्टेंसी एक दिन आपको आपकी पहचान ज़रूर दिला सकती है। और अगर आप कभी आपकी रील वायरल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सपना गलत है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपसे पहले सफलता मिल गई, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जर्नी यहीं ख़त्म हो गई। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, हर किसी का अपना कंटेंट होता है, हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है, और सक्सेस की भी अपनी अपनी पेस होती है। किसी को सक्सेस 22 की उम्र में मिल जाती है, किसी को 30 में मिलती है, और किसी को 40 में मिलती है। लेकिन इससे हम किसी की लाइफ तो नहीं जज कर सकते ना। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी अपनी पेस होती है। आप अपनी लाइफ में ध्यान दें और दूसरों की लाइफ में नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्फ्लुएंस पाने से पहले इन्फ्लुएंस देने लायक बनिए। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए कि लोगों को आपका कैरेक्टर प्रभावित कर सके। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ आपकी कंटेंट क्वालिटी नहीं देखते, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी भी देखना शुरू करते हैं, और उससे भी पहचानना शुरू करते हैं। और इन्फ्लुएंस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर लाखों लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आपकी कही बात का असर उन पर उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, फेक लाइफस्टाइल दिखाना, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, बिना जानकारी के हेल्थ और फाइनेंस जैसी गंभीर चीज़ों पर सलाह देना, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ज़रा ध्यान से इसका कंटेंट बनाएं। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल बनिए, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बनिए। आपकी आवाज़ किसी को मोटिवेट करती है, आपकी आवाज़ किसी को एक नया स्किल सिखा सकती है, आपका कंटेंट किसी को नया स्किल सिखा सकता है, आपकी कहानी किसी को हार ना मानने की प्रेरणा दे सकती है, आपकी क्रिएटिविटी किसी दूसरे युवा को अपना टैलेंट पहचानने में मदद कर सकती है। और तब आपके फॉलोअर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होंगे, वो आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। क्योंकि आखिर में इन्फ्लुएंस होने का सबसे खूबसूरत रूप वही है जहां लोग आपको नाम से जानते हों, आपके काम से जानते हों, बल्कि वह है उस जगह को कहेंगे जहां किसी की ज़िंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज आपके एक अच्छे कंटेंट की वजह से आ जाए। मान लीजिए कोई बहुत इंसान दुखी है, और आपका कोई पॉजिटिव कंटेंट उसकी फीड पे आता है, जिसमें आपने एक निराशा भरे फेस के बाद एक अच्छे फेस का भी दृश्य दिखाया हो, सोचिए वो इंसान एक ऐसे माइंडसेट में बैठा हुआ है जिसके आसपास उसके बहुत सारी निगेटिविटी है, बहुत सारा दुख है उसके जीवन में, और उसने ऐसा पॉजिटिव कंटेंट देखा, तो सोचिए वो कितना खुश हो सकता है। हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए, हो सकता है वो मेहनत करने के लिए, दोबारा से लाइफ को रिस्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे कंटेंट की ज़रूरत आज के हमारे सोशल मीडिया को है, तो आप ऐसे कंटेंट बनाइए। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया खोले ना, और किसी इन्फ्लुएंसर को देखें और सोचें काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती, तो पल भर रुकिए और खुद से कहिए, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से बेहतर बनाने पे काम करूं, किसी की कॉपी बनकर नहीं, अपनी पहचान बनकर। तो अब थोड़ी देर सोशल मीडिया से हम जब दूर आते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर दोस्तों ऐसा है जिसने सहस्त्रों वर्षों से हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को और हमारे नॉलेज को इन्फ्लुएंस किया है, और वो हैं परब्रह्म श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वह पर्व जब आधी रात को उस पहर को हम याद करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, जब मथुरा की कारागार में देवकी और वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परब्रह्म हरि के एक अवतार का जन्म हुआ था। ये कहानी है संघर्ष के बीच उम्मीद की, अन्याय के सामने साहस की, रिश्तों में प्रेम की, दोस्ती में विश्वास की, और जीवन के हर मोड़ पर कर्म के महत्व की। शायद यही वो वजह है जो हजारों सालों बाद भी श्री कृष्ण का चरित्र हमारे

घरों में आज भी है, वो गीता का ज्ञान आज भी हमारे बीच है और वो सकारात्मक प्रभाव हमारे बीच में, हमारे जीवन में डाल रहा है। गीता का एक एक श्लोक आपके जीवन का मार्गदर्शन है, वो आपको एक सकारात्मक राह दिखाएगा, एक सकारात्मक रास्ते की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा संगस्तु कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जैसा आपका कर्म होगा उसी हिसाब से आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। युवा जीवन में ये जो श्लोक है सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, हमें बहुत जल्दी चीजों को हम पाले, लेकिन कर्म करने से डरते हैं, उस चीज़ पे मेहनत करने से डरते हैं, अपने काम को तराशने से डरते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो ये श्लोक है, ये हमें जीवन का सार सिखाता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन, जो महारथी अर्जुन है, वो सेना से घिरे हुए हैं, युद्ध भीषण चल रहा है, और ऐसे हालात में वो जब अपना शस्त्र त्याग देते हैं और उन्हें लगता है कि ये युद्ध करना क्या सही है, अपने लोगों के विरुद्ध हथियार उठाना क्या सही है, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें देते हैं गीता का ज्ञान, कर्म का प्रभाव समझाते हैं, कर्म की गति समझाते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बीच का जो डिफरेंस है वो समझाते हैं, गीता का सार समझाते हैं, और तब बनते हैं वो परब्रह्म श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अपने भगवान श्री कृष्ण को, हमारे श्री कृष्ण को हम पूजते हैं, ध्याते हैं, और उन्हें हम अपने जीवन में एक ऐसे रूप में देखते हैं जो हमें एक फिलोसफर भी दिखाई देते हैं, हमें एक फ्रेंड भी दिखाई देते हैं, हमें एक गॉड के रूप में दिखाई देते हैं, एक इन्फ्लुएंसर भी दिखाई देते हैं, जिनके गीता का ज्ञान हमारे जीवन में इतना सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब एक ऐसे चरित्र का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, तो क्यों ना उनके इस गीता के ज्ञान से हम कुछ श्लोक, कहते हैं ना कि एक एक लिटिल लिटिल स्टेप से ही हम कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ों को बदल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो उनके इतने जो गीता के ज्ञान है, उसमें से हम कुछ चीज़ें अपने जीवन में आत्मसात कर लें, कुछ चीज़ों को सीखने की ओर अपने कदम को बढ़ाएं, ताकि उनके जन्मोत्सव का जो एक विशेष ध्येय था, जिस कारण से वो इस धरती में अवतरित हुए थे, वो हमारे सामने ऐसे दिखाई दे, हमारे अंदर मानवता हो, हम लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बीच मानवता बनी रहे, और यही उनके जन्म का ध्येय था। तो दोस्तों, अब अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं ये म्यूजिकल यू टर्न।

0: तो दोस्तों म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ खास लेके आते हैं, हमेशा कुछ स्पेशल लेके आते हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वार्ता। वार्ता का विषय है श्री कृष्ण का जीवन दर्शन, और जो हमारी वार्ताकार हैं उनका नाम है श्रुति शुक्ला। आइए सुनते हैं।
1: समय के अथाह सागर में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी आभा केवल एक युग को नहीं बल्कि समस्त काल को आलोकित करती है। ऐसे ही एक अद्वितीय व्यक्ति हैं योगेश्वर पर ब्रह्म साक्षात माधव श्री कृष्ण। उनका जन्म मात्र एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना का वचन था। कारागार की अंधेरी कोठरी में संकटों के बीच देवकी और वसुदेव के घर अवतरित हुए कृष्ण केवल यशोदा नंद के लालन पालन तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे विश्व के नंदलाल बने। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीला, माखन चोरी, गोपियों के संग रास, कालिया दमन और गोवर्धन धारण केवल बालक की चपलता नहीं बल्कि संदेश है कि ईश्वर का स्वरूप आनंदमय भी है और रक्षक भी। वे हमें यह सिखाते हैं कि दिव्यता कठोर में नहीं मधुर सरलता में भी वास करती है। युवावस्था में वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल कूटनीतिज्ञ, निपुण राजनीतिज्ञ और अद्वितीय मित्र सिद्ध हुए। पांडवों के प्रति उनकी मित्रता और द्रौपदी के प्रति उनकी रक्षा प्रतिज्ञा यह दर्शाता है कि धर्म केवल उपदेश नहीं आचरण भी है। और फिर आता है महाभारत का महाकाल कुरुक्षेत्र। जब अर्जुन संशय और मोह में जकड़ गए तब रथारूढ़ माधव ने गीता का अमृत प्रदान किया। गीता केवल युद्ध भूमि का संवाद

नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, ये तीनों पथ उसी एक संवाद से प्रवाहित हुए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल भौतिक विजय के लिए नहीं बल्कि आत्म विजय के लिए है। उनका पूरा जीवन एक संदेश है, परिस्थितियां कैसी भी हो धर्म का पथ कभी न छोड़ो। श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, वह प्रेम के प्रतीक है, नीति के ज्ञान है और समय के स्वामी हैं। वे बांसुरी की मधुरता भी हैं और सुदर्शन चक्र की तीव्रता भी हैं। वे गीता का गूढ़ ज्ञान भी हैं और वृंदावन की माखन चोरी की मासूमियत भी। आज जब संसार फिर से भ्रम, संघर्ष और मोह के जाल में उलझा है, तब हमें श्री कृष्ण की ओर लौटने की आवश्यकता है, उस कृष्ण की ओर जो बताता है कि सच्चा

0: मंत्र की तीव्रता भी है। वे गीता का गूढ़ ज्ञान भी हैं और वृंदावन की माखन चोरी की मासूमियत भी। आज जब संसार फिर से भ्रम, संघर्ष और मोह के जाल में उलझा है, तब हमें श्री कृष्ण की ओर लौटने की आवश्यकता है। उस कृष्ण की ओर जो बताता है कि सच्चा धर्म किसी संप्रदाय का बंधन नहीं, बल्कि समस्त मानवता का पथ है। याद रखिए, श्री कृष्ण की कथा केवल अतीत नहीं, यह वर्तमान भी है और भविष्य भी। वे समय के पार खड़े होकर हमें पुकारते हैं, उठो, जागो और धर्म के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि जब जब धर्म बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण लौटते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनामं सृजाम्यहम्। किसी रूप में, किसी स्वरूप में और किसी युग में हम पर यह निर्भर है कि हम उन्हें पहचान पाए या नहीं। आज भी जब श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो केवल अतीत को नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी आलोकित करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन हमेशा से और हमेशा तक धर्म, प्रेम और सत्य की ज्योति जलाता रहेगा। आज जब दुनिया में अनिश्चितता और असंतुलन की आंधियां चल रही हैं, तब श्री कृष्ण का स्मरण हमें अडिग बनाता है। उनकी मुस्कान हमें सिखाती है कि कठिनतम क्षणों में भी संयम और विश्वास बनाए रखें, और उनकी गीता हमें प्रेरित करती है कि धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण केवल द्वापर के नहीं, वे हर युग के हैं। वे हर उस हृदय में जन्म लेते हैं जो सत्य, करुणा और साहस से भरा हो। क्योंकि श्री कृष्ण इतिहास के पन्नों में बंद कथा नहीं है, वे इस क्षण में जीवित हैं, इस श्वास में, इस धड़कन में। और एक दिन जब इस समय की धारा फिर से धर्म के तट से भटक जाएगी, वे लौटेंगे, कभी कान्हा बनकर, कभी माधव बनकर, कभी गीता के शब्द बनकर, पर लौटेंगे जरूर। और उस दिन संपूर्ण सृष्टि में एक ही स्वर गूंजेगा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
1: तो दोस्तों, हमने श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण के बारे में इतना कुछ जाना हमारी वार्ताकार श्रुति शुक्ला के स्वर में। तो अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों इतने ब्यूटीफुल से सॉन्ग ब्रेक के बाद वापस आ गए हम अपने प्रोग्राम में और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज के साथ। आज के प्रेरणा पुंज एक ऐसे लेखक जिन्होंने बच्चों की कल्पना को किताबों के पन्ने से निकालकर एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां चॉकलेट फैक्ट्री बन सकती थी, छोटी सी लड़की असाधारण शक्ति पा सकती थी और कल्पना कोई सीमा से परे जा चुकी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉल्ड डहल की। रॉल्ड डहल का जन्म जो हुआ था वो 13 सितंबर 1916 को वेल्स में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे रॉयल एयरफोर्स में भी रहे और बाद में लेखन की दुनिया में आए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी अद्भुत स्टोरी टेलिंग। ऐसी कहानियाँ जिनमें बच्चों की शरारत, हास्य, रोमांच, कल्पना और जीवन की छोटी बड़ी सच्चाइयाँ एक साथ दिखाई देती थी। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, माटिल्डा, द BFG, जेम्स एंड द जाइंट पीच जैसी उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर में पढ़ी जा रही हैं। उनकी कहानियों की सबसे खूबसूरत खास बात ये थी कि वे बच्चों को छोटा समझकर नहीं लिखते थे। उनकी इमेजिनेशन बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती थी और उन्हें एक अलग दुनिया में लेके जाती थी। उनकी कहानियों में बच्चों के जो सवाल होते थे वो बिल्कुल वैसे ही होते थे, बचपने से भरे हुए, सपने देखते हुए, मुश्किलों से लड़ते हैं और कई बार बड़ों की दुनिया को भी अपने तरीके से चुनौती देते हैं। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कल्पना कोई बचकानी चीज़ नहीं है। कई बार वही इमेजिनेशन भविष्य की सबसे खूबसूरत पॉसिबिलिटीज़ को जन्म देती है। आज जब हम इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर बड़ी क्रिएशन कभी कभी ऐसे दिमाग में एक छोटे से विचार के रूप में जन्म लेती है। उनकी लेखनी हमें एक खास तरह की शरारत और डार्कनेस दोनों दिखाई देती है। वे बच्चों को सिर्फ मीठी कहानियां नहीं देते थे, उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से गुजरने और उससे मजबूत बनने के ऐसे किरदार से भी रूबरू करवाते थे जो उन्हें जब वो पढ़ते थे तो उनसे इंस्पायर होते थे कि बच्चों को लगता था कि ये तो हमारे जैसा ही कैरेक्टर है, लेकिन देखो कितना स्ट्रांग है। इमेजिनेशन को अपनी लेखनी से और अपनी इमेजिनेशन से एकदम भर देते थे और बच्चों की दुनिया को एकदम गुलजार कर देते थे। और आज की हमारी चर्चा में भी हम इनकी कहानी कहीं से जोड़ सकते हैं। इन्फ्लुएंस सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी एक लेखक अपनी किताब के ज़रिए करोड़ों लोगों की कल्पना को भी प्रभावित करता है और यही उन्होंने किया। उन्होंने एक जेनरेशन को प्रभावित किया बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रेरणा पुंज। तो हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आइए सुनते ही ये संदेश।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने प्रेरणा पुंज, हमारे जो आज के प्रेरणा पुंज हैं उनके बारे में। और हम अपने प्रोग्राम में, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्ति की ओर पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक तो लेना बनता है।

तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को है। चलते चलते हम अपने श्रोताओं से जो कल का प्रश्न था वो पूछ के उसका उत्तर देते जाते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, कौन सी नदी रोहतांग के निकट से निकलती है? और इसका उत्तर है व्यास नदी। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, रोहतांग के पास व्यास का वास। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक, नेशनल वाटरवे एक, किन दो प्रमुख स्थानों के बीच से विकसित किया गया है? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को है। और मैं दिव्या द्विवेदी लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा

0: से GSLV-F-17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05:30 हो रहे हैं। आप सुनिए हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

पहले आज के शेष कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का श्री द्वारकाधीश मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से सजीव प्रसारण सुनवाएंगे रात 11:10 पर। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 ग्रामीण भाई सुनेंगे वार्ता पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगे रमेश कुमार शुक्ल, साथ ही राम सुमेर यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा, इसके अंतर्गत सुनिएगा वार्ता।

कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय कुमार पांडे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में भजनों का आनंद लीजिएगा शाम 7:45 पर। स्वर होगा भूपेंद्र कुमार का।

वरिष्ठ जन अपना कार्यक्रम अक्षयवट सुनेंगे रात 8:30 बजे। गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशां के साथ रात 9:30 बजे। मैं मर चुका हूं, विपुल कृष्ण नागर का लिखा यह नाटक सुनिएगा रात 10 बजे। प्रस्तुति अभिनय श्रीवास्तव की होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन सुनिएगा रात 10:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

भारत और पाकिस्तान के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाएंगे कल शाम 7:31 से। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनवाएंगे रोज की तरह सुबह 9:30। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना लेकर के आएंगे सुबह 6:05 पर। विचार बिंदु के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार सुनिएगा सुबह 6:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे सुबह 6:35 पर। इसके अंतर्गत डॉक्टर वीएन पांडे से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा पौधों में फफूंद रोग और बचाव।

कलर ब्लाइंडनेस, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर वी बी निघोशकर की ये वार्ता सुनवाएंगे कल के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7:00। 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रामाश्रय झा का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:30। दिन में 12:15 पद्मा तलवलकर का शास्त्रीय गायन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रीति मिश्रा के स्वर में भजनों का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:50 पर, दिन में 10:05 पर कार्यक्रम होगा लोक माधुरी। इसके अंतर्गत कल हम आपको सुनवाएंगे अनुराधा श्रीवास्तव और उमेश चंद्र कनौजिया के स्वर में लोकगीत।

कुछ और लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30 बजे। स्वर होंगे कमल चंद्र यादव, वंदना सरोज, दिनेश कुमार और साथियों के। हमारे संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनिएगा कल दिन में 10:30 बजे। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत से इला चंद्र जोशी की भेंटवार्ता।

और साथ ही आप वार्ता सुनेंगे फिराक गोरखपुरी की, विषय होगा बीते दिनों की यादें। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11:15 पर।

फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा। दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत संदीप मां वर्मा के स्वर में लोकगीत सुनाए जाएंगे।

स्वर होंगे परमदीन यादव और साथियों के। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 बजे युवजन सुनेंगे वार्ता वर्तमान परिदृश्य में गुरु शिष्य संबंध। वार्ताकार होंगी तान्या निरखी। साथ ही पंचायत घर कार्यक्रम में कल शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात। साथ ही दिनेश कुमार और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। और प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा कल शाम 6:50 पर। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज की शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देशगान।

0: अभी आप समय शुरू में ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आदौ मुख्य वार्ताः। देशेन लब्धः प्रथमः उपभूसमकालिक भू अवलोकन उपग्रहः। सफलप्रक्षेपणं भारतस्य अन्तरिक्षक्षेत्रस्य संवर्धमानसामर्थ्यस्य प्रतीकभूतमस्तीति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रख्यापितवान्। न्यायप्रदानप्रक्रियां विवादसमाधानं चाधिकृत्य समसामयिक विषयेषु विचारविमर्शार्थं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः समारब्धः। नेपालजलौघे विलुप्तानां परिजनेभ्यः केन्द्रसर्वकारेण DNA परीक्षणसौविध्यं प्रकल्पितम्। विनाशकारिजलाप्लावेन मृतानां संख्या 82,12,00 समुपगता। कृत्स्नेहि देशे अपारश्रद्धया जन्माष्टमी पर्व समनुष्ठीयते। अपि च श्वः यावत् मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः भारतऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भूसमकालिककक्षायाः भारतस्य सर्वप्रथमेन चित्रण उपग्रहेण EOS 0

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: पंचो राम राम।
1: हम कई बद्री भैया,
0: हाँ सुमरन भैया।
1: एकदम खुश बाटा, आज एकदम गमछा वमछा लेके कतौ से आवत बाटा का?
0: ए भैया, आज तो हम गठियावाई गठियावाई कहा है।
1: का बाटा ही आज मन?
0: भैया देखा, हिम्मत जौन है
1: हाँ
0: आज आधा खाली करे है रतियम भाई। 12 बजे सब गठिया के ले जाए कहा घर इतने लगे। अब बतावा आज कहा आटे।
1: अरे बिल्कुल भैया, देखा आज अपन जोन भगवान श्री कृष्ण का
0: हाँ
1: जोन जन्मोत्सव बाटे भाई पूरे भारत देश में, भारत के अलावा भी भैया अमेरिका, फ्रांस, रूस, जहाँ जहाँ भैया भारतीय रहतिन, अगर नहीं भारतीय रहतिन वहूँ भैया बड़े धूमधाम से मनावा जात
0: तो
1: बाटे।
0: भैया, जब 12 बजे रात की भगवान वही जन्म ली हैं और हर तरफ बधाई संदेशा बाजी, तो बड़े बात जौन माल पुआ हलुआ
1: अरे
0: पूरी
1: कही
0: और फल मिठाई
1: गया,
0: मिली, ओका खाए के बादो गठियाओ तो रही
1: अरे
0: ना।
1: बिल्कुल बद्री भैया कही गया। अब भाई हम जब भाई अपने पंचायती में आवत रहे ना,
0: हाँ
1: तो भैया हमार मन करत रहा कि रुक के जोन बाटे जोन मेला वोला होत बाटे भाई,
0: हाँ
1: कतौ छनत बाटे आपका जलेबी गुड़िया, कतौ चलत बाटे भैया पकौड़ी, तो हम कहीं रुक के पहले ओका स्वाद ले लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए।
0: अरे यार, तो चुन्नू मुन्नू हेरन भैया सुबेरे सुधुम मचाए हैं। पहले गैन मेला देख के आए ना, अब देखा था ही। अब की तो भैया सब घरे घरे मनाई झांकी सजावत आए। आज पूरा जोन भैया अपन पंचायत हो और चाहे पूरा गांव गांव हो, एकदम भगवान मय कृष्ण मय हो गया है।
1: बिल्कुल बद्री भैया, एक चीज और हमके बड़ी अच्छी लगी कि भैया जोनो ये व्रत त्योहार या उत्सव होत है
0: हाँ भैया,
1: भाई, मन जो भी पकवान बनतिन या जोन तमाम तरह का परंपरा होत है, ई भी हमार एक सांस्कृतिक धरोहर बाटे,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल।
1: एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही जात है। हम तो ई चाहिए था कि भाई जोनो ई त्योहार व्रत रहे भाई खूब धूमधाम से मनावा जाए, पीढ़ी के आगे आवे वाली पीढ़ी के ही पता चले कि भाई ओकर का महत्व बाटे, समाज में ओकर कितनी जरूरत बाटे और काहे बड़े व्रत त्योहार मनावा जाता।
0: बिल्कुल सही कहा भैया। और किसान भाइयन के लिए भगवान तो कृष्ण ऐसे हैं जैसे उनके घर एक मनई, मतलब
1: बिल्कुल
0: जे पशुपालन का मनई का शिक्षा देता है गौ प्रेमियों खुदय व्यक्ति, और हमका वह संदेश दे गए उनकर बड़के भैया हलधर यानी बलराम भैया, जे
1: अरे
0: कांधे पलाई के हलाई चरत रहा है।
1: बिल्कुल,
0: यानी हमारे सबक तो घर ही दुआरा, हमारे सबक तो परिवार है यार भगवान किसान।
1: और उनके जीवन से सीखा ही मरे कितना चीज बाटे
0: हाँ
1: भाई, तमाम तरह के परेशानी आई उनके जीवन में, उनके बावजूदो भाई जोन धर्म का रास्ता रहा। हम तो कहा कि पूरे विश्व के अगर के धर्म का रास्ता दिखाए तो भगवान श्री कृष्ण रहें।
0: बिल्कुल भैया। और देखा है जैसे कि जन्माष्टमी हम लोग हमेशा लोक कथा होए चाहे भागवत महापुराण होए, सबको बात की जात कि चारों तरफ बतावा कारागार में पूरा तरह से हर तरह से भरा है, एकदम सैनिक लगा है कि देखा जन्म होए वाला है निकले न देव। लेकिन रात के 12 बजे बतावा ऐसा माया रची कि सारा कारागार का ताला
1: साहब साहब
0: टूट
1: वही
0: गया।
1: भगवान का महात्म्य रहा कि भैया सब जने सोई गए, सारा जोन पहरेदार रहन सब सोई गए, अपने आप सारा ताला खुल गवा। अब देखो भगवान के जब आवई के होत है तो भाई तरह की लीला होथिन, और भाई जोनी त्योहार मनावा जात बाटे बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में मनावा जात बाटे। अपने प्रयागराज की भैया बात किया जाए तो प्रयागराज में भी जगह जगह देखब तो भाई मेला लगा बाटे, झांकी सजी बाटे, जोन भी भाई नाटक होए या कहानी के माध्यम से भैया तरह तरह का कार्यक्रम चलत बाटे। एकरे अलावा भैया अपने प्रयागराज में दधिकांदो मेला भी मनावा जाता है, जो कि भैया आपके जन्माष्टमी के तुरंत ही बाद से शुरू हो जाए और हमके लगातार 1 महीना तक तो चलत है।
0: सही बात है भैया। और बड़ा पौराणिक चीज आप याद दिया, इतिहास याद दिलाया कि ये कैसा त्योहार भैया याटे कि ना सिर्फ जोन जहां मनई जाए में कहा थी डेरात है थाना उन्हा मनई कहे नाम ले लिया, तो हमारे पंच भाई लोग डराई जाते कि थाने जाए कहा है। आज ये कैसा दिन रहा कि मनई थाने घूमो तो जहां कहा था कभो न जाए वो कारागारों में घुस के जाते देखिया होता है
1: एकदम
0: भैया
1: एकदम
0: कहा है।
1: एकदम भैया, यही जो बात होता ना कि भाई ई जोन व्रत त्योहार होते इनकर महात्मा ही कुछ अलग होता, और जब हम सभी

0: सब मनाई था, तो भाई एक तरह से समाज में भाईचारा, समाज में प्रेम, इन जोन तरह के गुण बाटन, एकर भाई नवाचार, एकर रस का जो पान बाटे पूरे समाज में होता, उस समाज में ही पूरे एक का नाम बाटे एक ही धागा में पिरोई जाता।
1: सही बात सुमिरन भैया, एक चीज किशन भगवान का आप ध्यान दे हो गया कि देखा वो हमेशा जमुना मैया का बड़ा माने, उन्हें किनारे खेलें, वहीं में कूदें, और यहाँ तक कालिया नाग जब नदी में रहा लाग तो गए नोकर विष साफ करें। देखा संदेशा कितना बढ़िया बा कि अगर हम अपने नदी नाला जो नदी मिली जाती है वहाँ एक तरह से नाला से विष मिला जाता है या प्लास्टिक या प्रदूषण फैला जाता है, वो कालिया नाग विष की तरह फैलता है, ओका हम सबको भगवान किशन बन के ओका स्वच्छता का संदेश लेवाक पड़ी ताकि अपन जल संरक्षण होए। और जल संरक्षण के साथ एक बात और याद आई भैया कि देखा खेती किसानी में जल संरक्षण कर बहुत जरूरी हो,
0: बहुत जरूरी बात। देखा तो इतना बढ़िया एक जोड़ा जोन बाटे भाई, ये जो चीज बाटे ये तोहरे अंदर वजह से आई कि भाई तू भाया एक किसान ऐसा है कि भाई खेती किसानी का जोन काम कर रहा था कि भाई जानकारी लेके करत है।
1: सही बात।
0: अब जैसे आपन खेती किसानी बाटे ही तो भाई उस बदली बाटे, पहले जोन रही हम सब अलग तरीके से किया जाता रहा, अब भाई नवाचार आई गवा बाटे, तकनीक आई गई बाटे, और विशेषज्ञ भैया जोन तरीका तौर तरीका बतावत हैं भाई उसे की जाता
1: है। ये सुमिरन भैया पहले का रहा नहर पानी आवत यह है, गए नारी के घर काट देन का पूरा एक तरफ से भरत चला जाता है, चाहे धान हो गेहूं हो सब्जी हो सब पूरा एक तरफ से भर गया। और आजकल देखा भैया प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना से बढ़िया बढ़िया चलता है योजना।
0: तो यही बात बाटे कि भाई जोन सरकारों कहत बाटे कि भाई जोन तौर तरीका बाटे ओका सुधारे की जरूरत बाटे, आपके भाई फसल में जितना पानी की आवश्यकता बाटे उतना ही पानी दें। अब जैसे जोन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताया, तो सरकार उम्मन आपके सिंचाई बरे भाई तमाम तरह के जो योजना लाई बाटे एकर आप लाभ ले सकते हैं। एकर लाभ आप कैसे ले ही भाई, उम्मन रजिस्ट्रेशन कराई के भाई आपका आधार लागे, आपको बैंक अकाउंट लागे, ऐसे रजिस्ट्रेशन कराए कि भाई एकर लाभ ले सकते हैं आप।
1: बिल्कुल, हम कहे कि भैया देखा आज जन्माष्टमी और पूरा देश पूरा गांव और अपन पंचायत सब भगवान के रंग में आज रंगी बा।
0: एकदम,
1: तो अगर ही में कुछ ऐसा चीज सुनवाए दिया जाए अपने पंच भैया हरिन का भगवान के महात्म के ऊपर तो बड़ा बढ़िया ही समझा कि आज पंचायती में रंग जम जाए।
0: तो भैया हम कहब कि जोन अपने एक ठे वार्ता बाटे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व आनंद मोहन ओझा ओका हम सबे सुना बाज।
1: अच्छा,
0: पर अपने पंचायती की एक परंपरा रही बाटे कि हम सबे सुनी था पहले जब पंच भैया अरे आवत हिन तो देखत हिन कि भाई बदरी या सुमिरा नावा है और उनके स्वागत में कुछ गीत गवनाई लेके आवत
1: हैं। गया कही
0: तो
1: गया
0: पहले अपने पंचायती में भाई पंच भाइयों के स्वागत में एक गीत गवनाई बाटे
1: का सुनाओ था भैया।
0: राम सुमेर यादव और साथी का एक विकास गीत बाटे।
1: अच्छा,
0: उसे शुरुआत करब हम सबे, ओकरे बाद हम सबे का नाम बाटे जोन वार्ता कहत रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ओके सुनो। तो आओ पहले ही जोन गीत गवनाई बाटे राम सुमेर यादव और संगातिन का ओके सुना जाए।
1: ठीक भैया सुनवा।

0: हाँ भैया,
1: देखा आज कार्यक्रम में भैया, जितना आनंद और खुशी का लहर बा भगवान कृष्ण के जन्म कलई के, उतना ही आनंद भैया ये लोकगीत में आए राम सुमेर यादव और साथिन भैया के।
0: अरे काहे ना आनंद आए भैया। आज देखा जोन जन्मदिन मनत बाटे भाई, तमाम जोन भैया हरे हैं, एक नई खुशी की लहर बाटे कि भाई आज कृष्ण जी का जोन आज अवतार बाटे
1: हाँ
0: वो भवा। और साथे साथ एक चीज और समझे के पड़ी कि भाई श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ जो श्री कृष्ण का जीवन रहा, जीवन में से तमाम ऐसा अवसर आयन कि जब उनका तमाम तरह का दिक्कत का सामना करे के पड़ा, पर वो जोन कृष्ण लीला बाटे उसे ई सीखे की जरूरत बा कि भाई कैसे हम वो सब विपत्ति से आगे आई के धर्म के राह पे चल के भैया अपने समाज के उत्थान में योगदान कई सकी था।
1: एकदम सही कहा सुमेर भैया। उनकर बचपन से लेकर और उनके पूरे लीला समाप्ति तक आप देखबे कि उनकर जब बचपन की शुरुआत होता है तो उनकर

0: अपनी जन्म देने वाली माँ का कोख त्यागे पड़ता है, अपन यानी घर द्वार मम्मा पापा सब छोड़ के जाए पड़ता है। ओकरे बाद जब वो बड़ा होता है तो एक से एक विनाशकारी राक्षस पूरा हमला बोलता है, तो वो लड़प असुरी शक्तियों से लड़प सिखावत देता है, और एक बार खुद अपने ही मतलब उनके सगे मामा हैं उनका वध करने के लिए, यानी धर्म अगर अधर्म बढ़ा है तो पर धर्म कैसे स्थापना होता है, इतनी बड़ी चुनौती का उतनी छोटी उम्र में सामना करता है।
1: बिल्कुल,
0: चाहे
1: बिल्कुल।
0: महाभारत हो और चाहे द्वारिका हो, हर जगह उनसे कुछ न कुछ भैया सीखा इनके मिला था।
1: सीखा के मिला था, और जोन भाई भगवत गीता में जोन कही गए हैं ना, हमके लगा था कि भाई वो आज के संसार में भाई चाहे वो विज्ञान होए खगोल होए चाहे वो सामान्य जीवन होए, सब में वो आजा उतना कारगर सिद्ध होता कि भाई बड़े बड़े जोन वैज्ञानिक भैया हैं वो पढ़ा थी का, बड़े बड़े जोन भैया हरे हैं वो पढ़ के का भाई समाज के आगे बढ़ावा ही बिना आजो भगवत गीता भाई अपने साथ रख के तब ओका साथ चला थे।
0: सही कहा सुमेर भैया, फिर ही बात पे जोन कुछ कहत रहा भाई रखे रहा सुनाओ एक ना महात्मा। हाँ। बताओ फिर का सुनवा बता
1: आज भैया देखा।

0: इतनी बड़ी चुनौती का उतनी छोटी सी उम्र में सामना करना है, फिर
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: बिल्कुल
0: महाभारत हो और चाहे द्वारिका हो, हर जगह उनसे कुछ न कुछ भैया सीखा इनके मिला था।
1: सीखा के मिला था। और जोन भाई भगवत गीता में जोन कही गए हैं, हमके लगा था कि भाई वो आज के संसार में भाई चाहे वो विज्ञान होए, खगोल होए, चाहे वो सामान्य जीवन होए, सब में वो आजा उतना कारगर सिद्ध होता कि भाई बड़े बड़े जोन वैज्ञानिक भैया हैं वो पढ़ा थी नो का, बड़े बड़े जोन भैया हरे हैं वो पढ़ के ओ का भाई समाज के आगे बढ़ावा ही बिना आजो भगवत गीता भाई अपने साथ रख के तब ओ का साथ चला थिन।
0: सही कहा सुमेर भैया, फिर ही बात पे जोन कुछ कहत रहा भाई रखे रहा, सुनाओ एक ना महात्मा,
1: हाँ
0: तब बताओ फिर का सुनवा बता।
1: आज भैया देखा जोन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आनंद मोहन ओझा का देखे एक वार्ता बांटे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य, अब हम आप सुने और हमारे पंच भैया सुने।
0: ठीक भैया सुनाओ।
2: जन्माष्टमी का महात्म्य। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जिस समय हुआ उस समय सामाजिक वातावरण बहुत विषाक्त हो चुका था। शासक पूरी तरह से निरंकुश हो चुके थे। जनता त्राहि त्राहि करने लगी थी। चारों तरफ घोर अशांति का वातावरण व्याप्त था। जनता के सुख दुख का ध्यान रखने वाला कोई न था। चारों तरफ अत्याचार और शोषण का बोलबाला था। उसी समय श्री कृष्ण का जन्म एक अवतार तथा आम जनता के तारणहार के रूप में हुआ। श्री कृष्ण को जन्म से ही अवतारी तथा अद्भुत शक्तियों का स्वामी माना जाता है। श्री कृष्ण को जन्म से ही त्रिकालदर्शी और अतुलित बलशाली भी माना जाता है। श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। उनके जन्म के तुरंत बाद कारागार में ही उनके माता पिता की जंजीरें और बेड़ियां स्वतः खुल गई थी। कारागार के सैनिक और दरबान गहरी निद्रा में डूब गए थे। कारागार के फाटक स्वतः खुलते चले गए थे। उनके पिता जब उन्हें गोकुल नंद के घर पहुंचाने जा रहे थे तब उन्होंने लगातार उफनाती यमुना की इच्छा को भांप कर सूप में से अपना पांव नीचे लटकाकर उसे तृप्त किया तथा शेष नाग ने उनके ऊपर छत्र बनाकर उनकी दिव्यता का एहसास कराया। श्री कृष्ण ने अपने जन्म के दिन से ही अपनी असीम शक्तियों का एहसास कराना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जन्म लेने से पूर्व अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से स्वयं के दिव्य स्वरूप वाला होने तथा असीम शक्तियों का स्वामी होने का परिचय भी दिया। श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध कर स्वयं के अवतारी होने का प्रमाण दिया। उसके बाद उन्होंने लगातार एक के बाद एक असंख्य बलशाली दुष्टों का संहार किया, जिसमें कंस, जरासंध, मुचकुंद और शिशुपाल आदि शामिल थे। श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही पराक्रमी थे। उनकी वीरता और साहस को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके अद्भुत कार्यों को देखकर लोग उनमें अलौकिकता का दर्शन करते थे। श्री कृष्ण निडर, धर्मपरायण, महान ज्ञानी और विविध कलाओं के ज्ञाता थे। श्री कृष्ण ने बचपन में बाल लीलाएं भी की। उनके विविध रूप थे। उन्होंने बांसुरी बजाकर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें नर, मुनि, पशु, पक्षी और संपूर्ण चराचर जगत के लोग शामिल हैं। उन्होंने गोपियों संग रास भी रचाया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी को शरण देने के साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन अपनी लीलाओं के माध्यम से किया। अपनी बाल लीलाओं में श्री कृष्ण ने यमुना में गेंद को ढूंढने के बहाने शेष नाग पर नृत्य कर अपने दिव्य स्वरूप का एहसास कराया। श्री कृष्ण ने बचपन में माखन चोर के रूप में भी अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। अपनी माता यशोदा को उन्होंने बचपन में ही अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया। श्री कृष्ण महान दार्शनिक, कर्मयोगी और राजनीतिज्ञ होने के साथ कूटनीतिज्ञ भी थे। वे सदैव छठे साठ्यम समाचरेत के सिद्धांत में विश्वास करने वाले थे। वे दुष्टों को कभी नहीं छोड़ते थे। वे कुशल योद्धा और शांति के अग्रदूत भी थे। वे गुरु और सखा भी थे। श्री कृष्ण ने

संपूर्ण जीवन अत्याचार और अहंकार के विरुद्ध संघर्ष किया। श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत के युद्ध में भी प्रमुख रूप से रही। उन्होंने युद्ध को रोकने का अपनी ओर से भरसक प्रयत्न भी किया। उन्होंने धृतराष्ट्र के समक्ष पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव भी स्वयं प्रस्तुत किया और दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न भी किया, परंतु जब युद्ध अवश्यंभावी हुआ तो उन्होंने अपने सखा अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया और उन्होंने अर्जुन को युद्ध से विरत होने से रोकने के साथ कर्म योग का सिद्धांत भी बताया, जिसे गीता के उपदेश के रूप में भौतिक जगत में ख्याति प्राप्त है। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उसके मार्ग से विचलित होने से रोकने के लिए अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन भी कराया और कर्म के लिए युद्ध को प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अपने सखा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर युद्ध में शस्त्र भी उठा लिया। श्री कृष्ण को साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद्भागवत गीता में संग्रहित है। श्रीमद्भागवत गीता अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के दो मार्ग बतलाए हैं, प्रथम सांख्य योग तथा द्वितीय कर्मयोग। सांख्य योग के विषय में बताते हुए गीता में कहा गया है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय है। मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रखना, यह सांख्य योग का साधन है। कर्म योग की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत दासानुसार केवल भगवान के लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार से भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यही कर्मयोग का साधन है। गीता में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है तथा विभिन्न सिद्धांतों को बतलाते हुए कहा गया है कि निषिद्ध कर्मों का मनुष्य सर्वथा त्याग करे, जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि। ये नीच कर्म शास्त्र विरुद्ध हैं, अतः मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी इन्हें न करना त्याग है। काम में कर्मों का त्याग किया जाना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना भी त्याग है। तृष्णा को पूर्ण रूपेण त्याग देना चाहिए। मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना त्याग कहा गया है। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाएं सदैव कल्याणकारी समझी जाती हैं तथा उनके भक्त उनका लगातार अनुसरण पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं। श्री कृष्ण को चाहने वाले उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्तों की यही आस्था उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन सदैव कराती है। उनके भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा उनके प्रति विश्वास और आस्था रखते हैं। श्री कृष्ण संसार में बहुत से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। श्री कृष्ण को चाहने वाले उनके भक्तगण प्रतिवर्ष भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनके पावन जन्म दिवस के पर्व के रूप में मनाते

0: हैं जिसके लिए कई दिनों पूर्व से ऐसी तैयारियां की जाती हैं जैसे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का अवतरण होने वाला है। संसार में उनके भक्त नर नारी इस पवित्र दिन श्री कृष्ण की भक्ति में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप में श्री कृष्ण की कृपा की अनुभूति होती है और उससे वे तृप्त भी हो जाते हैं। श्री कृष्ण को संसार का नीति नियंता भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के चाहने वाले इस दिन को श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में साल दर साल इसी तरह से पूरे भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तथा इस पावन दिन का महात्म्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में अनंत काल से कायम है।
1: हाँ
2: हाँ
1: बद्री
2: भैया।
1: भैया, देखा जोन वार्ता रही, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य, आनंद मोहन ओझा इनका सुना गावा वार्ता, और साथ ही साथ बताएं कि भाई कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कैसे होता, कैसे कैसे भैया सब जने पूरे भाव के साथ पूरे उत्साह के साथ पूरे देश में पूरे विश्व में भैया मनावतिन। हम कही कि आगे हमारे प्रश्न का बात बत कही होए, उससे पहले कुछ संदेश बात आई ओके सुन लिया जाए।
2: बिल्कुल भैया।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: बद्री भैया,
2: हाँ
1: देखा
2: भैया,
1: संदेश सुना गा। आप देखा एक बात जो जरूरी बात बाटे ही वही आपने खेती किसानी में,
2: हाँ।
1: कि अगले आवई वाला जोन 15 दिना बाटे ही ओमन का का कृषि रक्षा कार्य किया जाए। पहली चीज सही बाटे कि भाई देखा मानसून वापस जाए वाला बाटे, धीरे धीरे अब बारिश कम होए। अब बारिश के बाद सबसे जरूरी चीज ये बात बाटे कि जब आपका नमी कम होता और आपका गर्मी थोड़ी सी बढ़ा था तब तमाम तरह का फफूंद कीड़ा और जो अन्य रोग बिरामी होता आपके फसल में लग जाता है। तो किसान भाई के विशेष रूप से जो फसल लगाए हैं ऊपर ध्यान दे की जरूरत बाटे, समय समय पर हर चीज जो के देखाई के बाटे, कतो पीलापन अगर आवत बाटे, तना में अगर कोनो सड़न बाटे तो ओका समझाई देखाई और ओकरे अनुसार कृषि रक्षा कार्य करें।
2: बहुत बढ़िया बात बताया भैया, और बारिश से आप बहुत अच्छा ही याद दिलाया कि देखा इस समय जो संचारी रोग होता ना भैया, ये बहुत तेज फैला था। अब जैसे हम लोग भाई जन्माष्टमी की बात करते रहे, देखा अब जगह जगह मेला लगा है तो वहां से बहुत बड़ी मात्रा में कचड़ा निकली, गाँव गाँव लोग झांकी लगाए हैं, प्रसाद बटी है, तो ओकरे बाद बहुत सारा जो कूड़ा वगैरह रहा तो कल लोग ऐसे फेंक दी है। तो यही से हमारे एक जागरूक किसान, एक जागरूक पंच के नाते ही कर्तव्य बना था कि हम अपने कूड़ा का संग्रह करी और जहां पे कूड़ा घर गांव में बनावा गा हुए हुआ का भैया ले जाके एकत्र।
1: बिल्कुल बद्री भैया, जैसे तो का कुछ बात याद आई ना, अब तू बात बताओ तो हम का कुछ याद आवा। भाई बारिश होई के बाद एक और चीज और बांटे कि जैसे संचारी रोग के बारे में बताया तो कूड़ा कचरा तो आप हटाई नहीं, साथ ही साथ जोन पानी भरा बांटे
2: भरा
1: कतों कतों होता ना कि भाई हमसे भूल जाई था वो भरी गवा पानी, और पानी में तमाम तरह के जो मच्छर बांटी और उन संचारी रोग का जो वाहक बांटन भाई वो अंडा देते ना, उसे भाई तमाम तरह का रोग बेरामी होता। तो भाई कोशिश ही करें कि बारिश जाए के बाद बाटे ओकर साफ सफाई करें, कतों पानी अगर इकट्ठा बाटे भाई छते पे, कतों कूलर में पानी बाटे या घड़ा रखा बाटे उमन पानी भर जाता, ओका साफ सुथरा कई के साफ सफाई कई दही, जहाँ पानी भरा ओके निकाल दही, तो निश्चित तौर पर जो नी रोग बेरामी होथिन ऐसे आप बच सकथिन। अब एक चीज और बाटे कि जो ना पशु प्राणी पाले हैं बारिश के समय भी और बारिश के बाद भी इनकर बहुत जरूरी होता कि ख्याल रखा जाए। ये होता कि भाई बारिश के पहले अगर टीकाकरण हो जाए तो जो उनके रोग लगा था वो ना लगे, बारिश के बाद ही भैया एक चीज़ करें कि भाई उनका साफ सफाई अच्छे से रखें, जहाँ वो बैठा तोड़ा था भाई वहाँ भी साफ सफाई कर दें, तो भाई आगे जो आपका ठंडी आवी वाली बाटे ओमन भी जोन रोग लगा तो उसे आप बच सकें।
2: बहुत सही सुमरन भैया बात कहा आपकी, ये समय जोन लगाता है पशुअन का टीका एक बहुत जरूरी चीज है भैया, कि यह समय विभाग जो है पशुपालन विभाग टैगिंग करता है, यानी देखा तो भैया काने में एक ही से प्लास्टिक का लगता है, तो यह समय 100% टैगिंग का लक्ष्य दिया गया है। तो गांव गांव और घरे घरे जोन पशुपालन विभाग का कर्मचारी हैं वो जाता है, तो उहमा आप डराए ना कि हमारे पशु का कान छेद दी है, वो भैया टैगिंग इतनी जरूरी है कि भविष्य में आपका सारी योजना और पशुअन का गणना और जोन आपका गाँव में घरे तक आए के सरकारी वाहन

0: और एम्बुलेंस के जरिए सुविधा मिले वाली आए, जब तक इना रही आपको सुविधा न मिल पाई।
1: बिल्कुल भैया, देखो ये सब कराए रही हैं तो जो सरकारी योजना समय समय पे आवत है उनका लाभ ले सके।
0: और भैया जैसे मान ला आजकल तो जो वो होता अंग्रेजी में जो इंश्योरेंस बोला थे, अगर ओका बीमा, अगर ओका बीमा करावे कहा अपने मवेशी का तो टैगिंग बिना भय इंश्योरेंस यानी बीमा करबे न करी है।
1: बिल्कुल सही बात बाटे। अब एक चीज और बाटे ना बद्री भैया, ई तो बात भाई की जो हम सब फसल लगाए बाटे, अब भैया सितंबर आएगा बाटे और सितंबर भैया धीरे धीरे बीत हो जाए,
0: सही बात।
1: पर एक चीज जरूरी ये बात बाटे कि आप पहले से सूद अगर ले रहे बा भाई, अगर कौनो फसल लगावे के बाद बाटाई तो ओकरे बारे में एक एक महीना पहले 20 दिन पहले सोच लेबा तब ही ओकर लाभ मिले। कहा जाता ना कि अगैती लगाबो तो अगैती पैसा पाऊबा,
0: सही बात।
1: तो जोन भैया पालक का फसल बाटाई, मेथी का फसल बाटाई या जोन तरह का पत्तीदार जोन आपका फसल होते हैं सब्जियां होते हैं ओकर अगर आपके खेती करे के बाटाई, जेकर फलत हमके मिला था दिसंबर में या नवंबर अंतिम या दिसंबर में मिले लगा था, ओकर अगर खेती करे के बाटे तो भाई 10 दिना के बाद जो बाटे ओकर खेती होई लागे। तो मेड़ बनाई के भैया जोन आपके अगर सिंचाई का नाम बाटे ओकर भाई पलाइवा लगाई के बाटे खेते में अपने भाई ओकर खेत की तैयारी शुरू कर दें, अगर अभी अगैती लगाई ही तो भाई अगैती बाजार में जाए अच्छा पैसा आपके मिले।
0: भैया बहुत सही बात याद दिलाया कि देखा इस समय जे लोग मंसूरी के अलावा जितना धान लगाए हुई हैं जिनकर उपज 120 दिन के अंदर तैयार हो जाए वाली है उनकर खेत सबसे पहले खाली हुई, तो ऐसन खेते के चुनाव करें जो उन तनी के ऊंचाई पे हुए। कहे कि सब्जियन की खेती में देखा जाता जब मानसून भैया वापस लौटे लगा था तो फिर से ठंडी के मौसम में देखा अपने इलाके में पानी बरसा था, तो सब्जी की खेती उही खेते में करें ऊंचाई वाले में जहां भैया जल निकासी का समुचित व्यवस्था हो।
1: तभी भैया कहा जाता ना कि अगर ना ही अगर आपके पास ऐसा खेत बाटे की ऊंचाई पर हो तो ओकर बेड बनाई ले, बेड बनाई के तब खेती करी ही तो भाई पानी रुके अगर तो आपके सब्जियन के नुकसान न पहुंचे,
0: नुकसान न होई। और भैया देखें ये केवल धान गेहूं और आलू लगावे खातिर केवल न आश्रित रहे आप, देखें नकदी जो खेती है वास्तविक तौर पर आपका आय दुगुना करे के वह तरीका है, और ये तरीका सीखे खातिर आपको बहुत दूर जाके जरूरत न बा, आप अपने कृषि रक्षा केंद्र इकाई पे चला जा, आप अपने ब्लॉक चला जा हुआ से जानकारी ले, और नहीं तो पंचायत घर कार्यक्रम में बहुत बढ़िया बढ़िया किसान आवतीन विशेषज्ञ आवतीन उनकर बात सुने और बहुत शानदार खेती करें।
1: बहुत शानदार खेती तब है जैसे बद्री भैया बताएं किसान भैया पंच भैया कि भाई शानदार खेती तब होए जब बात के सुनबा जानकारी एकत्रित करबा और वो जानकारी के आधार पर भाई अपन खेती किसानी का काम करबा तो खेती किसानी भी अच्छी होए, घरे में अच्छा पैसा हुआए और भाई अपने आपके परिवार का विकास होए, अपने समाज का विकास होए।
0: और ऐसा आनंद ले खातिर देखा आज जन्माष्टमी यार, सारा जब आनंद ले लागा ना भैया तो मन करे तो बधाई दे के बड़ा मन करे
1: तो बधाई आज ना बधाई दी जाए तो कब दी जाए भैया, नंदलाल का जन्मदिन बाटे अब आज नंदलाल जब जन्मे बाटे तो भाई बधाई संदेश और बधाई गीत आज ही होई के चाहिए।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो बताओ बद्री भैया का सुनवावत है बधाई में।
0: ए भैया आज देखा अखिलेश कुमार यादव और साथी यहाँ और कान्हा के बधाई पे बड़ा बढ़िया बधाई गीत देता है, अब पंच भाइयों के साथ हम सब झूमा जाए,
1: हम सब आवा बधाई दी जाए।
0: हाँ बिल्कुल।

0: हाँ बद्री भैया, देखा बधाई गीत बजा भैया, और साथे साथे जितना भक्त भैया हरे हैं, पंच भैया हरे भक्ति की भाव में एकदम लीन होई गवा बाटन, हमहू पचे एकदम लीन बाटी कि भाई भगवान का जन्म दिवस बाटी, और आज जोन बाटी बधाई संदेश गवा बाटी, और बधाई भाई सबके बधाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भैया, सबई सुनई वालन पंच भैया के जितना भी भैया बहनी हरे हैं सबके भैया बहुत बहुत बधाई।
1: बिल्कुल सुमिरन भैया, देखा बधाई होई गे, अरब इनका लोग को कुछ और दई दिन जाए
0: का बतावा
1: भैया। देखा संदेशा बाइक ठू कि
0: बतावा
1: हम लोग आपन बात कही दी थी,

0: पंजो भाई हरन सोचा तुझे एक मुसीबत दिया ले हैं। तो भैया एक ठू बा व्हाट्सएप नंबर और जेह पर अगर संदेशा भेज दें पंच भाई हरन तो समझा पंचायत घरे मुड़कर संदेशा तुरंते पहुंच
1: तुरंते ही पहुंच जाता
0: है। और उसी हुई का भैया कि हमका का कहा है वो सुन लेन, अब उनका का कहा है हाँ। का सुने कहा है के का बुलावे कहा है कौने किसानी के बारे में जाना चाहता या कुछ भी कार्यक्रम कैसा लाग कैसा नहीं लाग या कोनो अच्छा लोग गीत ही सुने चाहता तो संदेशा हमका लोग को भेज दे। तो सुमनन भैया तेरी नंबर बता दिया
1: नंबर लिखने पंच भैया देखा 800-4926-250 एक बार फिर बोल देते हैं नंबर 800-4926-250 जैसे बद्री भैया भैया बताएं कि भाई कौनो संदेश हो कौनो वो आपके सवाल होए या कौनो वो आपके फरमाइश होए पंच भैया देखा नंबर बोल दिए आई नंबर पे भैया अपन सवाल अपन फरमाइश भाई लिख के भेजाई हम सब अपने पंचायत घर कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल करबो का।
0: ए सुमरन भैया करे लामा और देखा आजकल सोशल मीडिया का जमाना बा आजकल चुन्नू मुन्नू हो या अपने पंच भाई हरन हो बढ़िया आजकल फेसबुक वेसबुक चला हुए कर रहे
1: अरे सबके हाथे में मोबाइल बांटे और सबके हाथे में भैया दिन भर उगाई लाई के जोनो चीज बांटे फेसबुक हो यूट्यूब हो सब पे। तो भाई जानकारी ले के साथ साथ अगर आपके हमरे पंचायत घर कार्यक्रम से जुड़े के बाटे अपने आकाशवाणी प्रयाग से जुड़े के बाटे तो सोशल मीडिया पर हमार पचन का जोन पेज बाटे वो आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से ओका फॉलो करें और भाई जोनो चीज आवत हैं जोनो कार्यक्रम एमन प्रसारित होते हैं भाई वो कर आनंद लें और के बारे में आपके जानकारी मिले। साथ ही साथ अगर आप सभी कमेंट करें तो आपका आपके जोन सूचना रहे आपका जोन सवाल रहे आपको जोन प्रतिक्रिया रहे भाई वो हमारी पसंद तक पहुँचे।
0: बिल्कुल अब पंच भाई देखा आ तो जन्माष्टमी आ और ओकरे खुशी में हम सब जने डूबा ही लेकिन ओकरे साथे साथे बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि भैया ई खेती किसानी का समय आ और ये खेती किसानी के समय में इसमें सबसे जरूरी 10 दिन बाद भैया धाने का बाल फूटअप शुरू हो जाए तो यह समय सबसे जरूरी बाब कि जौने खेते में पानी लग गए हो यानी ज्यादा हो गया हो ओकर पानी निकाले के इंतजाम करा
1: एकदम
0: और 10 दिन के पहले यानी जैसे फूटअप शुरू होए ओकरे बरे खाद का इंतजाम अब ही ने कर लिया
1: एकदम बहुत बढ़िया बात बताया भैया खाद एकदम तुरंत बाद भाई जब पानी निकल जाए आपका ओकरे बाद खाद डलही तो भाई जोन आपका पौधा बा ओकर सही तरीके से विकास होए जोन समय चलत बाटे मौसम जोन चलत बाटे मौसम के अनुसार भैया अपने खेती किसानी का काम करें और समय के बात की है तो भाई घड़ी इशारा करत बाटे कि सुमिरन और बदरी अब समय हो गवा बाटे पंच भैया से अलविदा लेंगे तो पंच भैया से राम राम कीन जाए तो पंचो राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद सुरों में ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, डबल इंजन सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मथुरा वृंदावन के विकास पर कर रही है काम। और प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र मुस्तैद, 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि EOS-05 भारत की अंतरिक्ष

0: कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
0: प्रदेश भर में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ में चौक स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्री द्वारकाधीश के दर्शन और पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उधर मथुरा सहित ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों में कृष्ण भक्तों का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण का 5353वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं और श्री कृष्ण भक्ति में लीन है। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा श्री की जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन की स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रदेव मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। इस बीच आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया और कृष्ण भक्तों का स्वागत कर रहे उन्हें शुभकामनाएं दी। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: वाराणसी कृष्ण भक्ति और उल्लास के रंगों में रंग गई है। काशी विश्वनाथ धाम सहित शहर के कई मंदिरों में जन्माष्टमी के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काशी शुक्रवार को भक्ति और उल्लास के रंग में रंगी नजर आ रही है। मंदिरों में विशेष सजावट, पूजन अर्चन और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो चुका है। मध्य रात्रि 12 बजे बाल गोपाल के प्रकट के साथ शंख घड़ियाल और घंटियों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद बाल गोपाल का श्रृंगार कर आरती और प्रसाद वितरण होगा। काशी के घाटों और प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, माखनलाल मंदिर आदि केशव मंदिर समेत कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार तिथि और नक्षत्र के विशेष संयोग के कारण गृहस्थ और वैष्णव परंपरा के अनुयायी एक ही दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में उल्लास और आस्था का माहौल है। जगह जगह श्री कृष्ण मंदिरों को भव्यता के साथ सजाया गया है। झांकियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन और पूजन किया। बाद में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान श्रीकृष्ण का जन्म इस पावन धरती पर हुआ था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। श्री योगी ने धार्मिक महत्व की जगहों को पुनर्स्थापित और विकसित करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के क्रम में मथुरा वृंदावन के विकास पर निरंतर काम कर रही है।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस ब्रज भूमि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे भव्य स्वरूप यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के देने का कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिसर तैयार हो जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। ये पर्व और त्योहार केवल एक आस्था ही नहीं, ये हमारी आर्थिकी के आधार भी।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट परिवार की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक धरोहर के उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए सभी से कर्तव्य पथ पर

0: पर आगे बढ़ने और विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को समझने के बाद जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी और उसके क्रियान्वयन का असर जल्द दिखाई देने लगेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नव निर्वाचित सीईओ पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रस्ट के महासचिव महंत गोविंद देवगिरी ने बताया कि सीईओ के साथ बैठक के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख तय होगी। वहीं रामलला की आरती व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शनिवार से श्रृंगार आरती के दौरान रामलला के समक्ष पदगान की नई परंपरा शुरू होगी। महंत गोविंद देवगिरी के मुताबिक सीईओ मंदिर की सुरक्षा समेत ट्रस्ट की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर कल गोरखपुर में प्रदेश के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में आज स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 7 परिवारों को सहायता राशि के चेक सौंपे। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से अधिक लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब तक 5.5 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। राहत और बचाव अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 1634 बाढ़ चौकियां, 1697 नाव, मोटर बोट और 1000 से अधिक मेडिकल टीमें सक्रिय हैं और अभी तक कोई जन या पशु हानि की खबर नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा डबल इंजन सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मथुरा वृंदावन के विकास पर कर रही है काम। और प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र मुस्तैद, 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार के स्वर में भजन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म ब्लफ मास्टर के इस गाने से, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। रचना राजेंद्र किशन की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म टक्कर से, आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना आर डी बर्मन साहब की है।

संजोग इस फिल्म से लिया है हमने अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अनजान के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म अमर प्रेम से एक गाना। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत आर डी बर्मन साहब का, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये भक्ति रचना। रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली से ये गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षयवट। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं उषा बाला श्रीवास्तव की ये कहानी।
2: जब बात मनुष्य योनि की आती है तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख ही दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अर्थात अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस योनि में तो बुद्धि की प्रखरता होती है, अर्थात मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। यह योनि कर्म की है। जब गहनता से विचार किया जाता है तो हम यह पाते हैं कि बुद्धि, विवेक, विचार, कर्म, स्वभाव, आकार प्रकार सभी में ये एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की समानता रंच मात्र भी नहीं है। जगत की सभी बातों पर विचार करते करते जब मैं स्वयं के जीवन पर ध्यान देती हूँ तो लगता है कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। उस दिन की बात सोचती हूँ जब पहली बार पिताजी ने माँ से मेरे विवाह की चर्चा की थी। मन बहुत विचलित हो गया कि क्या मुझे इस घर को, माता पिता, भाई भाभी को छोड़कर चले जाना होगा। माँ ने कहा, बेटा देश काल की रीत यही है। जब उन्होंने बहुत समझाया तो कुछ शांति मिली। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी भाभी भी तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हैं। हमारे देश में बेटी तो पराया धन होती है, उसे पति के घर जाना ही होता है और वही उसका वास्तविक घर भी होता है। स्मरण हो आता है वह दिन जब 21 वर्ष की आयु में मैं पति के साथ संकोच से सिमटी हुई विदा होकर अपनी ससुराल आई थी। यद्यपि इनके माता पिता दोनों ही नहीं थे, तथापि चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ, मामा, चचेरे भाई बहनों से घर भरा हुआ था। सभी से यथा योग्य प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ। विवाह को 10-15 दिन हुए ही थे कि घर से सभी संबंधी धीरे धीरे करके चले गए। दो लोगों के बीच का जीवन बड़ी ही तीव्र

तीव्र गति से बीतने लगा। अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि हम दोनों का एक पुत्र हो गया। यह अनुभव भी बहुत ही सुखद था। फिर क्या था, समय के पंख लग गए। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन कैसे बीतने लगे कुछ पता ही नहीं लगता था। खुशियों से भरे इन दिनों में कहीं कुछ सोचने विचारने का अवसर ही नहीं था। कभी कभी माता पिता, भाई भाभी, उनकी बेटी गुड़िया भी आ जाया करते थे। इधर हमारा बेटा मुन्ना भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। कौन जानता है फूलों की क्यारी के बीच कहाँ सर्प है और वह कब उसे डस लेगा। विधाता को यह खुशी सहन नहीं हुई। अभी विवाह के 7 वर्ष ही हुए थे कि एक दिन ऑफिस से आते समय स्कूटर से एक छोटी सी घटना में ये घायल हो गए। 7 दिन तक जीवन मृत्यु से संघर्ष में जीवन हार गया, मृत्यु की जीत हो गई, ये परलोक से धार गए। ऐसे लगा जैसे जीवन दुख के सागर में डूब गया। दोनों परिवारों से लोग एकत्र हुए, सारे क्रियाकर्म किए गए। मैं भाव शून्य, विचार शून्य सी, यंत्रवत, जो कोई जो कुछ भी कहता वही कर देती। 15-20 दिन बाद सभी अपने अपने स्थान को वापस हो गए। मेरे माता पिता भी लगभग 1 माह तक रहने के बाद मुझे भी अपने साथ चलने को कहने लगे, परंतु इनके चाचा चाची ने कहा बहू को 1 वर्ष तक यहीं रहना होगा। अतः मैं वहीं रही। इस बीच कभी माता पिता, कभी भाई भाभी, यथासंभव बराबर ही आते जाते रहे। यह पूरा वर्ष मेरे लिए अत्यंत विचारणीय रहा। मैं निश्चय नहीं कर पा रही थी कि मुझे आगे क्या करना है। समय अपनी गति से चलता रहा। 1 वर्ष बाद जो भी क्रिया कर्म होने थे सब संपन्न हो गए। अब तो माता पिता ने जिद ही पकड़ ली कि अब तो तुझे यहाँ नहीं रहना है। भाई भाभी ने भी सहृदयता और मनुहार किया। विवश होकर मैं मायके आ गई। मन भयभीत था, बुद्धि भ्रमित थी, चित्त शून्य था। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा। कभी कभी तो मन यह करता कि किसी प्रकार इस जीवन को ही समाप्त कर दूं, किंतु अगले ही क्षण मुन्ना का ध्यान आते ही वह भाव तुरंत तिरोहित हो जाता। दिन बीतते गए। माता पिता तो माता पिता ही थे। भाई भाभी का व्यवहार तो ऐसा था जैसे वो दोनों साक्षात ईश्वर का स्वरूप हों। हर समय एक एक बात का ध्यान रखना, मुन्ना की पढ़ाई, फीस, कपड़े, किताब, कापी, खेलकूद, कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर उन दोनों का ध्यान न रहता। जो कुछ और जितना अपनी गुड़िया के लिए करते उससे अधिक मुन्ना के लिए होता। भैया तो भाभी के माध्यम से मेरी हर आवश्यकता का ख्याल रखते। जब जैसी साड़ी या कपड़े भाभी के लिए आते वैसी ही मेरे लिए भी होता। माता पिता तो पूरा ख्याल रखते ही थे, पर भाई भाभी उन लोगों से किसी बात में कम नहीं थे। समय अपनी गति से चलता रहा। अवस्था होने के कारण माँ थोड़ा बीमार रहने लगी थी और अंततो गत्वा एक दिन उनका शरीर शांत हो गया। यह मेरे जीवन का एक और बड़ा धक्का था। एक बार फिर ऐसा लगा जैसे बिखर सा गया जीवन। पर समय ही हर घाव की दवा होती है। धीरे धीरे 2-3 माह में सब कुछ सामान्य सा होने लगा। इस बार पिताजी पूरी तरह माँ के स्थान पर खड़े हो गए। छोटी छोटी बात का निरंतर ध्यान रखते। जो कुछ माँ करती थी उससे बढ़कर आगे से आगे मेरा और मुन्ने का ध्यान रखते। उधर भाई भाभी भी कुछ ज़्यादा ही सजग हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर भी तन मन धन से बढ़ चढ़ कर करने लगे। धीरे धीरे दिन महीना साल बीतता गया। लगभग 4 वर्ष के बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। इधर दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। काफ़ी खर्च हो रहा था, परंतु भाई भाभी शांति और सहृदयता से सारे काम निपटाते जाते थे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोझ से भरी रहती थी, पर माता पिता के न होने पर ये लोग सारी जिम्मेदारियों का बोझ इतनी शांति से उठा रहे थे। पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक आध बार दबी जवान से कहा कि मैं पास के स्कूल में टीचिंग

0: का काम कर लूं, तो भाभी के माध्यम से भैया ने बड़े प्यार व सख्ती से मना कर दिया। अभी पिताजी के देहांत को 2 माह ही पूरे हुए थे तो एक दिन भैया ने मुझे बुलाया कि बिट्टू यहाँ आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर भैया और भाभी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। मैं लज्जा और भय से, संकोच से भरी वहाँ पहुँची तो भैया ने कहा, बिट्टो मैं चाहता हूँ कि ये जो पिताजी की संपत्ति है ना, इसे मैं आधी तुम्हारे नाम कर दूँ। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, स्तब्ध रह गई, कुछ बोला ही न गया, बस आँखों से आंसुओं की धारा बह चली। परंतु भैया बोलते ही रहे कि माँ के गहने, पिताजी का कैश, जो कुछ भी है वह सब आधा होगा। अब तो मैं चुप न रह सकी, बस इतना ही बोल पाई, भैया इसकी क्या आवश्यकता है। बस जैसे इतने दिन बीते हैं, कुछ दिन की ही बात है, मुन्ना अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहते कहते मैं जोर जोर से रोने लगी। भाभी ने मुझे उठकर सांत्वना दी और कहा, आपको हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे, अब आप पूरे जीवन काल यहीं रहेंगे। तब मैंने कहा कि भैया फिर संपत्ति के बंटवारे की क्या आवश्यकता है, मैं बेटा तो हूं नहीं जो संपत्ति पर मेरा अधिकार हो, मुझे तुम लोगों के सहारे और प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लूंगी मैं। परंतु भैया बोलते ही रहे कि अब तो बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति पर बराबर का हक है, और क्यों, तुम्हारी जगह यदि कोई भाई होता तो मैं उसे तो हिस्सा देता ही ना, इससे हिस्सा तो देना ही है मुझे। फिर भी भैया भाभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई मैं और बोली कि भैया मुझे अपने से अलग मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुन्ना पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे यही इच्छा है। इस पर भैया बोले, यह सब तो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं सब देखूंगा। इतने पर भी मैंने भैया के सामने एक और परिस्थिति डाली कि अभी तो कुछ ही वर्षों में आपको गुड़िया का विवाह भी करना है। उस पर भैया ने कहा कि उसकी सारी व्यवस्था तो माता पिताजी ने पहले ही कर दी थी, उसके लिए हम लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे पास ऐसा कोई तर्क नहीं था जो मैं भैया भाभी के समक्ष रख पाती। फिर भी मैंने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है भैया, इस विषय पर अब हम लोग कुछ दिन बाद बात करेंगे। वैसे तो मैं भैया के सामने पहले से ही कुछ कम ही बोलती थी, या यूं कहूं कि आमने सामने की बातचीत लगभग ना के बराबर ही होती थी। इनकी मृत्यु के बाद तो बस माँ पिताजी या भाभी के माध्यम से ही बात होती थी। अरसों बाद आज यह पहला मौका था जब हम दोनों के बीच इतने लंबे समय तक विचार विमर्श होता रहा। मेरे सारे प्रस्तावों को निरस्त करते हुए भाभी ने तुरंत वो सारे कागजात सामने रख कर मुझसे कहा, दीदी जी ये पेपर्स तैयार हैं, आप इन पर हस्ताक्षर कर दें। अब तो मैं विह्वल हो उठी, मैंने भी हस्ताक्षर से पूरी तरह इनकार कर दिया। तब भैया ने बड़े प्यार दुलार से मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले मेरे ही बगल में आकर बैठ गए और कहने लगे, प्यारी बहन इतना परेशान क्यों हो रही हो, जो कुछ भी है जो कर रहा हूँ यह मेरा कर्तव्य है और इस पर तुम्हारा अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों को अवश्य ही करना चाहिए और जिसका जो अधिकार हो उसे प्राप्त ही होना चाहिए। लो इन पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दो, इसके बाद भी हम सब जैसे यहाँ रह रहे थे वैसे ही रहते रहेंगे, हमारे बाद व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों ही बच्चे पढ़ लिख कर समाज में अपना स्थान बनाएंगे, वे भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिएंगे। भैया बोलते ही रहे और मैं एकदम शांत भाव शून्य हो चुकी थी। एक बार भैया ने कहा, बिट्टो इन पेपर्स पर साइन कर दो। भाभी ने बड़े प्यार व सम्मान से मेरे हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, दीदी जी परेशान मत होइए, हम लोगों पर भरोसा रखिए, ईश्वर को साक्षी मानकर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह परिवार की खुशहाली के लिए है, आपको परेशान करने के लिए कदापि नहीं। उन लोगों के अनेकों तर्कों के सामने मैं उनकी बात मानने पर विवश हो गई, मेरी आंखें आंसुओं से भरी और कंठ एकदम शुष्क हो गया था, मैंने उस पर उन पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे उषा बाला श्रीवास्तव की कहानी। अब आज का अक्षय वट कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव

0: थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को

0: 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी

0: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
6: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसू क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और

0: एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervor across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
3: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: Italian Prime Minister Giorgia Meloni today thanked Prime Minister Narendra Modi for his wishes on a government becoming the longest serving in the history of the Italian Republic. In a social media post, Ms. Meloni expressed confidence that India and Italy will continue to strengthen the bond between the two continents and work together to develop the India-Middle East-Europe economic corridor. She said that the ties between the two nations are right now stronger than ever before. Ms. Meloni's response came after Prime Minister Modi congratulated her on becoming the longest continuously serving Prime Minister in Italy's post-war history. In a social media post, Mr. Modi said, "This milestone is a reflection of the trust and confidence of the Italian people in her leadership." Prime Minister Modi emphasized that her friendship has also been instrumental in strengthening the India-Italy special.

0: इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये कामयाबी इतालवी अवाम के उनकी क्यादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के दरमियान खसूसी स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के अवाम की खातिर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए करीबी तआवुन जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की और आने वाले बरसों में मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं।
1: 275 भारतीय नागरिक लापता हैं। इसमें 275 में 49 वो लोग हैं जो चीन में भी उनके लिस्ट पे मिसिंग है, जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर 275 हैं उसमें, लेकिन 49 लोग हैं जो चीन की तरफ भी इसी में है।
0: उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी राबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुकाम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासरा नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ज़रूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वजीर खारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतअल्लिका सलाहियतों के नज़रिए पर मबनी होनी चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हम मनसब आंद्रेई सिबिहा और सदर विलोदमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने लगातार भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि यह जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मशरकी नवलपरासी जिले में 218 अमवात हुई हैं। इस दौरान मजीद 2 अफराद की मौत काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। भारत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों में मदद के लिए नेपाल को मजीद 2 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों C-130 तैयारे मजमूई तौर पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर काठमांडू पहुंच गए हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तश्वीशनाक बनी हुई है। तमाम बड़ी नदियां जिसमें गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी में तुगयानी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और मगरबी चंपारण समेत शुमाली वस्ती और जुनूबी बिहार के 16 जिले सैलाब की जद में हैं। साहिली और नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुतासिरा इलाकों में कुदरती आफात से निपटने की अथॉरिटी की जानिब से जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमें तैनात की गई हैं। मुतासिरा खानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि महकमे सेहत की टीमें मुतासिरा इलाकों में सरगर्म हैं। इस दौरान वजीर आला सम्राट चौधरी और नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, जो कि आबी वसायल के भी वजीर हैं, ने आज सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वजीर आला ने पटना में हुक्काम के साथ एक आला सतह की जायजा मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सैलाब से बचाव के तरीके के साथ साथ राहत और इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले सैलाब का इताब झेल रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी समेत रियासत के 26 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت

कार्यक्रम कहकशां के तलबगारों को आपके रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र का नमस्कार, कबूल फरमाइए। हाजिर हूं गजलों की महफिल सजाकर कार्यक्रम कहकशां का आमद लेकर। गजलें जो तैरती हैं हमारी रूहों तक, रात के बढ़ते इस हल्के सन्नाटे में उतरती जाती हैं हमारे बहुत अंदर तक, और उसके एक एक लफ्ज ऐसा साथ बनकर हमें अपने में डुबोते चले जाते हैं। हसीन सितारों की रोशनी से रोशन तुम्हारी यादें, हसीन सितारों की रोशनी से रोशन तुम्हारी यादें, ढलती रात के साथ अब ये ले रही हैं विदा मुझसे, जैसे एक रोज सांझ के उतरते ही आंखों के कोरों में आ गई थी वो शबनमी नमी। जाने क्यों अब निगाहें नहीं ढूंढती तुम्हें जमाने की भीड़ में, अब अपने भीतर से ही तुम्हारी आहट सुनाई देती है।

आज फिर आसमां पे चमके हैं सितारे, आज फिर दिल पर तुम्हारी यादों ने दस्तक दी है। मचलती तमन्नाओं ने बढ़कर कुछ इस अंदाज से यादों का खैर मकदम किया है, जैसे बहारों के आते ही फैल जाता है एक नूर मोहब्बत का, जैसे टहनियों पे झूमते खुशरंग फूलों के दिल गुनगुना उठते हैं

चाहतों के नूर से खिल उठा दिल का जहान और जगमगा उठी है कायनात सारी। दूर कहीं पहाड़ियों से गिरते झरनों का मध्यम शोर, घुल के धड़कनों में राग छेड़ता है कोई मीठा सा। मन के आंगन में चहलकदमी करती यादों की वो काली आंखों में उतर आए हैं जो ख्वाब महकते से। देखकर उनको आसमां बादल से कह रहा है मेरे दिल की बात, जरा सुनो, तुम भी तो सुनो।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कहकशां। सफर ये ख्वाबों का खूबसूरत है बहुत, सफर ये ख्वाबों का खूबसूरत है बहुत, हर एक गुजरता लम्हा नजदीकियों की सौगात से भर रहा है दामन मोहब्बत का, अनछुए जज्बात के अनदेखे रंगों में रंग उठी हो जिंदगी कुछ यूं कि सूफियाना अंदाज आ गया हो हर अदब और अदायगी में।

जैसे गुंचों के खिलते ही खिल उठती हैं फिजाएं, करवटें लेती हैं हवाएं, दिल की सरजमी पर दूर तक दिखाई देते हैं ख्वाबों के वो सिलसिले जिनमें प्यार की सदाएं गूंजती हैं।

पलकों में रखिए आंसू, हंसते हंसाते रहिए, गजलों के एहसासात को अपने साथ बनाए रखिए, बसाए रखिए, क्योंकि भावनाएं ही हैं वो जो इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब दीजिए विदा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है नाटक मैं मर चुका हूं। आलेख विपुल कृष्ण नागर का है।

0: मैं मर चुका हूं, चौंकिए मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच मर चुका हूं मैं। अभी 5 मिनट पहले ही मैं अपने घर में आराम कुर्सी पर बैठा, आराम से चाय पी रहा था कि अचानक पेट में भयंकर दर्द उठा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, फिर अचानक सब कुछ हल्का हल्का लगने लगा। जब देखने लायक हुआ तो ये देखकर हैरान हो गया कि मैं खुद के सामने ही मरा पड़ा हूं। आत्मा शरीर से निकल चुकी थी और शरीर बेचारा पड़ा था कुर्सी पर निढाल शिथिल। पहले पहल तो अजीब सा लगा, इतने सालों तक जो शरीर हमारा था उसके छूटने का दुख भी कुछ पल रहा, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। लगता है आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सचमुच मर चुका हूं। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? लगता है कोई आ रहा है, सावित्री होगी मेरी पत्नी। अब शायद घर में भी सबको पता लग जाएगा कि मैं मर चुका हूं, और तब शायद आपको भी विश्वास हो जाए।
1: मैंने कहा सुनते हैं जी, अजी सुनते हैं। अरे ये कुर्सी पर बैठे बैठे लेट से क्यों गए हैं? सुनिए सुनिए ना, अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, श्रवण बेटा, श्रवण जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, देख तो तेरे पिताजी को क्या हो गया।
2: क्या हुआ?
1: आ बेटा जल्दी आ, जल्दी आ।
2: क्या हुआ? अरे इस तरह चीख क्यों रही हो?
1: देख बेटा तेरे पिताजी को क्या हो गया।
2: ओह माय गॉड, पिताजी तो,
1: अरे जरा डॉक्टर को बुला, अपने चाचा जी को भी आवाज लगा दे बेटा।
2: चाचा जी जल्दी आइए।
3: क्या हुआ श्रवण? अरे क्या बात हो गई भाई? भाभी क्या हुआ? अरे ये क्या, भाई साहब इस तरह क्यों पड़े हैं?
2: चाचा जी लगता है पिताजी।
1: श्रवण खड़ा क्यों है, डॉक्टर को तो बुला लो।
3: नहीं भाभी, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लगता है भैया नहीं रहे भाभी।
1: ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
3: रो मत भाभी, धीरज रखो भाभी, अब रोने से क्या फायदा।
1: Oh, my God.

0: अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं मर चुका हूं।
1: मैं अपना, माफ कीजिए, अपने पिछले जन्म का परिचय तो दे दूं। मरने से पहले मेरा नाम आत्मानंद त्रिपाठी था। एक सरकारी विभाग में बड़ा बाबू था। छोटा और सुखी परिवार, सावित्री जैसी ख्याल रखने वाली पत्नी, छोटा भाई लक्ष्मण जिसने मेरी सेवा करने के लिए शादी तक नहीं की, एक बीमा कंपनी में काम करता है। बेटा श्रवण लकड़ी का कारोबार करता है, अच्छा जमा रखा है उसने। दफ्तर के सब साथी अक्सर कहा करते थे कि पंडित जी को आदर्श परिवार मिला है। मेरा भी यही मानना है, सचमुच बहुत खुश नसीब हूं मैं, माफ कीजिए, खुश नसीब था मैं। अभी अपने बारे में था कहकर बात करने की आदत नहीं पड़ी ना। मेरे इस तरह अचानक मर जाने से कितना दुख हो रहा है मेरे परिवार वालों को। बेचारी सावित्री के तो आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं।
2: धीरज रखो भाभी, धीरज रखो।
3: कैसे धीरज रखूं, कैसे धीरज रखूं? मेरा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया। मेरे जीवन का आधार चला गया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? हाय हाय, सुबह तक तो भले चंगे थे, अचानक ये वज्रपात कैसे हो गया?
2: पिताजी तो मुझे अपनी सेवा का मौका दिए बगैर ही चले गए।
4: बेटा श्रवण, अब ऐसे समय तुम ही धीरज खो दोगे बेटा, तुम मां को कौन संभालेगा? बेटा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अचानक इस तरह भाई साहब को हो क्या गया?
3: सुबह तो रोज की तरह उठकर पूजा पाठ किया, फिर बरामदे में अखबार पढ़ने लगे। मैं चाय देने आई तो बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा। मैं चाय देकर अंदर चली गई, 10 मिनट बाद लौटी तो देखा मुझे क्या पता था कि वो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, तभी तो मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं।
2: आज सुबह जब पिताजी ने मुझे पूजा से उठकर प्रसाद दिया, मैं नहाने जा रहा था, बिना नहाए वो कभी मुझे प्रसाद नहीं देते थे, लेकिन आज कहा कि मन स्वच्छ होना चाहिए, स्नान तो द्वितीय एक बात है। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो मुझे अपना आखिरी आशीर्वाद दे रहे हैं।
4: मेरी भाई साहब से आखिरी मुलाकात कल रात खाने के वक्त हुई थी। उन्होंने अपनी थाली में से एक मिठाई का टुकड़ा मेरी थाली में रख दिया था। मुझे तभी कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन मुझे क्या पता था।
3: लगता है उन्हें आभास हो गया था कि वो हमें छोड़ के जाने वाले
4: हैं। लगता है ईश्वर को यही मंजूर था। बेटा श्रवण,
2: जी चाचा,
4: जाकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों को खबर कर दो बेटा, और आगे की क्रियाकर्म की तैयारी करो। मैं यही भाभी के पास बैठा हूँ बेटा।
2: जी चाचा जी।

इनका दुख देखकर आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही है। शोक मत करो सावित्री। लक्ष्मण मेरे भाई, बेटा श्रवण, गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक याद करो। भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारते नत्वं शोचितुमर्हसि।

0: लोग मेरी आवाज सुन पाते तो मैं तुम लोगों का दुख कुछ कम कर सकता। सचमुच कितना भाग्यवान हूं। ओह, भाग्यवान था मैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। न तो मैंने रात में लक्ष्मण को मिठाई दी थी, न ही सुबह श्रवण को प्रसाद, और सावित्री के सर पर भी हाथ फेरा हो मुझे तो याद नहीं पड़ता। तो फिर ये सब इस तरह एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? खैर, हो सकता है मरने वालों के बारे में इस तरह बोलने का रिवाज हो। अरे, श्रवण के बाहर जाते ही सावित्री ने अचानक रोना क्यों बंद कर दिया? और ये लक्ष्मण दरवाजा क्यों बंद कर रहा है?
1: कमाल करती हो तुम भी, एक्शन ले लिया, मुझे बताया तक नहीं।
2: मैंने क्या किया है?
1: भाई साहब को जहर देकर पूछ रही हो मैंने क्या किया? वाह रे तेरी अचरित्र,
2: तुम होश में तो हो? मैंने इन्हें जहर नहीं दिया।
1: तो फिर ये मर कैसे गए?
2: अरे मुझे क्या पता, मैं तो आज रात से इन्हें जहर देना शुरू करने वाली थी। और वैसे भी तुमने मुझे जो जहर लाकर दिया है ना, वो तो स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे असर करने वाला। अरे उसे खाने के बाद ये तुरंत नहीं मर सकते।
1: हाँ ये तो है, तो फिर
2: लगता है हार्ट फेल हो गया।
1: नहीं नहीं, ये हार्ट फेल नहीं है। इनके ओठों के आसपास देखो, नीलापन दिखाई दे रहा है।
2: हाँ।
1: यानी इनकी मौत जहर की वजह से हुई है।
2: लेकिन इन्हें जहर देगा कौन?
1: सीधी सी बात है, अगर हम लोगों ने इन्हें जहर नहीं दिया तो फिर ये श्रवण का काम है। मुझे इधर कुछ दिनों से उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? श्रवण क्यों देगा इन्हें जहर? अरे कोई बेटा अपने बाप को जहर कैसे दे सकता है जी?
1: अच्छा, तुम एक पत्नी होकर अपने पति को जहर देने के लिए तैयार हो सकती हो, तो श्रवण अपने बाप को जहर क्यों नहीं दे सकता?
2: वो तो मैं
1: हाँ, मेरे बहकाने पर जहर देने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी प्यारी भाभी, पिछले 25 सालों से तुम भाई साहब के साथ दोहरा खेल खेल रही थी। पति तुम्हारे वो थे और प्रेम तुम मेरे साथ कर रही थी।
2: लेकिन मैं उन्हें मार डालना नहीं चाहती थी। अरे वो तो तुम्हारे कहने पर बीमा के पैसों के कारण।
1: लेकिन मैं एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। भाई साहब के मरने पर बीमा के पैसे भी हाथ लग जाते और रोज रोज की खिटखिट भी खत्म हो जाती। मन में 24 घंटे ये डर तो नहीं रहता कि कहीं भाई साहब को हमारे असली संबंधों के बारे में पता न चल जाए। इसीलिए तो ऐसा प्लान बनाया कि हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए।
2: लेकिन हमारे जहर देने से पहले ही इन्हें जहर किसने दे दिया?
1: हाँ, यही तो आश्चर्य की बात है। भाई साहब की हत्या से हमारे अलावा और किसको फायदा हो सकता था? हाँ, श्रवण को। मुझे यकीन है ये श्रवण का काम है। लेकिन अगर पुलिस को खबर लग गई तो बीमा के पैसों के कारण शक सीधा हम पर ही जाएगा।
2: अब क्या होगा लक्ष्मण?
1: अब मैं
3: क्या? श्रवण भाई, श्रवण भाई,
1: लगता है कोई आ रहा है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम रोना शुरू करो।
2: ठीक ठीक, हाँ ठीक है। मैं तो लौट गई।
0: हद प्रभ हो गया हूं मैं। मेरा भाई और मेरी पत्नी, पिछले 25 सालों से ये लोग इतनी सफाई से मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे और मैं इनका यकीन करता रहा। वाह लक्ष्मण मेरे भाई, अब समझ में आया तूने शादी क्यों नहीं की। मेरे विश्वास को इतनी आसानी से चलता रहा है तू। तुझसे क्या शिकवा करूं? मेरी पत्नी ही जब मेरी नहीं हुई तो तुम तो भाई थे। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे नापाक इरादे पूरे होने से पहले ही मैं मर गया। लेकिन लक्ष्मण ये क्यों कह रहा था कि श्रवण ने मुझे जहर दिया? अरे मेरा बेटा क्यों देगा मुझे जहर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो तो वो मेरी मौत पर कितना उदास बैठा है। रिश्तेदार पड़ोसी भी आ जा रहे हैं, लेकिन कितना परेशान लग रहा है वो।

0: अरे ये मोहल्ले का बदनाम सूदखोर अपराधी सलीम लाला यहाँ क्या करने आया है? मेरे जिंदा रहते तो हमेशा मुझे गालियां दिया करता था और मरने के बाद।
1: अरे अरे लक्ष्मण भाई साहब, अचानक ये सब कैसे हो गया?
2: क्या किया जाए सलीम भाई, जो ईश्वर को मंजूर।
1: सलीम भाई आप, श्रवण भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बड़े नेक दिल और सुलझे हुए इंसान थे पंडित जी। मैं तो उन्हें अपने वालिद की तरह इज्जत देता था। दिल को बड़ी तकलीफ हुई उनके इंतकाल की खबर सुनकर। श्रवण भाई आप सब्र से काम ले, जो भी जरूरत हो मुझसे कहिए, मुझसे।
3: जी चाचा जी, आप जरा बाहर देखिए क्या इंतजाम हुआ है अंतिम यात्रा का। और हाँ, माँ को अंदर ले जाइए कमरे में, यहाँ पिताजी को देखती रही तो रो रो कर बुरा हाल कर लेंगी अपना।
2: ठीक है तो बेटा, तुम जरा एक और अगरबत्ती जला दो भाई साहब के पास।
3: जी हाँ,
2: आई चलिए भाभी
4: अंदर चलिए।
2: आइए, यहाँ कब तक बैठी रहिए?
3: सलीम भाई
1: बोलो माँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अरे तुम तो मेरे पक्के शागिर निकले, नियत समय के पहले ही बुढ़ाऊ का काम तमाम कर दिया।
3: लेकिन सलीम भाई,
1: जाने वालों के लिए अफसोस नहीं करते सरवन। अरे इनको तो जाना ही था सो चले गए। तुम तो बस इतना बताओ कि मेरे दिए हुए जहर ने मुकम्मल असर किया या नहीं?
3: मैंने इनको जहर नहीं दिया सलीम भाई।
1: मजाक कर रहे हो, अपने वालिद की मौत का मजाक कर रहे हो। अरे देखो देखो तो, सारा बदन जहर से नीला पड़ चुका है, और फिर मुझसे छिपाने की क्या जरूरत है? मैं भी तो बराबर का शरीक हूं तुम्हारे इस जुर्म में।
3: सलीम भाई आप मेरी
1: याद करो, वो दिन जब कारोबार में घाटा लगने पर तुम मेरे पास आए थे, पूरे 1,00,000 रुपए की मदद की थी मैंने। अरे मूल तो दूर, सूद की भी एक पाई तक नहीं दी थी तुमने 1 साल तक। मैंने जब कहा कि अपने बाप से मांग कर ले लो, तो उसने तुम्हारे मांगने पर पैसे देने से मना कर दिया था। अरे तब से ही तुम्हें अपने वालिद से नफरत हो गई थी। मेरे समझाने पर तुम उसे जहर देने को राजी हुए। मैंने ही समझाया था कि बुड्ढे के मरने पर उसकी सारी दौलत तुम्हारी होगी, मार डालो उसे, वो अपनी जिंदगी भरपूर जी चुका है। और मैंने ही तो कल जहर ला कर दिया था तुम्हें।
3: आपकी सारी बातें ठीक है सलीम भाई, लेकिन मेरे जहर देने से पहले ही पिताजी चल बसे।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
3: बिल्कुल सच कह रहा हूँ सलीम भाई, पिताजी की कसम।
1: लेकिन ये तो जहर के ही वजह से मरे हैं। इसका मतलब तुम्हारे चचा जान और वालिदा के बारे में जो अफवाहें सुनाई देती हैं वो बेबुनियाद नहीं है।
3: आपका मतलब है उन लोगों ने?
1: कोई भी हो, अपना काम तो हो गया। अब जल्दी से फूंक ताप लो बुड्ढे को, इससे पहले कि किसी को जहर का शक भी हो।
3: हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम भाई, ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ।
0: बेटा तू भी मुझे जहर देना चाहता था? अरे मैंने तो पैसे देने के लिए इसलिए मना किया था कि मैं तुम्हें वो पैसे परसों तुम्हारे जन्मदिन पर देना चाहता था। सोचा था अपने जन्मदिन पर मेरी ये भेंट पाकर तुम कितने खुश होगे। अरे मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। जीवन भर ऑफिस में मैं रिश्वत लेता रहा किसके लिए? तुम्हारे लिए। कल तक बिना पैसे के एक भी फाइल मेरे टेबल से आगे नहीं बढ़ी, केवल तुम्हारे लिए। और आज सलीम लला तुम्हारे लिए मुझसे भी अजीज हो गया। अरे ये पुलिस क्यों आ रही है मेरे घर में? ओ

0: एक दो पड़ोसियों की आंखों में मेरे शरीर का नीलापन देखकर जो शंका उभरी थी, लगता है उन्होंने ही पुलिस को खबर कर दी है। चलो अच्छा है, तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तुम्हारी काली करतूतें सबको पता चलेंगी। तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अब जवाब दो इंस्पेक्टर को, दो जवाब।
1: इस बात का आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि त्रिपाठी जी के शरीर पर नीलापन होते हुए भी आप लोगों ने पुलिस को खबर किए बगैर इनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश कैसे की?
2: जी, वो हमने सोचा कि मृत्यु के बाद के सामान्य लक्षण हैं।
1: अच्छा, सामान्य लक्षण है। आज तक आपने कितनी मौतें देखी है मिस्टर
2: लक्ष्मण?
1: हाँ मिस्टर लक्ष्मण, 5-10 बस, और हमारा काम ही लाशें देखना है। इस तरह का नीलापन केवल जहर से हुई मौत के बाद ही उभरता है, समझे मिस्टर लक्ष्मण?
2: जी।
1: आप त्रिपाठी जी के?
2: जी, छोटा भाई हूँ।
1: क्या करते हैं?
2: जी, बीमा कंपनी में हूँ सर।
1: ओ गुड, वेरी गुड, बीमा कंपनी में हैं। कितने का बीमा कराया था आपने अपने भाई साहब का?
2: जी मतलब क्या है आपका?
1: चौंक क्यों गए आप? क्या ये संयोग नहीं है मिस्टर लक्ष्मण कि बीमा के पैसों के लिए अक्सर हत्याएं होती रहती हैं?
2: इसे मुझे क्या मतलब, बीमे में नॉमिनेशन तो सावित्री, मेरा मतलब मेरे भाभी के नाम है।
1: ओ वेरी गुड, आपके आपकी भाभी जी के साथ कैसे संबंध है?
2: व्हाट डू यू मीन? दुनिया कहती है तो क्या आप भी उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे? मेरे भाई साहब को तो कभी मेरे और भाभी के संबंध को लेकर शक नहीं हुआ, और आप इस तरह।
1: वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ आपने अपने मुंह से कह दिया, मैंने तो अधेरे में तीर फेंका था, और आपने मेरे हाथ में एक सूत्र पकड़ा दिया। बीमा के रुपए और अवैध संबंध, हत्या के संभावित कारणों में मैं इन दो कारणों को पहला और दूसरा नंबर देता हूं।
2: आप कहना चाहते हैं कि भाई साहब की हत्या मैंने की है?
1: हो सकता है। शक की सुई सबसे पहले मरने वाले के आसपास के लोगों को इशारा करती है मिस्टर लक्ष्मण। हो सकता है हत्या आपने की हो, हो सकता है हत्या आपकी भाभी जी ने की हो, या आपके भतीजे ने।
3: कौन मैं?
1: जी हाँ, क्या नाम है आपका?
3: जी श्रवण।
1: श्रवण, गुड, वेरी गुड, श्रवण कुमार, कितना आदर्श नाम है, व्हाट एन आइडियल नेम। करते क्या हैं आप?
3: जी लकड़ी का कारोबार है।
1: कैसा चल रहा है आपका कारोबार इन दिनों?
3: जी अच्छा चल रहा है।
1: अच्छा, इस समय जबकि सारा मार्केट मंदी से परेशान है, बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे का रोना रो रही हैं, और आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेचुलेशंस।
3: जी मेरा मतलब है कि बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, लेकिन इन बातों का पिताजी की हत्या से क्या संबंध है?
1: संबंध है नहीं, लेकिन हो सकता है। आपके सलीम लाला से क्या संबंध है?
3: जी
1: जब मैं इस कमरे में घुसा तो आप परेशान हालत में सलीम लाला से क्या बातें कर रहे थे?
3: जी वो मैं
1: छोड़िए, जाने दीजिए इन बातों को। आज के जमाने में किससे किसके क्या संबंध है ये पूछना बेकार है, लेकिन सलीम लाला से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। वो इस तरह का शख्स है कि बेटे के हाथों से बाप का कत्ल करवा सकता है। अब मैं आप लोगों से कोई पूछताछ नहीं करूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
4: इंस्पेक्टर साहब,
1: कहिए, कुछ कहना चाहती हैं आप?
4: देखिए, जो होना था वो हो गया। आपकी छानबीन से मेरे पति तो वापस आने से रहे, अब मरने के बाद उनके शरीर की चीड़ फाड़ दुर्दशा हो, ये हमें मंजूर नहीं।
1: तो मैं आपकी इस बारे में क्या मदद कर सकता हूँ?
4: आप इनकी मौत को सामान्य मौत मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
2: हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी अच्छी तरह से खिदमत भी करेंगे, क्यों बेटा श्रवण?
3: जी हाँ हाँ, प्लीज इंस्पेक्टर।
4: आप विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपके पास बताने के लिए चाहे जितने कारण हो, लेकिन हमने इन्हें नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब।
1: ठीक है, अब मैं आप लोगों से कोई

0: सवाल नहीं पूछूंगा। मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद खूनी को पकड़ना है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इस घर की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए, जैसे जहर की शीशी या...
1: देखिए देखिए ये सब इंस्पेक्टर साहब, आइए हम लोग जरा बाहर चलकर 2 मिनट बात कर लेते हैं।
0: खबरदार, एक भी शब्द आगे बोला तो मुझे रिश्वत देकर बचना चाहते हो तुम लोग? सब कुछ भिकाऊ समझते हो? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें खरीदा जा सके। तुम लोग अब यहां से बिल्कुल नहीं हिलोगे। हवलदार, घर की तलाशी लो, तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी।
2: इन्हें इनके किए की सजा नहीं मिलेगी इंस्पेक्टर, तुम इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि कत्ल इन लोगों ने नहीं किया, इन लोगों ने मुझे नहीं मारा, मेरे विश्वास का खून किया है। और तुम्हारे कानून में विश्वास का खून करने वालों की कोई सजा नहीं है। आप सब भी हैरान होंगे कि मेरा खून किसने किया। मैं बताता हूं, कल की बात है, ऑफिस में एक बूढ़े रिटायर्ड चपरासी की बेटी उसकी पेंशन के सिलसिले में आई थी। रिश्वत के कुछ रुपए न मिलने के कारण मैंने उसकी फाइल दबा रखी थी। वो मेरे आगे रोई, गिड़गिड़ाई। उसने कहा उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। तभी न जाने कहां से मेरे मन में एक घिनौना ख्याल आया। मैंने फाइल पास कराने के वज में उसके आगे उसके शरीर की, उसकी अस्मत की मांग रखी, और वो बेचारी लाचार बेबस तैयार हो गई। और मैंने शाम एक होटल में उसके साथ कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे शरीर में मुझे मानो कांटे से उगे दिखाई देने लगे, नफरत होने लगी मुझे खुद से। आत्मग्लानि का तूफान मेरे मन को झकझोरने लगा, और सुबह मैंने प्रायश्चित का निर्णय लिया। मैंने खुद अपनी चाय में जहर मिला लिया, और हाँ मैंने आत्महत्या की है, खुद की हत्या। तलाशी के दौरान मेरी जेब में आत्म स्वीकृति का पत्र मिलेगा इंस्पेक्टर, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी हत्या मेरे अपनों ने नहीं बल्कि मैंने खुद की है। काश मुझे कल पता चल गया होता कि मुझे मेरे अपने इस तरह छल रहे हैं, तो मैं 3 हत्याएं करने के बाद आत्महत्या करता। लेकिन अफसोस, मैं मर चुका हूं।

मैं मर चुका हूं। अभी आप सुन रहे थे ये नाटक। प्रस्तुति में भाग लेने वाले कलाकार इस प्रकार हैं: श्री विपिन टंडन, श्री अभिलाष नारायण, अजय मुखर्जी, अश्विनी अग्रवाल, रामलाल गुप्त और श्रीमती रूपा सहाय। आलेख विपुल कृष्ण नागर का था और प्रस्तुति एवं निर्देशन अभिनय श्रीवास्तव का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रिश्म श्रीवास्तव का राग चारुकीशी में सितार वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेशमा श्रीवास्तव का राग चारुकेशी में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्रा। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहाँ युवा भारतीय

0: On the 9th and 10th of this month, candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter their fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Estrup and Anders Kvarup Rasmussen in Shenzhen this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्री युत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
3: वंदे कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्री युत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात परस्ता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण

0: और आपकी घटना की। जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे, तभी कान्हानी जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे। एक बार पुनः ब्रज की ये धारा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहाँ प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओ, यह ब्रज धरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहाँ पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहाँ से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसके ठीक सामने द्वारकाधीश महाराज जी का श्री विग्रह विराजित है और इस समय विग्रह स्थल के पट बंद हैं और बहुत सुंदर सा पीत वर्णी ये जो पर्दा आया हुआ है जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन, ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक द्वार के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायत जन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन हैं, वह अद्भुत है, देखने योग्य है। और पुष्टि मार्ग में एक विशेष जो परंपरा है, जिस परंपरा को अपरस सेवा कहा जाता है, इसके तहत वे सभी किसी बाहर के व्यक्ति से स्पर्श नहीं कर

कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। जब भीतर का अंधियारा टूटे तब कृष्ण जन्म लेते हैं, जब मन की बेड़ियां छूटे तब कृष्ण जन्म लेते हैं। मथुरा कोई दूर नगर नहीं, ये तो अपने मन में है, और जब मन में प्रेम जगे समझो तब कृष्ण जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज सिर्फ इस धराधाम पर प्रतीक रूप ही नहीं होगा, भगवान जन्मेंगे हर हृदय में, हर प्राणों में, हर चेतना में, क्योंकि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु, हर भक्त अपनी आस्था, विश्वास और भक्ति के दम पर यहाँ पर आया है, तो अपने परमात्मा, अपने आराध्य, अपने ईष्ट के जन्म के उन क्षणों का साक्षात्कार करने के लिए, जिसके लिए उल्लसित और उमंगित होकर संपूर्ण मथुरा ने कर लिया है मानो अपना श्रृंगार। आज मथुरा की सज्जा देखते हुए जिस तरह से रोशनी में ये नहाई हुई है, जिस तरह से ये आनंद में, ये तो आनंद प्रेम और माधुर्य की नगरी ही है, रास रंग इसके धरा का एक विशेषता है, लेकिन जिस तरह से आज मथुरा ने किया है अपना श्रृंगार, वो स्वर्ग से भी देवता यहाँ आने को लालायित हैं। वैसे श्री हरि विष्णु जब अवतार लेते हैं तो समस्त देव स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, समस्त तीर्थ वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस समय न केवल हमारे परमात्मा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी देखने का सुअवसर मिलेगा, बल्कि समस्त तीर्थों का जो पुण्य है वो भी उन्हें मिलेगा। जहां से हम ये आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं वो भागवत भवन है, श्री कृष्ण जन्म स्थली का वो मुख्य भवन, जहां पर पूजन अर्चन होता है और जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका, मथुरा मोक्षदायिनी नगरी है और इस मोक्षदायिनी नगरी में पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ, बड़े ही अनुशासित ढंग से भागवत भवन में प्रवेश करते हैं और मुख्य विग्रह के सामने आकर ठिठकते हैं। मुख्य भवन में जो विग्रह हैं उन पर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो अपलक हम उन्हें निहारते रह सकते हैं। आज परमात्मा का जो विशेष श्रृंगार है वो अद्भुत और अनूठा है। प्रतिवर्ष की तरह जैसे भगवान की पोशाक होती है वो अनूठी है, इस बार भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और इस वस्त्र को पंचरत्नी पोशाक नाम दिया गया है। ये पंचरत्न उस पर जरी और काम के साथ हीरे जवाहरात माणिक्य के साथ अंकन किए गए हैं। वो पंचरत्न हैं जो समुद्र मंथन में निकले हुए थे, श्री हरि विष्णु के पास आए थे और उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कामधेनु गाय, पांचजन्य शंख, अमृत कलश, एरावत हाथी जो कि श्री हरि विष्णु को मिला था, उन्होंने बाद में इंद्र के मांगने पर उन्हें दे दिया था, और कल्प वृक्ष अंकित हैं। इतनी सुंदर मनमोहक छवि है। भगवान ने मुकुट जो धारण किया है वो अद्भुत और अनूठा है। स्वर्ण जड़ित इस मुकुट में अनेकों माणिक के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और वो सब अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। इतरा इसलिए नहीं रहे हैं कि उनमें हीरे जवाहरात और माणिक के लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए इतरा रहे हैं कि हमारे परमात्मा ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। भगवान ने कंठाहार पहन रखा है, हाथों में चूड़ा है, कमर में करधनी है, उनके आभूषणों के साथ उनकी सज्जा देखने लायक है। जब दृष्टि पड़ती है तो अपलक लोग देखते रह जाते हैं। राधा रानी की आंखों से बरसती हुई करुणा मानो सभी को सम्मोहित कर ले रही है। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखकर लोगों के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। जो सुंदर सजावट की गई है वो भगवान के पुष्प बंगले की है, जिसे कलहंस पुष्प बंगले का नाम दिया गया है। सुंदर हंस बने हुए हैं जो कि श्वेत रंग के पुष्पों से बनाए गए हैं और गुलाबी रंग के पुष्पों से उनके पंख हैं। नीले रंग के मयूरों की आकृति है। श्वेत, गुलाबी और हरे रंग के पुष्प और पत्तियों का सुंदर समावेश किया गया है। एक ऐसी अद्भुत चित्ताकर्षक झांकी है जिसे देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर ठिठक जाते हैं और ये वातावरण पूरी मथुरा में छाया हुआ है। मथुरा जो कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा, भक्ति और आस्था का एक केंद्र है, वो स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पर जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहाँ पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं तालियां बजाते हुए, श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार लें, उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिठकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में

0: के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत ना हो, धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी, ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं, और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुत श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी, एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम, और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में, जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादरी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और इस समय भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे, और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पलाएं, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपनी लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं, और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री का जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः 3 मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है, और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धालु तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ, और उसके बाद सुबह 8 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया, और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ, और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प दिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिष्यों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई, और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे, आज वहाँ से निकासी है,

0: और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहां से प्रवेश ले रहे हैं और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियां बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था। आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है, ऐसा प्रदृश्य शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनन्य विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहां जहां भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, दीपमाला ऐसे जगाती है। और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गिक द्वार हों। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हों। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी जन्मे कृष्ण मुरारी ना, आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे।

0: मध्य रात्रि का घना अंधकार है, लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झंकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
1: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ, हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फरचंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है, तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम बरसाना, दिव्य महाराज की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के इस अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है। कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है, धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है, उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है, तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता है तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
0: उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जो कि जहां पर वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है।

0: संतुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहाँ पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है और यहाँ पर जय जयकार के नारे भगवान के लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख तो लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक सात पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी ज्योति उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
1: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भागवत कहता है, निशीथे तम उद्भूते जाय मने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश्यः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः। जिसका भावार्थ है, मध्यरात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही महा भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु

0: में इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है। उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। इसका भावार्थ है, हे विश्वात्मा, अपने इस अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को अब छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सामान्य बालक के रूप में अपनी लीला प्रारंभ करें। यही वह अद्भुत क्षण है जहां परम सत्ता ने प्रेम के लिए स्वयं को सीमित कर लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही माता पिता की गोद में आने के लिए तैयार हो गए। यही भगवान और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण जी के।
1: धन्यवाद आशुतोष शुक्ला जी, क्या ही सुंदर पल, अद्भुत घड़ी,
2: और जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी, और इस समय द्वारकाधीश मंदिर के ये पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की अपलक निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो ललक है, श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारो जिन ऐसा सुत जायो। आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारकाधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्र मुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा परवश अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगासा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम।

0: काष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस जनमानस का उत्साह उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाएं, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना, और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे। और धन्य है ये ब्रजवासी, और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं, राधे राधे राधे जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है, वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाई तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है, क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे, तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रज मंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं, और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी है, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है।

0: बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कहीं प्रसंग है तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है। लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए, उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं। स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय श्री कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं। और जो भक्तों का आने का क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दे। सुरक्षा प्रहरी सेवाएं तो ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है और ये पट सब बंद है जो यहाँ पर सेवाएं हैं, पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री की घड़ियां हैं जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें। प्राकट्य उत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसी राधे का जय घोष हो रहा है और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं

0: भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग, और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखड़ियां खुल रही है, और यह लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहां पर जो दूसरे सेवा आए थे वो आरती कर रहे हैं, और इसमें प्रथम तल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और सुगंधित द्रव्य वहां पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है, और ढोल झांझ मजीरे मृदंग संग इनका संदेश और अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए, जैसे जन है, सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं, और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियां खुल चुकी हैं, वहां पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है, और यहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं, और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके, लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है। और इस समय आरती हो रही है, और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवायत हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन विराजित की गई है, जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहां पर चल रहा है, और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं, और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार केंद्रों से, जो ढोल मंजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियां बिखर रही है, और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जो भक्त जहां भी है ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है, अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं, और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया, उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप है, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, ये तो भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है, प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं, और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण

सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति, तालियां हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने हैं, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम भी हैं, सखा भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और निष्काम कर्म योगी भी हैं। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण, जब चारों ओर अंधेरा होता है और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं, हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धुन तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई ओर छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उपंक्ति यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उपंक्ति लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में, यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा, जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेष

0: कृष्णा की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथ ही श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहां पर एक कामधेन स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेन विराजित है जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी के रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, गुमे चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती होगी और प्रातः यहाँ पर नंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त जन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठाकर कर रहे हैं और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन हैं, इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक हैं। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारिक जनों के साथ में आते हैं और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़

और FM 100.3 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 12:15 और 20 सेकेंड हो रहे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा में 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।